आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ूं?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊं?
0: आओ ना।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो।
1: मुझे भी कुछ कहना है,
2: मुझे कुछ कहना है।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: रेडियो मॉरिशस।

0: भारतीय मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम अभी के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको अभी।
1: नमस्कार रिया, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। ये बात बार बार दोहराई जाती है।

0: हैं कि हमारे जलाशयों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मोहोवाकवा में पानी का स्तर वर्तमान में केवल 36.8% है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 90% था। हमारे पानी के भंडार को सुरक्षित रखने और पानी को यथासंभव लंबे समय तक चलाने के लिए अधिक सख्त उपाय अपेक्षित है। एक क्राइसिस कमेटी का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री पत्रिक आस्यावादन कर रही है। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के महाप्रबंधक श्याम तानू द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पहली बैठक अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। मॉरिशस ने साल 2026 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 50वां स्थान हासिल किया है। ये वैश्विक रैंकिंग दुनिया भर की 139 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन को मापती है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस वैश्विक इनोवेशन रैंकिंग में 3 स्थान ऊपर चढ़कर साल 2025 के 53वें स्थान से अब 50वें स्थान पर पहुंच गया है। साल 2019 में ये 82वें स्थान पर था, यानी तब से अब तक इसमें 32वें स्थानों का सुधार हुआ है। बैंक ऑफ मॉरिशस में चलन में बताए जा रहे जाली नोटों के खिलाफ सतर्कता बरतने की अपील की है, विशेष रूप से करेंसी नोट्स के प्रभावित होने की आशंका है। सेंट्रल बैंक ने किसी नोट की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए सही तरीकों की याद दिलाई है और जनता से आग्रह किया है कि वे किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दें। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि इंडोनेशिया में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 5.2 थी। भूकंप सुबह के 5:07 पर आया। इसकी गहराई जमीन के करीब 10 किलोमीटर नीचे थी। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, देश के दक्षिण पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा, खासकर आज दिन के दौरान। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह थोड़े से बादल घेराएंगे और पूर्व तथा ऊंचे इलाके पर हल्की सी बारिश होगी। दिन के दौरान दक्षिणी ढलानों, पूर्व तथा सेंट्रल प्लाटू पर बादलों के घेराव के साथ थोड़ी सी वर्षा होगी, जबकि रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 5:49 पर, जबकि सूर्यास्त शाम के 6:08 पर। तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। 6:30 विस्तार के साथ प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। तब तक अभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार और आदाब।
1: सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस।
2: नमस्कार, सुबह की बेला है, सुप्रभात। आपके लिए लेकर आए हैं हम सुबह का नजराना। ये नजराना देन है ऊपर वाले की, और ऊपर वाले को हम चलिए साथ मिलकर 100-100 बार धन्यवाद देते हैं। सुबह की ये बेला, चिड़ियों की ये चहचहाहट, हवा का ये मंद मंद बहना हमारे

0: जीवन में सुख और शांति अवश्य लाए। भगवान की कृपा हमारे जीवन में बहुत सारी उमंगों को जगाए और इन उमंगों के सहारे हम दुनिया में सुंदरता पाएं, दुनिया में सुख और शांति पाएं। आप सबों के लिए हमारी यही दुआ है कि आप लोगों का दिन बहुत ही मंगलमय गुजरे। सुबह के 6:05 हुए हैं, आइए चलिए सुनते हैं आज का वैदिक वाणी कार्यक्रम और आर्य सभा मॉरिशस की ओर से कार्यक्रम प्रस्तुत है, सुनेगा स्वामी आशुतोष जी को।
1: मधुर शहद से हो आपकी वाणी, आइए सुनिए आर्य सभा मॉरिशस की ओर से वैदिक वाणी।

ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी वैदिक वाणी के सुधी श्रोतृबंधु को मेरा सादर सप्रेम नमस्ते। आप सबकी सेवा में उपस्थित है आप सबका चिर परिचित जाना पहचाना मंत्र गायत्री मंत्र, जिसे महामंत्र भी कहते हैं, गुरु मंत्र कहते हैं, सावित्री मंत्र कहते हैं, जिसकी बहुत विश्व में चर्चा प्रशंसा है। मनु आदि महान ऋषियों ने भी इसकी बहुत प्रशंसा की है कि व्यक्ति को प्रातःकाल किसी नदी के पास जा कर के योग की रीति से इस गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके जप करने से बुद्धि निर्मल होती है, मानसिक शक्तियों का विकास होता है, इंद्रियों पर विजय होता है, शरीर भी निरोग होता है। ऐसा क्या इस मंत्र में है? इस मंत्र में परमपिता परमात्मा, जिन्होंने अपने अनंत ज्ञान में सामर्थ्य से अखिल ब्रह्मांड की रचना की है, उन्हीं परमात्मा ने हम जीवों के कल्याण के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार फलों को सिद्ध करने कराने के लिए पावनतम वेदों का ज्ञान प्रकाशित किया है। उन्हीं परमात्मा के वेद ज्ञान से ये मंत्र है, जो कि ऋक यजु साम तीनों वेदों में आया हुआ है। ऋग्वेद में तीसरे

0: मंडल का 62वां सूक्त, वहाँ यह मंत्र आया हुआ है। यजुर्वेद में अध्याय 32 मंत्र संख्या 3, सामवेद में मंत्र संख्या 1462। तो इस मंत्र को तीनों वेदों में पढ़ा गया है। इसकी महत्ता इस बात में है कि इस मंत्र में जगदीश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना का प्रकार बताया गया है। यूँ तो सारे मंत्र भगवान के दिए मंत्र हैं, सभी ज्ञान विज्ञान का ही प्रकाशन करते हैं, पर इस मंत्र में कुछ विशेषताएं बताई गई जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। ओम नाम कितना महान नाम है। अकार, उकार, मकार, तीन ये अक्षर मिलते हैं तो ओम बनता है। आका भी अर्थ मिलता है मनुस्मृति में, विराट, अग्नि, विश्वादि, जो परमात्मा विराट हैं, सबसे महान हैं, संपूर्ण विश्व में जिनका प्रवेश अर्थात सर्वव्यापकता है, और वो ज्ञान के प्रकाशक हैं, ज्ञान को देने वाले हैं। वस्तुतः ज्ञान परमात्मा का मुख्य गुण है, जाननापन, जनानापन, और जीवात्मा का भी मुख्य गुण ज्ञान है। अंतर यह है, जीवात्मा अल्पज्ञ है, थोड़ा ज्ञान है, सीखते सीखते ज्ञान को बहुत बढ़ा लेता है, और परमात्मा सर्वज्ञ हैं, उनका ज्ञान अखंड एक रस है, न वो घटता है न बढ़ता है, असीम अनंतता, ये प्रभु की विशेषता है। तो भगवान ने मंत्र के माध्यम से हमको जो शिक्षा दी है कि जीवात्मा तुम अपने कर्तव्यों को समझो, अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाओ, तो अका अर्थ किया विराट, अग्नि, विश्वादि, ऊक अर्थ किया है हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदि, इतने बड़े बड़े लोक लोकांतर हैं, सूर्य चंद्रमा आदि हैं, जिस परमात्मा के भीतर हैं, जो सबको प्रकाशन करने वाला वो परमात्मा हिरण्यगर्भ है, और जिनमें अनंत बल है, सर्वशक्तिमान हैं, जो सब लोगों को प्रकाशित करने वाले हैं। मकार करते हैं ईश्वर, आदित्य, प्रज्ञाति, जो ईश ऐश्वर्य, जिनका ऐश्वर्य अनंत है, ये सृष्टि भगवान का ऐश्वर्य है, वेद भगवान का ऐश्वर्य है, उनकी महत्ता, उनकी महानता अपरंपार है, असीम है, इसलिए उनको ईश्वर कहते हैं। आदित्य जो अखंड एक रस हैं, सूर्य आदि के प्रकाशक हैं, वो परमात्मा का नाम आदित्य है। तो इस प्रकार से ओम शब्द के भी तीन हैं, आ उमा, इसका बहुत विस्तार से व्याख्यान किया गया है, ये परमात्मा की शक्तियों को प्रकाशित करते हैं। इसके आगे तीन व्याहृतियाँ हैं, भू भुवः स्वः, भू का अर्थ है जो प्राण स्वरूप है, प्राणों के दाता हैं, प्राणों के प्रकाशक हैं, प्राणों के आधार हैं, हम सभी प्राणी हैं, प्राणों को धारण करते हैं, जीवन को धारण करते हैं, हम सबको जीवन देने वाले भू प्राणों के प्राण परमात्मा हैं। आप सभी लोग जानते हैं जीवन में प्राण की कितनी महिमा है और उसको देने वाला कितना महान है, भू प्राणों का भी प्राण, भुवः सब दुखों को दूर करने वाला, दुख अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, सो परमात्मा हमको ज्ञान विज्ञान दे करके दुखदायी कर्मों से पृथक कर देते हैं, हम दुखदायी कर्मों को नहीं करते हैं, यही दुख से बचने बचाने का प्रकार है। तो परमात्मा ईश्वर, जगत नियंता, जहाँ हमको जीवन देते हैं, वही परमात्मा हमारे जीवन से दुखों को दूर कर देते हैं। स्वः जो ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप हैं और अपने उपासकों को, भक्तों को सदा आनंद प्रदान करते हैं, हम जीवात्मा लोग इतने योग्य बने कि हम परमात्मा की भक्ति करके उनके नित्यानंद का सेवन करें। ओम भूर्भुवस्वः। अगले पद हैं तत्सवितुः, जो परमात्मा प्रेरक हैं, सूर्य आदि के प्रकाशक हैं, समस्त ऐश्वर्य को देने वाले हैं। ऐसे सविता देव के, जो देव हैं, दिव्य गुणों के प्रकाशक हैं, दिव्यता को देने वाले हैं, ऐसे सविता प्रेरक रक्षक स्वामी परमात्मा के। वरेण्यम भर्गः, जो वरणीय हैं, पूजा करने योग्य हैं, ध्यान करने योग्य हैं, जिनकी भक्ति आराधना जीवन को धन्य बनाने वाली है, ऐसे प्रेरक सविता देव के वर्णी भर्ग को। भर्गायति, जो हमारे पापों को तापों की वासना को भस्म कर देते हैं, ज्ञानाग्नि से भस्म कर देते हैं, ऐसे भर्गः शुद्ध स्वरूप पवित्र परमात्मा के ऐश्वर्य को सामर्थ्य को हम लोग धीमहि अपने अंतःकरण में अपनी आत्मा में हम धारण करें, ताकि हमारे जीवन के अंदर से जितने दोष हैं, दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, वह सब दूर हो और हमारा जीवन ज्ञान से, विद्या से, पवित्रता से, सद्गुणों से प्रकाशित हो जावे। तो गायत्री मंत्र का सार ये निकला कि हमारी बुद्धि निर्मल हो, पवित्र हो, प्रभु के संग से हम मेधावी बने। धियो यो न प्रचोदयात्, जो परमात्मा, पवित्र परमात्मा, दयालु जगदीश्वर, रक्षक परमात्मा, हम सब मनुष्यों की बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में ले चलें। यही मानव की मानवता है, दिव्यता है, मनुर्भव है। जिस व्यक्ति की बुद्धि निर्मल पवित्र बन जाती है, फिर वो हिंसा नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता है, किसी को दुख नहीं देता है, किसी का अपमान नहीं करता है, उसका जीवन दिव्य कोटि का बनता है। अस्तु, हम आप सभी लोग अपनी बुद्धियों को निर्मल पावन बनाने के लिए अपने प्रभु से नित्य प्रति प्रार्थना किया करें, हमारी बुद्धि भी ऋषियों के समान पावन बन जाए, यही कामना है। इति ओम शम।
1: अभी आप सुन रहे थे आर्य सभा मॉरिशस द्वारा वैदिक वाणी।
2: आज आप सुन रहे थे आचार्य आशुतोष जी को।

0: MBC रेडियो 24 आवर्स अ डे।
1: इस समय सुबह के 6:18 हुए हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ विज्ञप्तियां सुनिएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हाईलैंड्स के निवासियों को सूचित करता है कि रेलवे रोड के एक भाग में फ्लामिंगो रोड के एक भाग में मोसेलमा ब्लू प्रिंट हाईलैंड्स में मोसेलमा ओमनिकेन और मोसेलमा हाईलैंड रोज के एक भाग में तथा मोसेलमा कोयराची और आसपास के इलाकों में आज रविवार 4 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सीबी हाईलैंड्स और कास्टेल के निवासियों को सूचित करता है कि आज रविवार 4 अक्टूबर को मोसेलमा सुभाची हाईलैंड्स में सुबह 8:30 बजे से दिन के 11 बजे तक, मोसेलमा बाजाल्ट कास्टेल में दिन के 10:30 बजे से 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सीबी एवेन्यू लोये कसगुन रोड और रूट रॉयल पॉइंट कानूनी के निवासियों को सूचित करता है कि आज ही रविवार 4 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे से दिन के 3:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। इन मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटे हुए बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।

और उनसे मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। छह बजकर 20 मिनट हुए हैं। सुबह की ये बेला है, मन हमारा बहुत शांत रहता है और इस शांत मन में चलिए जरा हम औरों की खुशियों के बारे में सोचें, दुनिया की खुशियों के बारे में सोचें, अपनों की खुशियों के बारे में सोचें। बस इतना हम याद रखें कि खुशियां जो चाहता है उसको मिलता है। बस आप औरों को खुशियां बांट दीजिए, देखिए ऊपर वाला आपको किस तरह से सुख और शांति प्रदान करते हैं।

धन होता है हमारा स्वास्थ्य, धन होता है हमारी हिम्मत, धन होता है हमारा हौसला। जो मिल जाए हौसला आपको, तो दुनिया की हर मुश्किल आसान हो जाए आपके लिए।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। रविवार 4 अक्टूबर 2026 के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश के जलाशयों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। महोवाकुआ में पानी का स्तर वर्तमान में केवल 36.8% है, जबकि पिछले साल की तुलना में इसी अवधि में जल स्तर 90% था। एक क्राइसिस कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आसेवादेन कर रही है। मॉरिशस में साल 2026 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 50वां स्थान हासिल किया है। ये वैश्विक रैंकिंग दुनिया भर की 139 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन को मापती है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने चलन में बताए जा रहे जाली नोटों के खिलाफ सतर्कता बरतने की अपील की है, विशेष रूप से करेंसी नोट्स के प्रभावित होने की है आशंका। और विदेश में यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरामको की एक सुविधा को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। नमस्कार और आदाब। प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि ये बात बार बार दोहराई जाती है कि हमारे जलाशयों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। महोवाकुआ में पानी का स्तर वर्तमान में केवल 36.8% है, पिछले साल की तुलना में इसी अवधि में जल स्तर 90% का था। हमारे पानी के भंडार को सुरक्षित रखने और पानी को यथासंभव लंबे समय तक चलाने के लिए अधिक सख्त उपाय अपेक्षित हैं। एक क्राइसिस कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आसेवादेन कर रही है। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के महानिदेशक श्यामा तानू द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पहली बैठक अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। वे कल रात एमबीसी टेलीविजन के फ्रेंच बुलेटिन में लाइव थे और विशेष रूप से उपभोक्ताओं के सहयोग पर भरोसा कर रही हैं। उनको सुनते हैं।
2: Nous pas pour gagner la bataille si les consommateurs pas pour collaborer. Depuis le mois de juin, côté n'a une mesure restriction qui ne vient de l'avant. La population ne collabore pas parfaitement. Donc, nous faisons un appel à la population. Collaborer encore, nous pouvons dans une situation de très grave de manque d'eau. Et si la situation de sécheresse perdurait au mois de janvier, février, mars l'année prochaine, ce sera très, très, très grave, probablement ingérable.
1: और जैसे कि हम बता रहे थे कि शुक्रवार 2 अक्टूबर को महोवाकुआ जलाशय का जल स्तर 36.6% पर गया था। जैसे जैसे पानी का स्तर कम होता जा रहा है, सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने परिवारों को वाटर टैंक एंड डोमेस्टिक वाटर पंप ग्रांट स्कीम की याद दिलाई है। इसका उद्देश्य है पानी के भंडारण के लिए वाटर टैंक और घरेलू पंप लगवाने में मदद करना। ये योजना डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा चलाई जा रही है और वे परिवार इसका लाभ उठा सकते हैं जिसकी कुल आय 60,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है। इसके लिए आवेदन डीबीएम की वेबसाइट पर ऑनलाइन या फिर देश भर में स्थित उनकी शाखाओं के माध्यम से किए जा सकते हैं। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के संचार निदेशक सुनील गोपाल से, जिनसे बात की है हमारी सहयोगी आशी बाचू ने। विवरण सुमेहरा अकबर अली।
3: Si ou revenu total, c'est-à-dire pour la famille, n'est pas dépasse 60,000 rupees par mois.
4: अगर आपके परिवार की कुल माहवार आमदनी 60,000 रुपए से ज्यादा नहीं है तो आप इस योजना के योग्य हैं। आपको वाटर टैंक, वाटर पंप और फिटिंग्स मिलेंगे जिनकी लागत 15,000 रुपए की है। कुछ दस्तावेजों की जरूरत है। प्रक्रिया बहुत आसान है। डीबीएम द्वारा मांगों को तेजी से प्रोसेस भी किया जाता है। हम सीडब्ल्यूए के ग्राहकों से मांग करते हैं कि वो इस योजना का फायदा उठाएं।

0: personnes, je me suis abonné de la CWA pour qu'ils aient prennent avantage de cette scheme-là. Il permet tout, et là, un tank de l'eau, sur la pompe, sur mon accessoire, et au capable, au moins, un peu de l'eau que tout.
1: इस स्थिति से निपटने के लिए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में जलापूर्ति बढ़ाने की दिशा में एक आपातकालीन योजना भी तैयार की है। इसमें शामिल मुख्य उपाय है निजी पानी के टैंकरों की मदद लेना, पेत्रें और रिविया पापाया का पानी सीधे लामारी ट्रीटमेंट प्लांट में भेजना और मोलोंग जलाशय तथा कुछ बोहोल्स का उपयोग करना। और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, खासकर मॉरिशस ने साल 2026 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 50वां स्थान हासिल किया है। ये वैश्विक रैंकिंग दुनिया भर की 139 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन को मापती है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस वैश्विक इनोवेशन रैंकिंग में 3 स्थान ऊपर चढ़कर साल 2025 के 53वें स्थान से अब 50वें स्थान पर पहुंच गया है। साल 2019 में यही 82वें स्थान पर था, यानी तब से अब तक इसमें 32 स्थानों का सुधार हुआ है। ये देश सब सहारन अफ्रीका में इनोवेशन रैंकिंग में पहले स्थान पर बना हुआ है और उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में 36 से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इस प्रगति का मुख्य कारण मानव पूंजी और अनुसंधान मूल ढांचा और व्यावसायिक परिपक्वता के सेक्टरों में बेहतर प्रदर्शन है। मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर तिशान बाहोरन के अनुसार ये प्रगति मॉरिशस के लिए एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन हमें अपने प्रयास आगे भी जारी रखने होंगे। तफसील के साथ सुमहरा अकबर अली।
2: रैंकिंग जीआईआई कंसीडर अ पे प्रेस 7 ग्रैंड सेक्टर।
3: GII में रैंकिंग 7 बड़े क्षेत्रों को मद्देनजर रखती है। इनमें से 4 सेक्टरों में बेहतर परफॉर्मेंस है, अन्य पहलुओं पर बेहतर काम करना है। बहुत सारी कोशिशों और निवेशों की जरूरत है। आहिस्ता आहिस्ता ये मुमकिन होगा। गए 5 सालों में नवीनीकरण की दिशा में बढ़ने वाली संस्था के तौर पर हमें पहचाना गया है। MRIC और दूसरी संस्थाएं मिलकर एक साथ काम करती हैं ताकि हमारी रैंकिंग बेहतर बनी।
2: As being one of the fastest climbers of innovation for the last 5 years. Et ça, c'est très intéressant. Et au niveau du MRIC, avec les institutions, nous travaillons de concert, nous coordonnons nos activités pour qu'il y ait maximum de données pour être capable de reprendre, pour être capable d'améliorer nos rankings.
3: अनुसंधान और नवीनीकरण में निवेश करना है, हमें और ज्यादा इंतजार करना बाकी है ताकि ज्यादा फलदायक नतीजे हासिल कर सके। बहुत से देश बेहतर कर रहे हैं क्योंकि उनके पास साधन हैं, उनकी यूनिवर्सिटियों की बेहतर रैंकिंग भी है।
2: Mieux parce qu'il y a beaucoup plus d'investissements, il y a beaucoup plus la recherche, il y a pris beaucoup plus patentes, il y a pris beaucoup meilleurs rankings de l'université. Ce qui est petit à petit capable de traverser nous. C'est pourquoi nous besoin nous garde et investir et toujours aller de l'avant en fonction d'un investissement dans la recherche et l'innovation.
1: और जैसे कि हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि बैंक ऑफ मॉरिशस ने सर्कुलेशन यानी कि चलन में बताए जा रहे जाली नोटों के खिलाफ सतर्कता बरतने की अपील की है, विशेष रूप से करेंसी नोट्स के प्रभावित होने की आशंका है। सेंट्रल बैंक ने किसी नोट की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए सही तरीकों की याद दिलाई है और जनता से आग्रह किया है कि वे किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दें। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर विवरण करुणा लालू का।
4: जाली नोटों से सतर्क रहे कुछ कमर्शियल बैंकों ने बैंक ऑफ मॉरिशस को नकली नोटों के प्रचलन में होने की सूचना दी। ये समस्या पॉलीमर नोटों की तुलना में पेपर नोटों से ज्यादा संबंधित है।
5: Nous avons un détecteur qui nous prend marché, nous checker, nous met un côté

0: C'est une acquisition anonyme, de là nous faire un suivi sur là avec ça.
1: Nous nous avons passé la semaine de l'expérience.
0: Oh oui, nous nous avons passé la semaine d'expérience, hein, mais là nous avons rapporté avec la police.
2: बैंक मॉरिशस के अनुसार मॉरिशियन नोटों पर पाई जाने वाली सुरक्षा विशेषताओं की सही जानकारी होना बेहद आवश्यक है। असली नोट को जांचने के लिए 3 आसान तरीके हैं। छूकर देखें, ध्यान से जांचें और नोट को झुकाकर देखें। इससे असली नोट की कई विशेषताओं की पहचान की जा सकती है, जैसे उसकी बनावट, अंदर बनाए गए चित्र, छिपी हुई तस्वीर, छोटे अक्षरों में लिखा पाठ और अल्ट्रावायलेट रोशनी के नीचे दिखाई देने वाले चमकीले तत्व।
3: Si un billet est fausse, en général, le bouton lit est un CIP plus épais qu'un billet qui est vrai. Parce qu'il fait, ben, des gens qui font contrefaçon, je peux prendre un recto et verser ce billet-là, je peux coller ensemble, après je peux essayer mettre un élément de sécurité à l'intérieur qui fait que le billet-là vient un peu plus épais. Ou autrement, le billet-là est capable d'être un peu plus lisse aussi, surtout si je fais photocopie. Quand on prend billet-là, on prend au pouce, on roule, disons, surtout le portrait de la personnalité qui apparaît au billet-là, vous sentez comme si dirait un relief, comme si dirait un petit lagrin, comme si dirait sur le portrait, qui donne une indication que le billet-là est vrai. Et le billet-là, et un clean billet-là. Et là, ce que nous pouvons trouver, surtout dans le billet en papier, c'est-à-dire un hologramme. Disons, nous avons un hologramme billet de 200. Il y a un petit motif et en haut à droite du billet. Vous trouvez, si quand vous bougez ou inclinez, le chiffre de 200 pour paraître. Ou soit et la tête de 2 pour paraître. Right? Le billet 1000, pareil, au joaillier, vous trouvez soit vous trouvez le bâtiment de la Banque de Maurice, soit vous trouvez le chiffre de 1000.
2: अगर किसी नोट पर संदेह हो तो निर्देश साफ हैं, नोट स्वीकार न करें और तुरंत इसकी जानकारी नज़दीकी पुलिस थाने को दें। बैकमॉरिशस ने कहा कि जालसाजी से निपटने के लिए वो संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं।
4: अल्जीरिया से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक तकनीक अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान ले रही है और अब महिलाएं इस बदलाव के केंद्र में रहना चाहती हैं। अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं और इसके बावजूद कई पहल युवतियों को तकनीकी क्षेत्रों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और ये भूमिका निभाता है वुमेन इन टेक, एक ऐसा अभियान जिसका उद्देश्य है तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं का समर्थन करना, उनके कौशल को विकसित करना और उन्हें डिजिटल दुनिया में अधिक अवसर प्रदान करना। मॉरिशस सहित कई अफ्रीकी देशों में ये प्रयास तेजी से विकसित हो रहे हैं और इस क्षेत्र में इन महिलाओं की उपस्थिति को मजबूत करने में मदद कर रही है। विश्व पशु दिवस के लिए 4 अक्टूबर की तारीख का विशेष महत्व है, यानी कि आज हम मना रहे हैं विश्व पशु दिवस। ये दिन असीसी के संत फ्रांसिस से जुड़ा है, जिन्हें पशुओं और प्रकृति के प्रति करुणा के लिए जाना जाता है। समय के साथ ये दिवस धार्मिक सीमाओं से आगे बढ़कर पशु कल्याण और संरक्षण से जुड़े वैश्विक अभियान का रूप ले चुका है। इसका उद्देश्य अलग अलग देशों, संगठनों और समुदायों को एक मंच पर लाकर पशुओं के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है। पशुओं के प्रति संवेदनशीलता को अक्सर केवल दया और करुणा से जोड़कर देखा जाता है, परंतु इसका दायरा यही कहीं बड़ा है। पशु कल्याण के उनके भोजन, पानी, आश्रय, स्वास्थ्य, सुरक्षित वातावरण और अनावश्यक पीड़ा से बचाव जैसे पहलू शामिल हैं। घरेलू पशुओं से लेकर वाणिज्यों तक हर प्रजाति की अपनी प्राकृतिक जरूरतें होती हैं। इन जरूरतों की अनदेखी न केवल पशुओं के लिए समस्या पैदा करती है बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है। मॉरिशस में सुअर पालन के सेक्टर को लगा है एक बहुत ही बड़ा झटका। पर्यावरण से जुड़ी किसी भी आपदा से बचने के लिए इस पूरे सेक्टर का पुनर्गठन किया जाएगा। कैबिनेट ने शुक्रवार को एक सलाहकार की नियुक्ति को हरा झंडा दे दिया है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से खेतों का आधुनिकीकरण, पशु स्वास्थ्य, जैव सुरक्षा, पैदावार की पूरी जानकारी का ट्रैक करने की क्षमता, पर्यावरण प्रबंधन, मूल ढांचा, साथ ही सुअर का वध,

प्रोसेसिंग और बाजार तक पहुंच जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। ये कार्य योजना इस सेक्टर की मुश्किलों पर कई महीनों तक चली बहस के बाद आई है, खासकर समौते में कूड़ा प्रबंधन को लेकर, जहां लगभग 4,500 सुअर पाले जाते हैं। तो पुस्तक महोत्सव का पांचवा संस्करण

वर्ष का जो विषय है छवि का सम्मान, यानी कि छवि पर विशेष ध्यान देना। साल 2026 का यह संस्करण रात के 7 बजे होने वाले एक चित्रित संगीत कार्यक्रम के साथ समाप्त होगा। विदेशी स्तर जो आज सुर्खियों में है, यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरामको की एक सुविधा को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। हूतियों का कहना है कि ये हमला यमन की राजधानी सना और दूसरे प्रांतों पर सऊदी हमलों के जवाब में किया गया है। खबरों के अनुसार रियाद में अरामको की सुविधा के आसपास धुएं और आग का बड़ा गुबार उठता दिखा। सऊदी अधिकारियों ने अभी तक इस हमले की पुष्टि नहीं की है और अरामको ने भी टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत जवाब नहीं दिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार रात देर रात तक फ्लाई दुबई फ्लाइट के हीरो भारतीय पायलट कप्तान स्मिथ मछार से फोन पर बात की। इस दौरान कप्तान स्मिथ मछार ने 30 सितंबर को कॉकपिट के अंदर बीते खौफनाक पलों के बारे में बताया, जब ओमान को उनके कोपायलट ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कैप्टन स्मिथ मछार ने बताया कि उन्हें पहले लगा कि विमान को कोई नुकसान पहुंचा है, परंतु फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनका कोपायलट ही उन पर हमला कर रहा है। इंडोनेशिया में रविवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 5.2 थी। भूकंप सुबह के 4:07 पर आया और इसकी गहराई जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे थी। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके पर, खासकर दक्षिण पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे इलाके को प्रभावित करने जा रही है, खासकर दिन के दौरान। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह दक्षिण तथा पूर्वीय ढलानों पर थोड़े से बादल घिराएंगे और हल्की सी बारिश होगी, खासकर पूर्व और ऊंचे इलाके पर। जबकि दिन के दौरान दक्षिणी ढलानों तथा ऊंचे इलाके पर बादलों के घेराव के साथ बरसात होने का अनुमान लगाया जा रहा है। रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 5:49 पर, जबकि सूर्यास्त शाम के 6:08 पर।

चलिए आखिर में फिर से डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश के जलाशयों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मोगोवाकुआ में पानी का स्तर वर्तमान में केवल 36.8% है, जबकि पिछले साल की तुलना में इसी अवधि के दौरान जल स्तर 90% का था। एक क्राइसिस कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आसेवादन कर रहे हैं। मॉरिशस ने साल 2026 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 50वां स्थान हासिल किया है। ये वैश्विक रैंकिंग दुनिया भर की 139 अर्थव्यवस्था

व्यवस्थाओं के नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन को मापती हैं। बैंक ऑफ मॉरिशस ने चलन में बताए जा रहे जाली नोटों के खिलाफ सतर्कता बरतने की मांग की है, विशेष रूप से करेंसी नोट्स के प्रभावित होने की है आशंका। और विदेश में यमन के ईरान समर्थित हूटी विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरामको की एक सुविधा को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही ये प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम फैजान को धन्यवाद देना चाहेंगे। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

आइए शोक समाचार सुनते हैं। नंबर बी के ए ए का, नंबर बी के ए ए का सुजिए गली वाले पीटो में, नंबर बी के ए नंबर ए का सुजिए गली वाले पीटो में 75 साल के 75 years old के जनाब बाशिया अहमद राजावाली, जनाब बाशिया अहमद राजावाली जिन्हें सब लोग भाई बशीर के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा कल रात के साढ़े 7 बजे उनके बेटे जनाब नादिम राजावाली के मकान से निकाल कर दफना लिया गया है रिश्ते का कब्रस्तान। फ्यूनरल यस्टरडे नाइट एट 7:30 Chemin Lagan Notre-Dame, 38 साल की, 38 years old की श्री बिनेश कुमार बसावन जिन्हें सब लोग बेंजोल के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह के साढ़े नौ बजे उनकी माँ श्रीमती विदेशी माला के घर शमेला गांव नोत्रदम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोले किशमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM। रामकिशन लेन जेबेया रोड रोजबेल में 77 साल की 77 years old की श्रीमती शांता कुमारी जिलोल जिन्हें सब लोग तारा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनकी बेटी श्रीमती सुबहा रोशनी के घर रामकिशन लेन जेबेया रोड रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। नंबर 19 एवेन्यू डालिया बुआ प्योले त्यागूज में, नंबर 19 एवेन्यू डालिया बुआ प्योले त्यागूज में 84 साल की 84 years old की श्रीमती सरोजिनी रंगासामी जिन्हें सब लोग मैडम पाया सारा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के घर नंबर 19 एवेन्यू डालिया बुआप्योले त्यागू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वाले दे प्रैत की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। नंबर 1 ओलीहुद वाकवा में, नंबर 1 ओलीहुद वाकवा में 71 साल की 71 years old की श्रीमती देविका सिबोरत पैदाशी नाम सुचिता, और जिन्हें सब लोग सुदेवी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े दस बजे उन्हीं के घर नंबर 1 ओलीहुद वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। ऋषि दयानंद रोड रिवे दे क्रियोल में 72 साल की 72 years old की श्रीमती कमला देवी मंगरा श्रीमती

कमला देवी मंगा पैदाइशी नाम बंधन और जिन्हें सब लोग शिवरानी के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके पोते श्री मंगा कृतिश कुमार के घर ऋषि दयानंद रोड रिवे दे क्रियोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुवालों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। लिम्बेतो वाकुआ में 75 साल के 75 years old के श्री महादेव बापू जिन्हें सब लोग बाबू के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उन्हीं के घर लिम्बेतो वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेखिनो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। रालरोड पे चिराफ्रे में 84 साल की 84 years old की श्रीमती सत्यवती बंधु पैदाशी नाम बगन और जिन्हें सब लोग सत्यवती के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उन्हीं के घर रॉयल रोड पे चिराफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। अले जाक रोड नुवेल फ्रांस में 78 साल की 78 years old की श्री लक्ष्मी पौसाद अलहदर श्री लक्ष्मी पौसाद अलहदर जिन्हें सब लोग दहीलाल गुरुजी के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे श्री अमृत सिंह प्रसाद अलहदर के घर अले जाक रोड नुवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड कालबास में 85 years old की श्रीमती सती दमयंती बहादुर पैदाइशी नाम तानु और जिन्हें सब लोग सती के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उन्हीं के घर रोड कालबा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनिस्त्रियलो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। मो सेलमान एमडीए सेकुंस्टांस सेंट पियर में 54 साल के 54 years old के श्री महेश केदू जिन्हें सब लोग सतीश के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके भाई श्री प्रीतम्मा केदू के घर मुसलमान एमडीए सेकुंस्टांस सेंट पियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड नुवियम मिल थ्रियोले में 77 साल के 77 years old के श्री धनराज सिंह सदा सिंह जिन्हें सब लोग बाबू के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के ढाई बजे उनकी पत्नी श्रीमती श्यामा सदा सिंह के घर रॉयल रोड नुवियम मिल थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। रॉयल रोड सेंट जूलियन डुटमो में 81 साल के 81 years old के श्री नरेंद्रनाथ काउलेसा श्री नरेंद्रनाथ काउलेसा जिन्हें सब लोग धनराज के नाम से भी जानते थे और जो DWC के पूर्व कर्मचारी थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपैर के तीन बजे उनके बेटे श्री विशाल काउलेसा के घर रॉयल रोड सेंट जूलियन डुटमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉन्डुमास का श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 3। और सावन रोड नुवेल फ्रांस में 64 साल की 64 years old की श्रीमती शर्मा कुमारी रामकुरन
पैदाइशी नाम उद्दीन और जिन्हें सब लोग शर्मा के नाम से भी जानते थे।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं। पूजनीय श्री तल्लापाका अन्नमाचार्य के सम्मान में तेलुगु यूनियन रविवार 4 अक्टूबर को 1 से 4 बजे तक श्री विष्णु कल्याण मंडपम AJSS सेकोंस्टोंस में एक गीत उत्सव का आयोजन कर रहा है।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के 7:02 हुए हैं।
2: स्पोर्ट्स न्यूज
1: सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। इंग्लैंड की न्यू लुक टीम अपने नए कोच, नई शैली, नए स्टाइल और नए खिलाड़ियों के साथ क्या खूब लगती है, बड़ी सुंदर लगती है। हैरी केन, जूड बेलिंगम और बुकायो साका आदि थ्री लायंस ने क्रोएशिया में बूढ़े लुका मोड्रिच और कोच स्लाविन बिलिच के प्रति कोई रहम नहीं दिखाई। एक रूथलेस बेरहम इंग्लैंड ने कल यूएफए नेशंस लीग में क्रोएशिया को 7-0 से पछाड़ा। जी हां, इंग्लैंड 7 क्रोएशिया 0, वो भी क्रोएशिया के मैदान में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये क्रोएशियन फुटबॉल की सबसे भारी हार है। सवाल ये उठता है कि कल रात इंग्लैंड बहुत अच्छा था या क्रोएशिया बहुत खराब था। जो भी हो, इंग्लैंड ने इन बच्चों की जान ही निकाल दी। क्रोएशिया 0 इंग्लैंड 7। खेल के 8वें मिनट पर ही हैरी केन का एक पहला गोल। इसी केन ने 53वें मिनट पर एक डबल स्कोर किया। जूड बेलिंगम 21वें मिनट पर, एंटोनी गॉर्डन का बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा, उसने 39वें मिनट पर एक गोल स्कोर भी किया। बुकायो साका का एक डबल 45वें और 68वें मिनट पर, और मोगन रोजर्स ने मैदान पर कदम रखते ही एक और गोल स्कोर किया 87वें मिनट पर। क्रोएशिया 0 इंग्लैंड 7। अब क्रोएशिया का अगला मैच चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन स्पेन से होगा इसी मंगलवार रात क्रोएशिया के मैदान पे ही। वहां पर क्या होगा देखते रहिए। फिलहाल इसी ग्रुप में कल वर्ल्ड चैंपियन, विश्व चैंपियन स्पेन ने चेक रिपब्लिक को 3-1 से परास्त किया। लामिन यामाल का एक पहला गोल खेल के 6 मिनट पर, रोड्री 35वें पर और मिकेल मेरिनो का एक गोल 89वें मिनट पर। लामिन यामाल अब बालोंडो का एक प्रबल दावेदार बन गया है। स्पेन 3 चेक रिपब्लिक 1। बाकी मैचों में कल स्कॉटलैंड ने एवे जाकर नॉर्थ मैसेडोनिया को 2-0 से परास्त किया। बॉवी और जॉन मैकगिल का एक एक गोल, और इसमें कप्तान एंडरसन का ये कि एक सेंचुरी थी, उसने अपना 100वां मैच खेला। एंडी रॉबर्टसन ने अपना 100वां मैच खेला स्कॉटलैंड के साथ और जीत हुई 2-0 से नॉर्थ मैसेडोनिया के मैदान पे। स्विट्जरलैंड ने इसी में स्लोवेनिया को 2-1 से परास्त किया। ग्रुप एक में फिनलैंड 2 अल्बेनिया 1। बेलारूस ने सैन मैरिनो को 4-4 बार बेला। बेलारूस 4 सैन मैरिनो 0। ग्रुप चार में एस्टोनिया 1 लग्जमबर्ग 0। आइसलैंड ने बुल्गेरिया को 3-0 से परास्त किया। अब आज भी यूएफए नेशंस लीग के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण मैच खेले जाएंगे। ग्रीस वर्सेस जर्मनी, यगन क्लब को ये मैच कम से कम जीतना होगा। नेदरलैंड्स का मुकाबला सर्बिया से। ग्रुप चार में पोर्चुगल खेलेगा नॉर्वे के विरुद्ध। वेल्स का मुकाबला डेनमार्क से। कोसोवो वर्सेस ऑस्ट्रिया, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड टक्कर लेगी इसराइल से। तो ग्रुप एक में माल्टा का मुकाबला अंडोरा से है, और ग्रुप दो में अजरबैजान वर्सेस लिथुआनिया। इन सब मैचों के बाद यूएफए नेशंस लीग के बाद बात करें अब फ्रेंडलीज की। इंटरनेशनल फ्रेंडलीज में ब्राजील का पहला इंडियन एनकाउंटर सफल साबित हुआ। लासेलिसाओ ने कल रात

तब भारत को 4-0 से हराया। गोल कर्टिसी ऑफ इस्तेवाओ, पेड्रो और सैमुअल लिनो का एक डबल, इन सब ने भारत को 4-0 से हराया। भारतीय फुटबॉल के इतिहास में ये सबसे बड़ा मैच माना जा रहा है, क्योंकि ब्राज़ील की ये पहली भारतीय फुटबॉल यात्रा है जो एकदम सफल साबित हुई, 4-0 से उनकी जीत। अब यहाँ से इंडियन फुटबॉल टीम कहाँ जाती है, देखते रहिए और सुनते रहिए। फ्रेंडलीज में ही बता दें कि आज सुबह ही अर्जेंटीना ने भी बुर्किना फासो को 7-0 से हराया। लोटारो मार्टिनेज का एक पहला गोल, जियालो, प्रिस्टियानी, पाज, अल्वारेज, मास्टुआंटोनो और सिमियोन ऑन टारगेट। अर्जेंटीना 7, बुर्किना फासो 0। यूएसए इस समय हाफ टाइम तक मेक्सिको को 1-0 से हरा रहा है। और कल जो मैच खेले गए फ्रेंडलीज में, कल कोलंबिया की हार हुई, कोलंबिया 0, पराग्वे 1, रशिया 6, नमीबिया 0, कनाडा ने पेरू को 2-0 से हराया, आइवरी को 0, कैमरून 1, एनसोंगो का ये गोल कैमरून की ओर से। तो फ्रेंडलीज में ही बता दें कि आज दिन के दौरान इजिप्ट का मुकाबला साउथ अफ्रीका से, आज रात कोमोरो वर्सेस सेनेगल, मोरक्को का मुकाबला होगा माली से, तो बोलीविया खेलेगा गाम्बिया के विरुद्ध। ये सब फुटबॉल के बारे में। क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए कहीं खुशी तो कहीं गम। भारत की T20 टीम ने यदि पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर एशियन गेम्स जीत लिया, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, तो वनडे श्रृंखला के तीसरे मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने अपना तेवर दिखाया और भारतीय टीम को 5 विकेट से हराया। भारत ने अपनी पारी में 351 रन बनाए, जिनमें केएल राहुल के 129 नाबाद रन रहे और रोहित शर्मा के 92 रन भी रहे। किंतु जवाब के तौर पर वेस्ट इंडीज ने जमकर बल्लेबाजी की, खासतौर अंतिम 10 रनों को लेकर। अंतिम 10 ओवरों में शाई होप ने 162 नाबाद रन बनाकर भारतीय टीम की सारी उम्मीदें पानी में फेर दी। ऐसे में वेस्ट इंडीज ये तीसरा वनडे मैच 5 विकेट से जीत गई। अब मंगलवार से इन दो देशों के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का पहला T20 मैच खेला जाएगा। फॉर्मूला 1 मोटो रेसिंग चैंपियनशिप की बहरेन ग्रैंड प्री रेस आज लगने वाली है। कल रात मैक्स वेरस्टैपेन पहली दफा पोल पोजीशन ले पाया, आज वही रेस शुरू करने वाला है। स्थानीय तौर पर लोकल स्पोर्ट्स में बैडमिंटन में मॉरिशस की अंडर 19 टीम अपनी झोली में इजिप्ट से अंततः 1 स्वर्ण पदक और 4 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ रही है। एल्जा और कियारा हाउहोंग बहनों ने डबल्स में गोल्ड मेडल जीता। और याद रहे कि फुटबॉल में प्रथम मैच 3-0 से जीतने के बाद कल सोमवार रात 7 बजे रुई पेड्रो और हमारा क्लब एम फिर से श्रीलंका का सामना करेंगे कोड्डो नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इसलिए देखते रहिए और सुनते रहिए। हार्दिक शुभकामनाएं।

0: Easy Radio, 24 hours a day.
1: इस समय 7:11 हुए हैं। हमारी आपकी मुलाकात रेडियो मॉर्चस पर हो रही है, बड़ी प्यार से, बहुत ही खुशी के साथ। चलिए, आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ़खरसाइट के निवासियों को सूचित करता है कि लुई दे रोशकूर्त स्ट्रीट, इबिस्किस लेन, मेरी गोल्ड स्ट्रीट, जास्मिन रोड, एम्पास रोशकूर्त, एम्पास खाफरे और ससेरिकोट ऑन्टेम के एक भाग में और आसपास की गलियों में आज रविवार 4 अक्टूबर को सुबह 8:30 से दिन के 3:30 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सीबी प्रोविडेंस के निवासियों को सूचित करता है कि मुसलमान वियोरेस अल्टेओ मौसम वियोरेस अल्टेओ 2 में आज रविवार 4 अक्टूबर को सुबह 8:30 से दिन के 3:00 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। बोशों के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि मंदिरम के पास इंसिनेरेटर सीडब्ल्यूएआर बोशों एनएस फ्लोरेंस फुटबॉल ग्राउंड के आसपास में CWA Beauchamp, La Nourrice, MCML, CWA Trois Îlots और Trois Îlots Poultry तथा आसपास के इलाकों में आज रविवार 4 अक्टूबर को सुबह 8:15 से शाम के 4:00 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। बोबासा के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि राहुल जैन, Automost, Avenue Consigny, Avenue Sir Walter Besant, Louis Lechel, Avenue Poivre, Le Tabernacle, Biosanté Ville-Sœur Beaubassin, Caprice Gervais, Gould Square, Ricardo Fast Food, Kicken Fast Food और आसपास के इलाकों में आज रविवार 4 अक्टूबर को ही सुबह 8:30 से दिन के 3:00 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और बोबासें के ही आवेन्यू वेनकाता सामी, आवेन्यू दे रोसने, आवेन्यू मोनेरों, आवेन्यू मोंसेन्यर लीन, आवेन्यू मेलड्रम, एलियन सन्स बोबासें, अपार्टमेंट क्वीन, रेजिडेंस शांतरेल और आसपास के इलाकों में सुबह 8:30 से दिन के 10:00 तक और फिर दोबारा आज ही 4 अक्टूबर को दिन के 2:00 से 3:00 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे मांग करती है कि वे अपना इंतज़ाम अवश्य कर लें। ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से।
2: ऑन द आवर, एवरी आवर, रेडियो मार्चेस।
3: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
1: तो चलिए, इस समय 7:15 हैं, सुबह का ये नजराना है। नजराना आपको बहुत ही मुबारक हो, ये जीवन आपके लिए बहुत ही मंगलमय रहे, ये सुबह आपके लिए बहुत मंगलमय रहे, ये रविवार, ये संडे आप लोगों के लिए बहुत मंगलमय रहे, सुख शांति और अच्छी सेहत आपके जीवन में हमेशा रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और मनोरंजन का ये जो सेगमेंट है, इस पर हम आपको चलिए सुनवाते हैं रॉकी मूवी का वो गाना जिसे आप सुनिएगा, जिसे आप बहुत पसंद कीजिएगा और एक जमाना याद कर लीजिएगा इससे।

प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्ते। पितृयज्ञ का अर्थ क्या है और माता पिता का सम्मान कब और कैसे किया जाता है, आइए विचार करें। एक व्यक्ति एक पंडित जी से मिला और उसने पंडित जी से कहा, पिछले साल मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, मैं उनके लिए श्राद्ध करना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा, तुम्हारे पिताजी को जो भी खाना पसंद था तुम उसे बनवाओ, मैं उसे खाऊंगा तो वह तुम्हारे पिताजी तक पहुँचेगा, वे खुश होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। व्यक्ति ने कहा, मेरे पिताजी खीर खाना पसंद करते थे। पंडित जी बोले, ठीक है, तुम खीर बनवाओ, मैं खाने के लिए तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगा। एक निश्चित तिथि को खीर तैयार की गई। पंडित जी आए और उन्होंने पेट भरकर खीर खाई। फिर उन्होंने व्यक्ति से कहा, खीर तुम्हारे पिताजी के पास पहुँच चुकी है, वे बहुत खुश हैं और उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। व्यक्ति ने कहा, पंडित जी मैं एक बात बताना भूल गया, मेरे पिताजी को डायबिटीज की बीमारी थी, इसीलिए खीर खाने के बाद वे इंसुलिन का इंजेक्शन लेते थे। आप इधर लेट जाइए, मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगा। पंडित जी घबरा कर बोले, डायबिटीज की बीमारी तो तुम्हारे पिताजी को थी, फिर मुझे इंजेक्शन लगाने की क्या आवश्यकता। व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्यों पंडित जी, जब खीर पिताजी के पास पहुंच गई तब इंजेक्शन भी तो पहुंच जाना चाहिए। पंडित जी उत्तर न दे पाए। श्रोताओं, इससे सिद्ध होता है कि भोजन किसी मरे हुए व्यक्ति के साथ नहीं जाता। माता पिता का भोजन से सम्मान करना तभी तक उचित है जब तक कि वे जीवित हैं। पितृ अर्थात पितर का अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। महाभारत में युद्ध करने के लिए युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेना एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई। बीच में अर्जुन भी आ पहुंचा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ये आचार्या पितरः पुत्राः तथैव पितामह, अर्थात जिन्हें मैं मारने जा रहा हूँ ये आचार्य, ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे पढ़ाया है। पितरः मुझसे आयु में वे बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं। पुत्राः मुझसे कम आयु वाले भी हैं जो मेरे पुत्र के समान हैं। तथैव पितामह, और इसी प्रकार मेरे पितामह भी मेरे सामने खड़े हैं। तेन न हन्तुम इच्छामि धनतु मधुसूनः, हे मधुसूदन, मैं अपने आचार्य को, अपने पितरों को, अपने पुत्रों को और अपने पितामह को मारना नहीं चाहता हूँ। श्रोताओं, अगर पिता

0: अगर वे हैं जो गुजर चुके हैं, तो फिर अर्जुन ने अपने सामने खड़े आयु और अनुभव से वृद्ध लोगों को पितर क्यों कहा? शास्त्रों में 5 प्रकार के लोगों को पितर कहा जाता है, जैसे जनिता जो जन्म देता है, चोपनेता जो ईश्वर की ओर अच्छाइयों की ओर ले जाता है, विद्याम प्रयच्छति जो विद्या देता है पढ़ाता है, अन्नदाता जो अन्न देता है पालन पोषण करता है, और भय त्राता जो आपत्ति से भय से रक्षा करता है। ये 5 प्रकार के लोग हमारे पितर हैं जिनका हम सम्मान करते हैं। पितृयज्ञ में 2 शब्द हैं, पितृ अर्थात माता पिता और यज्ञ अर्थात सम्मान करना। अपने जीवित माता पिता का कौन सम्मान करता है? राजा दशरथ की इच्छा हुई कि उन्हें संतान प्राप्त हो। उन्होंने यज्ञ किया और उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। शिशुओं का जात कर्म संस्कार करते समय राजा दशरथ ने हर एक पुत्र की जिह्वा पर शहद से ओम लिखा और उसकी नाक के सामने अपना हाथ रखकर शिशु की सांस महसूस करते हुए राजा दशरथ ने पूछा, त्वम कोसी, तू कौन है? कतमोसी, तेरा नाम क्या है? कस्यासी, तू कहाँ से आया है? को नामासी, तू क्या करने आया है? इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं देते हुए राजा दशरथ ने कहा, त्वम वेदोऽसि, तू परमात्मा का ज्ञान है, वेद का ज्ञान है। राजा दशरथ ने आरंभ से ही अपने पुत्रों को वेदों का संस्कार दिया और गुरु वशिष्ठ द्वारा पुत्रों से वेदों का अध्ययन करवाया। यही कारण है कि जब राम को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ, तब उन्होंने बिना प्रश्न किए पिता की आज्ञा का पालन किया। महाभारत में अगर भीष्म पितामह को वेदों का संस्कार न मिलता, तो वे अपने पिता की आंतरिक इच्छा को समझकर जीवन भर अविवाहित रहने का व्रत नहीं ले पाते। जीजाबाई ने महापुरुषों द्वारा दी गई शिक्षा के आधार पर ही अपने पुत्र शिवाजी का निर्माण किया। माता की परवरिश का मान रखते हुए शिवाजी ने कई युद्ध जीते और वे महाराष्ट्र के राजा बने। माता को उन्होंने महल की सारी सुविधाएं प्रदान की। उन्हें पता था कि माँ का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता, इसीलिए राज्य के कार्यों में अधिक व्यस्त हो जाने के बावजूद भी शिवाजी अपना कर्तव्य मानकर हर दिन समय निकालकर माता के पास बैठते थे और उनकी आगे की इच्छा जानने की कोशिश करते थे। अगर शिवाजी को उचित संस्कार प्राप्त नहीं होते, तो शायद वे माता को केवल महल का सुख देकर संतुष्ट हो जाते। श्रोताओं, क्यों न आज हम अपने बच्चों को नौकरी पाने वाली शिक्षा देने के साथ साथ धर्म ग्रंथों की शिक्षा पाने और महापुरुषों के जीवन से सीखने की प्रेरणा प्रदान करें, ताकि वे भौतिक प्रगति करने के अलावा माता पिता की सारी उम्मीदों पर खड़े हो पाएं, पितृयज्ञ करने में सफल हो पाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से।

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: सुबह की बेला होती है बड़ी शांत सी, तो चलिए इस शांत माहौल में कुछ ऐसे गाने आपके लिए पेश करें कि वो गाने आपको गुनगुनाने पे मजबूर कर दें। वैसे भी म्यूज़िक एक बहुत ही अच्छा ज़रिया होता है ज़िंदगी में खुश रहने का, ज़िंदगी में तनाव से दूर रहने का। तनाव तो हमारे जीवन में आते ही रहते हैं, म्यूज़िक एक ऐसा साधन है जो हमारे तनाव को थोड़ा कम करा देता है, उसके असर को थोड़ा कम करा देता है। तो चलिए इसी असर को कम करने की कोशिश में हम भी जवानी मूवी का ये गाना सुने साथ मिलके।

0: झलकियां
1: झलकियां रेडियो मॉरिशस आपकी सेवा में हर तरह के कार्यक्रम, कई लैंग्वेजेस के कार्यक्रम, विविध भाषाओं के कार्यक्रम आपके लिए रखे गए हैं रेडियो मॉरिशस पर। तो चलिए, कौन सा प्रोग्राम किस समय आएगा इस बारे में सुनते हैं जरा। फिलहाल तो सुबह का नजराना चल रहा है और आपके लिए कई सारे आइटम्स रखे हैं हमने इसमें। अभी 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे, उसके बाद आप के लिए हम लेकर आएंगे सुबह का नजराना कार्यक्रम में आज का पैगाम आपके नाम। सो पैगाम आपके नाम प्रोग्राम के समाप्त होने पर आप सुनिएगा संक्षिप्त समाचार और उसके बाद मंगल आचरण कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आज आधारित रहेगा नवरात्रि पर, विशेष कार्यक्रम नवरात्रि पर। रत्ना जी पेश करेंगी गुजराती भाषा में और इस कार्यक्रम के बाद उर्दू प्रोग्राम होगा। निसार पेश करेंगे आज का बज़्मे अकीदत और 10 बजे ये प्रोग्राम होगा। फिर 11 बजे संक्षिप्त समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे आज का तमिल प्रोग्राम सुंदरम की प्रस्तुति में। कृतिका लेकर आएंगी आज का तेलुगु प्रोग्राम दिन के 12 बजे और दिन के 1 बजे मराठी प्रोग्राम सुनिएगा सीताबाई धर्मिया से। उसके बाद आप सुनिएगा आज का चाइनीज प्रोग्राम जिन लेकर आएंगे 2 से 3:30 बजे तक। और 3:30 बजे आप गुजराती प्रोग्राम रत्ना से सुन पाएंगे। 4 बजे सुनिएगा पूजा की प्रस्तुति में आप और हम कार्यक्रम और पूजा की ही प्रस्तुति में आप 5 से 6 बजे तक सुनिएगा आज का तोहर पसीन कार्यक्रम। फिर 6:30 से 6:30 बजे तक होगा आज का समाचार बुलेटिन। समाचार बुलेटिन के समाप्त होने पर आप चाइनीज प्रोग्राम सुन पाएंगे जिसे होंग होंग लेकर आएंगी और युवा हसन लेकर आएंगे आज का तमिल प्रोग्राम शाम के 7 बजे। 7:30 बजे आप कृतिका को सुनिएगा, कृतिका लेकर आएंगी आपके लिए तेलुगु प्रोग्राम और समय होगा मराठी भाषा का। मराठी भाषा आप सुनिएगा शीरीष से रात्रि के 7:50 पर और 8:10 पर भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम होगा। और आज सुनिएगा भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम रोशनी की प्रस्तुति में। फिर 8:40 पर रात्रि में आप सुनिएगा आज का महफिल शब उर्दू कार्यक्रम समीर की प्रस्तुति में। उर्दू कार्यक्रम के बाद होगा आज का भोजपुरी तड़का प्रोग्राम रात्रि के 9 बजे, उषा लेकर आएंगी ये प्रोग्राम। और 11 बजे से 12 बजे तक आज का पुराने गानों का प्रोग्राम सुनहरे पल कार्यक्रम पूनम की प्रस्तुति में सुनिएगा। तो ये रहा छोटा सा एक डिटेल आप लोगों के लिए हमारे सभी प्रोग्रामों के बारे में जो रेडियो मॉरिशस पर प्रस्तुत किए जाएंगे आपके लिए। चलिए, मनोरंजन का साधन हम भूले नहीं हैं, आपके लिए गानों का सिलसिला ज़रूर पेश करेंगे। गानों के सिलसिले में चलिए रोमांस मूवी का ये गाना सुनते हैं। सुनते सुनवाते हैं, गाते गुनगुनाते हैं और इस दिन की शुरुआत में गानों का ये मजा लेते हैं।

0: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस
1: प्रोग्राम्स की झलकियाँ। अब हराम की तो सभी खाते हैं सेठ।

0: मेरे पैसों से आराम से यहाँ टीवी देख रहा है।
1: रविवार 4 अक्टूबर को NBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म ड्यूप्लीकेट डबल रोल का मजा। शाहरुख खान और जूही चावला पर फिल्माई गई हिंदी फीचर फिल्म ड्यूप्लीकेट। NBC TV रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
2: यार पिक्चरों में अच्छा लगता है, एक्स्ट्रा बातें एडिट कर देते हैं, सिर्फ कॉमेडी रोमांस गाने दिखाते हैं।
3: मैं सिंगल स्क्रीन का सुपरस्टार हूँ, अब मल्टीप्लेक्स को टेक ओवर करना चाहता हूँ।
4: लड़का लड़की भागकर गले मिलते हैं तो मिलने दे, पब्लिक खुश होनी चाहिए यार, अपनी अकल के लूप में मत।
1: रविवार 4 अक्टूबर को NBC 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म हैप्पी एंडिंग। 2014 की ये मूवी सैफ अली खान और इलियाना डिक्रूज पर फिल्माई गई हैप्पी एंडिंग।

तो चलिए जरा कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक कहानी आपके नाम करते हैं। कहानी है मैले कपड़ों का की। जापान के एक शांत गांव में एक जैन मास्टर रहा करते थे। मास्टर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे भारी से भारी समस्या का समाधान बहुत ही सरल और व्यावहारिक उदाहरणों से कर देते थे। एक सुबह जैन मास्टर अपने एक युवा शिष्य के साथ शांत भ्रमण कर रहे थे, मौसमौसे हो रहे थे, यानी कि फोमिनाद कर रहे थे। पक्षियों की चहचहाट और बहती हवा के बीच चारों ओर एक दिव्य शांति व्याप्त थी। तभी अचानक रास्ते में एक व्यक्ति सामने आया। वह व्यक्ति देखने में तो बहुत ही अशांत और क्रोधित लग रहा था। जैसे ही उसने मास्टर को देखा, वह बिना किसी कारण के उन्हें गालियां देने लगा। उसने मास्टर के चरित्र पर सवाल उठाए, उनके ज्ञान को ढोंग बताया और बहुत ही घटिया अपशब्दों का प्रयोग किया। शिष्य को यह देखकर बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि मास्टर अभी उस व्यक्ति को अपनी तार्किक बातों से चुप करा देंगे, लेकिन मास्टर के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। एक मंद मंद मुस्कुराहट उनके होंठों पर थी और अपने चाल में वे जरा भी बदलाव नहीं लाए थे। वैसे ही चलने जा रहे थे जैसे वे शुरू में चल रहे थे। मास्टर की शांति ने उस व्यक्ति की आग में घी का काम किया। उसे लगा कि मास्टर उसे अनदेखा कर रहे हैं। उसने अब मास्टर के पूर्वजों और उनके परिवारों को लेकर अपशब्द कहने शुरू कर दिए। वह चिल्ला रहा था, चीख रहा था और अपमान की सारी सीमाएं लांघ रहा था। शिष्य का खून खौल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुदेव यह सब चुपचाप कैसे सह रहे हैं। अंततः जब उस व्यक्ति ने देखा कि उसकी किसी भी बात का मास्टर पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो वह मानसिक रूप से थक गया और हार मानकर वहां से चला गया। उस व्यक्ति के जाते ही शिष्य ने मास्टर को रोक लिया। उसने व्याकुल होकर पूछा, गुरुदेव मैं हैरान हूँ, उस दुष्ट ने आपकी मर्यादा को ठेस पहुँचाई, आपके पूर्वजों का अपमान किया, फिर भी आप चुप रहे, क्या आपको क्रोध नहीं आया? माफ कीजिएगा, क्या उसकी कड़वी बातें सुनकर आपको जरा भी कष्ट नहीं हुआ? हम उसे सबक तो सिखा भी सकते थे, फिर आपने मुस्कुरा कर उसे सहन क्यों किया? जैन मास्टर ने शिष्य की आंखों में देखा और शांति से बोले, पुत्र इसका उत्तर मैं तुम्हें अपने कक्ष में दूंगा, अभी मेरे साथ चलो। जब वे आश्रम के कक्ष तक पहुँचे, मास्टर के कक्ष तक पहुँचे, तो मास्टर ने शिष्य को बाहर रुकने को का इशारा किया। कुछ ही मिनटों के बाद मास्टर अंदर से एक पोटली लेकर बाहर आए। उस पोटली से एक अत्यंत तीखी और गंदी दुर्गंध आ रही थी। मास्टर ने पोटली खोली और उसमें से कीचड़ से सने और बदबूदार मैले कपड़े निकाले। मास्टर ने वे कपड़े शिष्य की ओर बढ़ाते हुए कहा, पुत्र ये लो, अपने इस साफ सुथरे वस्त्र को उतार दो और इन मैले कपड़ों को, इन बदबूदार कपड़ों को पहन लो। शिष्य ने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए और नाक सिकोड़ते हुए कहा, छी गुरुदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? ये कपड़े कितने गंदे हैं, इनसे तो भयंकर दुर्गंध आ रही है, मैं इन्हें क्यों पहनूं? मैं इन्हें हाथ भी नहीं लगाना चाहता। मास्टर मुस्कुराते हुए बोले, शिष्य यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जिस तरह तुम इन गंदे कपड़ों को स्वीकार करने से मना कर रहे हो क्योंकि वे तुम्हारे नहीं थे और वे तुम्हें दूषित कर देते, ठीक उसी तरह मैंने उस व्यक्ति के अपशब्दों को स्वीकार नहीं किया। ये अपशब्द उस व्यक्ति के थे, जब तक मैं उन्हें स्वीकार न करूं वे मेरे नहीं बन सकते। यदि मैं उन बातों पर क्रोधित होता तो इसका मतलब होता कि मैंने उस कहे अपशब्दों को स्वीकार कर लिया है। जब कोई तुम्हें बिना मतलब भला बुरा कहता है और तुम विचलित हो जाते हो, तो तुम अनजाने में ही उसकी बुराई, उसके गंदे विचारों को अपने भीतर जगह दे दे

करते हो, उन्होंने कहा। संसार में लोग अपना क्रोध, ईर्ष्या, नफरत दूसरों पर फेंकने की कोशिश करते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे ग्रहण करते हैं या उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। याद रखो शिष्य, तुम्हारे मन और तन पर सिर्फ तुम्हारा ही नियंत्रण होना चाहिए। शिष्य को अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिल गया। तो श्रोताओ, हमने भी तो यही सीखा ना कि हमारी शांति हमारे भीतर है, न कि दूसरों के व्यवहार में। यदि हम दूसरों की बातों से दुखी या क्रोधित होते हैं तो हम अपनी रिमोट कंट्रोल की चाबी उन्हें सौंप देते हैं। आत्मसम्मान का अर्थ दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि स्वयं को इतना स्थिर बनाना है कि दूसरों की नकारात्मकता हमें छू न सके। हमारे विचार हमारे अपने हैं और हमें उन्हें किसी और के मैले विचारों से दूषित नहीं करना। तो ये शिक्षक और शिष्य की कहानी, ये गुरु और शिष्य की कहानी हम हर शिक्षक के नाम करते हैं। कल शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है, तो ये कहानी हर शिक्षक के नाम। धन्यवाद टीचर्स, धन्यवाद गुरुजनों आपके योगदान के लिए, जीवन के अनमोल सीखों के लिए, आपके समर्पण के लिए। हैप्पी टीचर्स डे। बस थोड़ी ही देर में भोजपुरी समाचार आप अभी उदय से सुनिएगा 8 बजे।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपन घड़ी मिला ले जा इ बखत फजर के 8 बजल बा। सब कोई के नमस्ते और आदा। फजर के 8 बजे के भोजपुरी समाचार सुना जा। हर हला ई बतावल गल बाते कि हमनी के देश के जलाशय के स्थिति चिंताजनक बा। मोगोवाकुआ में पानी के स्तर वर्तमान में खाली 36.8% के है। अब अकेर गल बड़ी से यही अवधि के दौरान वो 90% के रहल। हमनी के पानी के भंडार के सुरक्षित रखे और पानी के यथासंभव लंबा समय ले चलावे खातिर जस्ती सख्त उपाय अपनावे के जरूरी बाते एगो क्राइसिस कमिटी गठित करल गल, जेकर अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आसियावादन करत हवन। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के महानिदेशक श्याम तानू के बगल से करल गल घोषणा के अनुसार पहला बैठक आवत सप्ताह के लगावे के उम्मीद बाते। मॉरिशस इबरिस के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 50वां स्थान प्राप्त करलन।

वैश्विक रैंकिंग भर्ती दुनिया के 139 अर्थव्यवस्था के नवाचार क्षमता और प्रदर्शन के मापेला। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के हालिया रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस वैश्विक इनोवेशन रैंकिंग में 3 स्थान ऊपरे चढ़ के साल 2025 के 53वां स्थान से अब 50वां स्थान पर पहुंच गल बा। बैंक ऑफ मॉरिशस चलन में बतावल जाए होला जाली नोट के खिलाफ सतर्कता बरते के मांग करलन, खासकर करेंसी नोट्स के प्रभावित होवे के आशंका बा। सेंट्रल बैंक कोनो नोट के प्रामाणिकता की जांच करे खातिर सही तरीका के याद दिलाईलन और जनता से आग्रह करलन कि अगर कोनो प्रकार के संदिग्ध मामला सामने आवेला त तुरंते पुलिस के सूचना दे देवे के चाही। और दूसर देश में यमन के ईरान समर्थित हूटी विद्रोही ई दावा करलन कि उ सऊदी अरब के राजधानी रियाद में अरामको के एगो सुविधा के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनैलन। हूटी ई भी बोलन कि ई हमला यमन के राजधानी सना और दूसर प्रांत पर ही सऊदी हमला के जवाब में करल गल। देखरे भी संगे हमने के भोजपुरी समाचार समाभल ध्यान देवी खातिर धन्यवाद, नमस्ते और आदाब। Your news on NBC Play.

आवा मरनी की खबर सुने जा। पुआवर गली बोबासे में, पुआवर गली बोबासे में तीन कोरी तीन बरिस की 63 की जनाब मोहम्मद निजाम बही खान, जनाब मोहम्मद निजाम बही खान जिनकरा सब लोग निजाम के नाम से भी जानते थे, उगुजर गल हवन। उनकर जनाजा आज दिन के 11:45 बजे आज दिन के 11:45 बजे उनकर मकान गली बुबासे से निकाल के दफनाए खातिर फिनिक्स के कब्रस्तान ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडे एट 10:45 AM। रॉयल रोड कालबास में 4:05 बरिस की 85 की श्रीमती सती दमयंती बहादुर, श्रीमती सती दमयंती बहादुर पैदाइशी नाम तानु और जिनकरा सब लोग सती के नाम से जस्सी जाना थलंजा, उनकर मृत्यु हो गल बातें। उनकर माटी आज दिन के एक बजे उनकर घरवे से माने रॉयल रोड कालबास से उठा के क्रियाक्रम खातिर त्यामिनिस्त्रीय की शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। मो सेलमो एम दिया सैकुंसों सैंपिया में 2:14 बरिस की 54 की श्री महेश केदू जिनकरा सब लोग सतीश के नाम से जैसी जाना थलंजा, उनकर मृत्यु हो गल बातें। उनकर माटी आज दिन के एक बजे उनकर भाई श्री प्रीतम केदू के घरे मूसलमो एम दिया सैकुंस सैंपिया से उठा के क्रियाक्रम खातिर हौजुबे की शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड 9000 मील ट्रियोले में 3:17 बरिस की 77 की श्री धनराज सिंह सदा सिंह जिनकरा सब लोग बाबू के नाम से जस्सी जाना थलंजा, उनकर मृत्यु हो गल बातें। उनकर माटी आज दिन के दो बज के आधा उनकर पत्नी श्रीमती श्यामा सदा सिंह के घरे रॉयल रोड नव्या मिल त्रियोले से उठा के क्रियाक्रम खातिर त्रियोले की शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। रॉयल रोड सेंट जूलियन दुतमा में 4:01 बरिस के 81 के श्री नरेंद्र नाथ कावलेसा जिनकरा सब लोग धनराज के नाम से जस्सी जाना थलंजा और जे DWC के काम करवा रहलन, उनकर मृत्यु हो गल बातें। उनकर माटी आज सांझ के 3 बजे उनकर बेटा श्री विशाल

काउले सके घरे रॉयल रोड सेंट जुलियन दुतमों से उठा के क्रियाक्रम खातिर मेजिन कॉन्डुमास का किश्मशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 3 PM सावन रोड नोवेल फ्रांस में 3 crore 4 lakh की 64 की श्रीमती शर्मा कुमारी रामकुरन पैदाइश नाम उदीन और जिनका सब लोग शर्मा के नाम से जैसे जाना था लंजा उनका मृत्यु हो गल बाती उनकर माटी बाद में उठावल जाए। गांधी रोड लाल माटी में 4 crore 7 lakh की 87 की श्रीमती रेशमी नंदलोल पैदाशिना मौगा और जिनका सब लोग चंपा बिजुचे के नाम से जस्ती जाना था लंचा उनका मृत्यु हो बकल बातें उनकर माती आज सांझ के तीन बजे उनकर बेटा श्री सुरेंद्र कुमार नंदलोल के घरे गांधी रोड लाल माटी से उठा के क्रियाक्रम खातिर गांधी रोड लाल माटी की शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 3 PM ते जितना जन परिवार दुख में हवन जा दुख के ई बखत में MBC के बगल से सब कोई के हमनी सहानुभूति प्रकट करत हई सर।

0: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस.
1: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu. Toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
2: Radio Mauritius.
3: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार. Radio Mauritius पर.
4: खुशियों का गुलदस्ता लिए हुए आए हैं हम. ये है रेडियो मॉरिशस, आप लोगों के लिए पैगाम आपके नाम प्रोग्राम. और पैगाम आपके नाम प्रोग्राम में खुशियों का गुलदस्ता आप भी तो देते हैं आपके अपनों को, आपके आपके परिवार में, आपके फ्रेंड्स के बीच, आपके अपनों के बीच. कोई भी प्यारा सा इवेंट हो, आप उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएँ तो भेजते ही भेजते हैं. तो आ गया और एक संडे, आ गया और एक पैगाम आपके नाम शो. आप अपने अपनों के नाम और बहुत सारी दुआएं भेजिएगा. नंबर हमारा 5251700 है और इस पर आप मैसेजेस भेजिएगा अपने अपनों के नाम. फिर अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो 402-402-8085 पर कॉल कीजिएगा. 402-8085 पर कॉल करके हमें बताइएगा क्या मैसेज है आपके मन में, आपके अपनों के नाम, दोस्तों परिवारों के नाम. तो चलिए फिलहाल तो हमारी दुआ आपके लिए बहुत सारी है. हमारी दुआ है कि फूलों से आप खिलते रहे, आपके जीवन में खुशबू ही खुशबू रहे और आपके जीवन में हरियाली ही हरियाली रहे.

चलिए ज़रा हम बढ़ते हैं हमारे मैसेजेस की ओर। वैसे मैसेज हमें मिला है बहुत से हमारे श्रोताओं की तरफ से, बहुत ही सुबह सुबह हमें साधना जी ने गुड मॉर्निंग कहा है। गुड मॉर्निंग टू यू रिवेरे क्रेओल की साधना जी। फिर आकाश चेतन मनसुख जी हमारे साथ हैं, उनके आकाश चेतन मनसुख जी पौंपू से हमारा साथ दे रहे हैं और उनका कहना है कि पूरी फैमिली हमारा साथ दे रही है उनके, और म्यूज़िकल इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आकाश चेतन मनसुख जी। आप की तरफ से आप अपनी मामा प्रीति, पापा कृष, बहन उर्वशी और विश्नी, जीजू विनेश, नेफ्यू केहान और नीस नाविया, नानी गीता ऑफ क्यूपिप फैसाइड को बहुत बहुत मंगल कामनाएं दे रहे हैं। सो आपका मैसेज उन तक पहुंच गया होगा। युदीन और दिशाल को भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं पूरे मनसुख फैमिली की तरफ से जो बॉम्बू के रहने वाले हैं। तो चलिए हम ज़रा हमारे सभी श्रोताओं को हैप्पी संडे विश करते हैं। वैसे हमारा साथ दे रही है माला सुमाहू जी भी। माला सुमाहू जी का कहना है कि उनके परिवार में शादी की सालगिरह मनाई जा रही है। शादी की सालगिरह कनाडा के बेटे सुयश और

और रहा बहू आशा की है, 18वीं साल गिरा है, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं मिल रही है। बेटी आयुषी की तरफ से, तीन भाइयों की तरफ से, कृष्ण, उत्तम और शिरवान की तरफ से, सभी समाहो परिवार की तरफ से, यहाँ से उनके पापा सूर्यदेव, मामा माला और पूरे परिवार की तरफ से बहुत सारी दुआएं। हमेशा सुखी रहे, हमेशा खुश रहे और हमेशा उनके जीवन में खुशियों की बरसात होती रहे। बहुत बहुत मुबारक हो सुयश जी और आशा जी आपको अपनी शादी की सालगिरह।

नैनों की बातें जहाँ होती हैं वहाँ पर आंखों की गहराई की भी बातें तो होती हैं। आपकी आंखों की गहराई में बहुत सारी दुआएं हैं, हम जानते हैं, इसीलिए तो इतने सारे मैसेजेस हमें मिले हैं आपके अपनों के नाम। मौदालबेग की अनीता जी हैं जो अपनों को हैप्पी संडे विश कर रही हैं। त्रियोले के सूरज शर्मा सजादा जी हैं जो अपनों को बहुत ही अच्छा दिन गुजरे उनके लिए, ऐसी उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। न्यूगो की फातिमा जी हैप्पी संडे विश कर रही हैं हमारे सभी श्रोताओं को, और देवी जी हैं वे भी हमारे सभी श्रोताओं को हैप्पी संडे विश कर रही हैं। और इधर हमारे साथ हैं लक्ष्मण सिंह गोविंद जी जो क्लेफों वाकुआ के रहने वाले हैं। आप सभी शिव भक्त शिव मंदिर के सदस्यों को बहुत सारी मंगल कामनाएं प्रकट कर रहे हैं। और एक मैसेज है लक्ष्मण सिंह गोविंद जी का जो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है हमको। गुड मॉर्निंग कहते हुए उनका कहना है कि इफ़ योर आईज आर पॉजिटिव यू लव द वर्ल्ड, इफ़ योर टंग इज पॉजिटिव द वर्ल्ड विल लव यू। बस अपनी वाणी में मिठास लाइए और अपने आप इस संसार को आकर्षित कीजिए, आप इस संसार में मिठास बांट लीजिए। चलिए जरा इधर वाकवा की सुदेवी जी का मैसेज पढ़ते हैं। आज मालेगा की भौजी राधा का जन्मदिन है और विश कर रहे हैं बेटे ऋषि, कमलेश, बहू वनेशा और नाती नातिन, बेटी दामाद, भैया अमित, अमृत और मुनिराज, गोदनी बबीता और ललिता, पूरे जीवलाल परिवार की ओर से वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू राधा जी, पूरे रामरतन परिवार की तरफ से, कुवाहो परिवार और गुरदयाल परिवार की तरफ से, एंड बेशक हमारी पूरी टीम की तरफ से वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू राधा।

तो चलिए, इस समय 8:30 हैं और इन दिनों पितृपक्ष का वातावरण चल रहा है, पितृपक्ष का ये पक्ष चल रहा है। सो हमारी श्रोता ने पितृपक्ष के अवसर पर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पण की है। पितृपक्ष के अवसर पर हम सभी परिवार मिलकर अपने पितरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको शत शत नमन कर रहे हैं। आज उन्हीं के त्याग और बलिदान के कारण ही हम अपने परिवार के साथ एक खुशहाल और सुखी जीवन जी रहे हैं। बिहारी परिवार का ये कहना है, बिहारी परिवार और सूरत परिवार दोनों मिलकर पितरों को श्रद्धांजलि प्रकट कर रहे हैं। और इधर हमें अनीता जी का मैसेज मिला है, फ्लिक ऑफ फ्लाक से। अनीता जी का कहना है कि उनके बेटे अंकुश का बर्थडे कल था और

शुभकामना पूरे परिवार की तरफ से, अंकुश को मंगल कामनाएं पूरे परिवार की तरफ से, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू अंकुश और उनके सभी दोस्तों की तरफ से। और आज संडे उनके लिए बहुत मंगलमय रहे, ऐसी दुआ है अनीता जी की। और आज ही हमें मैसेज मिला है अनसुया जी की तरफ से, अनसुया रामखेलावन जी जो त्रियोले की रहने वाली हैं, अपने बेटे नीतीश को जन्मदिन की मंगल कामनाएं दे रही है। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू नीतीश, आपके पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद आपकी माता जी ने आपको दिया है। आप हमेशा तरक्की करें, आप बहुत सुखी रहें, लंबी उम्र पाए, बहुत अच्छी सेहत पाएं, ऐसी दुआ है आपकी माता जी की। वेरी हैप्पी बर्थडे टू एवरी वन हमारी पूरी टीम की तरफ से। और वैसे नीतीश जी, आपको मंगल कामनाएं रामखेलावन परिवार की तरफ से और आपकी गुड़िया सी प्यारी सी बेटी याना की तरफ से।

सुबह के इस नजराने में आपके लिए हम पेश कर रहे हैं पैगाम आपके नाम, और पैगाम आपके नाम कार्यक्रम में हम लीला जी के नाम करते हैं बहुत सारी मंगल कामनाएं जो बाशी की रहने वाली हैं। लीला जी ने हमारे सभी श्रोताओं के नाम बहुत सारी मंगल कामनाएं भेजी हैं। और इधर शाना जी का बर्थडे है, शाना जी को बहुत बहुत सी मंगल कामनाएं मिली हैं उनके पूरे परिवार की तरफ से, और उनकी खाला जैबून जी की तरफ से, खालू कासम जी की तरफ से। शाना जी आपको जन्मदिन की मंगल कामनाएं, आपके शौहर अखमेज की तरफ से, बेटे नुमान की तरफ से, माँ नजीमा, पापा अम्मो साहिब की तरफ से, पूरे रमज़ान परिवार की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू शाना।

और इधर हमें मैसेज मिला है न्यूगोव की फातिमा जी का। फातिमा जी का ये कहना है कि उनके भाई रिशाद और जबीन कुदरत जो कौंजियाब के रहने वाले हैं, वे अपनी

शादी की सालगिरह मना रहे हैं, 26 साल मना रहे हैं रिशाद और जबीन जी। आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं न्यू घोव की फातिमा जी की तरफ से। और शादी की सालगिरह मना रही हैं त्रिवेणी जी भी। त्रिवेणी जी और उनके पति अनिल जी जो गुडलैंड्स रहते हैं, उनको मंगल कामनाएं मिली हैं पूरे लीलाधरी परिवार की तरफ से और पूरे मोहन परिवार की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा बहुत ही सपोर्टिव रहें त्रिवेणी और अनिल जी, और यही दुआ हमारी तरफ से है रिशाद और जबीन जी के लिए भी।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

कुटेज की रहने वाली हैं, उनका मैसेज आया है और उनका कहना है कि हमारे सभी श्रोताओं का संडे ग्रेट है, यही दुआएं करते हैं हम। साथ ही साथ आज मामी कमला जी का बर्थडे है, उन्हें बर्थडे विश कर रही हैं मामी कमला चिकुरी जी का बर्थडे है। जी हाँ, मामी जी रहती हैं गुडलैंड्स और उन्हें मंगल कामनाएं जन्मदिन की भेज रहे हैं गुडलैंड ननद कुमारी, उनकी ननद कुमारी भेज रही हैं उन्हें जन्मदिन की मंगल कामनाएं। आशा भेज रही हैं बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभम, ऋषभ, आरती, राज और पूरा जानू परिवार, मौसी इंदिरा सभी मिलकर कह रहे हैं अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू कमला जी। आप हमेशा खुश रहें, हमारी पूरी टीम की यही दुआ है आपके लिए, हमेशा सलामत रहें आप।

तो चलिए पैगाम आपके नाम कार्यक्रम को हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं नितेश जी के नाम के मैसेजेस के साथ। वैसे नितेश जी, हाउ लकी यू आर, आपकी मम्मा ने फ़ोन किया, आपको हैप्पी बर्थडे विश किया, और इस बार आपकी मौसी जी ने फ़ोन किया आपको हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए। सो प्रेमी राशि गुलाम जी ने गौदे मास से आपको मंगल कामनाएं भेजी हैं जन्मदिन की। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू नितेश जी, पूरे राम खिलावन परिवार की तरफ से, बेटी याना की तरफ से, मम्मा अनसुया की तरफ से, और मौसी प्रेमी राशि गुलाम की तरफ से। तो चलिए ये गाना आपके नाम, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू।

और अभी अभी मैसेज आया है कि रोज हिल के आंतीश जी अपना बर्थडे मना रहे हैं, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू आंतीश जी, आपको मंगल कामनाएं मीना, ज्ञानती और विवेक की तरफ से।

0: हैप्पी बर्थडे विश के साथ ही समाप्त होता है आज का हमारा पैगाम आपके नाम प्रोग्राम। आप लोगों का साथ इतने प्यार से मिला, इसके लिए बेहद शुक्रिया। हम सुरेखा आपसे बस यहीं पर आज्ञा चाहेंगे, पैगाम आपके नाम कार्यक्रम आप तक पहुंचाने के बाद हमारी आपकी मुलाकात भी यहीं पर समाप्त होती है। सुबह के 9 बजने वाले हैं और सुनिएगा आज के संक्षिप्त समाचार अभी उदोई से, उसके बाद आप सुनिएगा आज का विशेष कार्यक्रम नवरात्रि पर आधारित मंगलाचरण कार्यक्रम के दौरान, जिसे रत्ना जी पेश करेंगी। शुभ संडे, शुभ रविवार, नमस्कार।
1: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं अभी ओदोए, आपको नमस्कार।
2: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मॉरिशस ने साल 2026 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 50वां स्थान प्राप्त किया है। ये वैश्विक रैंकिंग दुनिया भर की 139 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन को मापती है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस वैश्विक इनोवेशन रैंकिंग में 3 स्थान ऊपर चढ़कर साल 2025 के 53वें स्थान से अब 50वें स्थान पर पहुंच गया है। साल 2019 में ये 82वें स्थान पर था, यानी तब से अब तक इसमें 32 स्थानों का सुधार हुआ है। ये देश सब सहारन अफ्रीका में इनोवेशन रैंकिंग में पहले स्थान पर बना हुआ है और उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में 6 से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इस प्रगति का मुख्य कारण मानव पूंजी और अनुसंधान मूल ढांचा तथा व्यावसायिक परिपक्वता के सेक्टरों में बेहतर प्रदर्शन है। ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि हमारे जलाशयों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। महोवाकुआ में पानी का स्तर वर्तमान में केवल 36.8% है, जबकि पिछले साल की तुलना में इसी अवधि में जल स्तर 90% था। हमारे पानी के भंडार को सुरक्षित रखने और पानी के को यथासंभव लंबे समय तक चलाने के लिए अधिक सख्त उपाय अपेक्षित है। एक क्राइसिस कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आसियावादन कर रही हैं। बैंक ऑफ मॉरिशस ने चलन में बताए जा रहे जाली नोटों के खिलाफ सतर्कता बरतने की अपील की है, विशेष रूप से करेंसी नोट्स को के प्रभावित होने की आशंका है। सेंट्रल बैंक ने किसी नोट की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए सही तरीकों की याद दिलाई है और जनता से आग्रह किया है कि वे किस

0: किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दें। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार देर रात फ्लाइट के हीरो भारतीय पायलट कप्तान स्मिथ मछार से फोन पर बात की। इस दौरान कप्तान स्मिथ मछार ने 30 सितंबर को कॉकपिट के अंदर बीते खौफनाक पलों के बारे में बताया, जब ओमान के उनके को पायलट ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। कप्तान स्मिथ मछार ने बताया कि उन्हें पहले लगा कि विमान को कोई नुकसान पहुंचा है, परंतु फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनका को पायलट ही उन पर हमला कर रहा है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। बुबासेमे 63 साल के 63 years old के जनाब मोहम्मद निज़ाम बही खान जिन्हें सब लोग निज़ाम के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर पुआवर गली बोबासें से निकालकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 11:15 AM। रॉयल रोड क्रेव क्योर में 74 साल की 76 years old की श्री सरधानन सिबोगत जिन्हें सब लोग सरधानन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम के चार बजे उन्हीं के घर रॉयल रोड क्रेवक्यूए से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए क्रेवक्यूए की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: This is Radio Voices.
2: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें अभी उदय से। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। शुक्रवार 2 अक्टूबर को मोगोवा का जलाशय का जल स्तर 36.6% पर आ गया है। जैसे जैसे पानी का स्तर कम हो रहा है, सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने परिवारों को वाटर टैंक और एंड डोमेस्टिक वाटर पंप ग्रांट स्कीम की याद दिलाई। इसका उद्देश्य है पानी के भंडारण के लिए वाटर टैंक और घरेलू पंप लगाने में मदद करना। ये योजना डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा चलाई जा रही है और वे परिवार इसका लाभ उठा सकते हैं जिसकी कुल आय 60,000 रुपये या प्रति माह से अधिक नहीं है। इसके लिए आवेदन DBM की वेबसाइट पर ऑनलाइन या फिर देश भर में स्थित उनकी शाखाओं के माध्यम से किए जा सकते हैं। तो इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। मॉरिशस ने साल 2026 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 50वां स्थान हासिल किया है। ये वैश्विक रैंकिंग दुनिया भर की 139 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन को मापती है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस वैश्विक इनोवेशन रैंकिंग में 3 स्थान ऊपर चढ़कर साल 2025 के 53वें स्थान से अब 50वें स्थान पर पहुंच गया है। ये देश सब सहारन अफ्रीका में इनोवेशन रैंकिंग में पहले स्थान पर बना हुआ है और उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में 6 से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इस प्रगति का मुख्य कारण मानव पूंजी और अनुसंधान मूल ढांचा तथा व्यावसायिक परिपक्वता के सेक्टरों में बेहतर प्रदर्शन है। ट्रूडेडुसा पुस्तक महोत्सव के पांचवा संस्करण इस रविवार को संपन्न होने जा रहा है। सुबह 10 बजे से छोटे और बड़े सभी लोगों के लिए इमेजेस यानी कि छवियों से जुड़ी कई गतिविधियां आयोजित की जा रही है और वास्तव में

0: वर्ष चुना गया विषय छवि का सम्मान यानी कि छवि पर विशेष ध्यान है। साल 2026 का ये संस्करण रात के 7 बजे से होने वाले एक चित्रित संगीत कार्यक्रम के साथ समाप्त होगा। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि इराक की सरकारी ऑयल टैंकर कंपनी ने हॉर्मुज जलमार्ग के एक बहुत बड़े क्रूड कैरियर से 20 लाख बैरल इराकी कच्चा तेल भेजा है। कंपनी के महानिदेशक ने शनिवार को बताया कि दशकों में पहली बार कंपनी ने इस प्रकार का ऑपरेशन किया। इसका मतलब ये है कि कंपनी कच्चे तेल को सिर्फ बसरा बंदरगाह तक पहुंचाने के बजाय सीधे हॉर्मुज जलमार्ग भेज रही है। इसी से सरकारी तेल कंपनी सोमो को तेल की बिक्री और उसके लिए बेहतर कीमत तय करने में ज्यादा विकल्प मिलेंगे। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। सावन रोड नोवेल फ्रांस में 64 साल की 64 years old की श्रीमती शर्मा कुमारी रामकुरन पैदाइशी नाम उदीन और जिन्हें सब लोग शर्मा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। गांधी रोड लालमाटी में 87 साल की 87 years old की श्रीमती रेशमी ननलोल पैदाइशी नाम मौगा और जिन्हें सब लोग चंपा बिजुचे के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपेर के तीन बजे उनके बेटे श्री सुरेंद्र कुमार ननलोल के घर गांधी रोड लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाटी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 3। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: एमबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे
2: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

हमारा वही है 5251705251707005। आप चाहे तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। तो आइए इस बज़्म का बाकायदा आगाज़ कुल शरीफ की तिलावत से करते हैं। बाग़ौर व अदब समात फरमाइए।

सामईन कराम, एक अजीम उस्ताद की पहचान सिर्फ ये नहीं कि उसके शागिर्द कितना जानते हैं, बल्कि ये है कि उसके शागिर्द किस तरह के इंसान बनते हैं। और अगर इस मयार से देखा जाए तो रसूल कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअल्लिमी का मकाम कितना बुलंदोबाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सिर्फ अहकाम नहीं सुनाए, बल्कि अपने अमल से उन अहकाम की तस्वीर दिखाई। सच बोलना सिखाया तो खुद सादिक कहलाए, अमानत का दर्स दिया तो खुद अमीन कहलाए, माफ़ी का रास्ता बताया तो अपने दुश्मनों को भी माफ़ करके दिखाया, रहमत की बात की तो पूरी ज़िंदगी रहमत बनकर गुजारी। यहाँ हमें मुअल्लिमी का एक और बड़ा राज मिलता है। सबसे मुयसर सबक वो होता है जो उस्ताद की ज़बान से नहीं, उसके किरदार से निकलता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते वो करते, जो सिखाते पहले खुद उस पर अमल करते। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम सिर्फ सुनी नहीं गई, दिलों में उतरी, किरदारों में ढली और फिर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती चली गई।

सामईन कराम, अगर हम ये समझना चाहते हैं कि एक अजीम मुअल्लिम बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करता है, तो हमें सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को सिर्फ छोटा इंसान नहीं समझते थे, उन्हें मुकम्मल शख्सियत

समझ कर मोहब्बत देते, इज्जत देते, उनसे उनकी बात सुनते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को सलाम करते, उनके साथ शफकत फरमाते, उनके जज्बात का ख्याल रखते। ये मामूली बातें ना थीं, ये तरबियत थीं। क्योंकि बच्चा सिर्फ उस वक्त नहीं सीखता जब उस्ताद किताब खोलता है, वो उस वक्त भी सीख रहा होता है जब उस्ताद उससे बात करता है, जब उस्ताद उसकी गलती पर रद्द अमल देता है, जब उस्ताद उसकी कामयाबी पर खुश होता है, और जब उस्ताद उसे ये एहसास दिलाता है कि तुम अहम हो। और शायद इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आने वाला बच्चा सिर्फ एक सबक नहीं ले जाता, वो अपने दिल में मोहब्बत ले जाता है। सामईन, अब ये कलाम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, समात फरमाइए।

मौजूद सामीन, उस्ताद ये नहीं बताता कि क्या करना है, वो ये भी सिखाता है कि कैसे करना है। और यही वो मकाम है जहाँ सैयद आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअल्लिमी अपनी कामिल तरीन सूरत में नज़र आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ इबादत के अकाम नहीं दिए बल्कि इबादत का तरीका सिखाया, सिर्फ नमाज का हुक्म नहीं दिया बल्कि नमाज पढ़ कर दिखाई, सिर्फ रोज़े की फजीलत नहीं बताई बल्कि रोज़ा रख कर सब्र का मतलब समझाया, सिर्फ इस्लाम की तालीम नहीं दी बल्कि ख़ुद इस्लाम को आम किया। यही तो सुन्नत मुबारका है, यानि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते को अपनी ज़िंदगी का रास्ता बना लेना। खाने का तरीका हो या सोने का, सलाम करने का अंदाज़ हो या लिबास का, मिलने जुलने का, इबादत हो या मामूलात, गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सिर्फ मस्जिद तक महदूद न थी बल्कि पूरा घर, पूरा मुआशरा, पूरी ज़िंदगी एक दरसगाह है। सामीन, आइए पैगामात का सिलसिला जारी रखते हैं। मरहूम नदीम पियाबुकस के लिए इसाले सवाब की दरख्वास्त, जिनको इंतकाल हुए 30 साल यानी 30 ईयर्स गुजर चुके हैं। मोहतरमा नाजमुन और नादिया पियाबुकस की तरफ से ढेर सारी दुआएं। थियोले से बंधु और कौमाली फैमिलीज़ में जितने भी लोग इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनकी मगफ़रत फरमाए। हम दुआ करते हैं कि रब कायनात सभी मरहूमीन को अपनी मगफ़रत, अपनी रहमत और अपनी दायमी नेमतों में जगाता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन।

सामईन कराम, इंसान अकेला नहीं जीता, वो रिश्तों के दरमियान जीता है। माँ बाप, औलाद, बहन भाई, शरीक हयात, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार और इन्हीं रिश्तों के दरमियान इंसान के अखलाक की असल आजमाइश होती है। रसूल कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इबादत के मुअल्लिम ना थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ते निभाने के भी मुअल्लिम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हकूक़ सिखाए, रिश्तेदारों से हुस्न सुलूक की तरबियत दी, पड़ोसी के हकूक़ वाज़े फरमाए, यतीमों और कमज़ोरों का ख्याल रखने की तालीम दी और सबसे बढ़कर ये सिखाया कि रिश्ता सिर्फ खून से नहीं बनता, हुस्न सुलूक से भी रिश्ते बनते हैं। कभी एक नर्म लफ्ज़ अजनबी को अपना बना देता है और कभी एक सख्त जुमला अपनों को भी पराया कर देता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ताल्लुकात सिर्फ मुआशरती ज़रूरत नहीं, एक अखलाकी जिम्मेदारी भी है। सामईन, आइए पैगामात की ओर बढ़ते हैं। क्यूपिप से मोहतरमा रूबीना की तरफ से एक पैगाम, उनके तमाम रिश्तेदार और दोस्त उमरे के लिए रवाना हो रहे हैं। अल्लाह हमें भी मक्के मदीने जाने की दावत दे, बेशक, आमीन। दुआ है कि आप भी जल्द मक्के मदीने की ज़ियारत करें, हम यही दुआ करते हैं। अगला पैगाम वाकुआ से मोहतरमा शहनाज फरमाती हैं कि तमाम मरहूमिन के लिए इस साल सवाब की दरख्वास्त, खासकर मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप के लिए इस साल सवाब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मगफ़रत फरमाए, उनके वालिदैन की मगफ़रत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।

मोहतरम सामईन, एक इंसान का असल अखलाक उस वक्त सामने आता है जब दुनिया की निगाह उस पर ना हो, जब वो अपने घर में हो, अपनों के बीच हो और रसूल कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी हमारे लिए मुअल्लिमी का एक और बेमिसाल बाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर वालों के साथ हुस्न सुलूक की तालीम दी, मोहब्बत को कमज़ोरी नहीं बनाया, शफ़क़त को बोझ नहीं रहने दिया और

घर के ताल्लुकात को मामूली नहीं जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें बताती है कि दीन सिर्फ बाहर अच्छा नज़र आने का नाम नहीं, दीन ये भी है कि घर के अंदर आप कैसे इंसान हैं। बाहर दुनिया आपकी इज्जत करे ये अच्छी बात है, लेकिन घर वाले आपके अखलाक से सुकून पाएँ ये असल कामयाबी है। क्योंकि बाज़ लोग

कि जो शख्स इंसानियत सीखना चाहता है उसे अपने घर से आगाज़ करना चाहिए। घर एक छोटी सी दुनिया है और एक अच्छा मुसलमान उस दुनिया में भी रहमत बनकर रहता है।

सामिन इकराम, इंसानों के दरमियान इख्तलाफ होना फितरी है। राय मुख्तलिफ होगी, मिजाज मुख्तलिफ होंगे, पसंद नापसंद मुख्तलिफ होगी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम हमें ये सिखाती है कि इख्तलाफ का मतलब दुश्मनी नहीं। हम किसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर उसके लिए इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। हम किसी की बात से मुत्तफिक ना हों, मगर उसके इंसान होने का हक नहीं छीन सकते। हमें अपनी बात कहने का पूरा हक है, मगर दूसरों के दिल तोड़ने का हक नहीं। और यही हुजूर कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का हुस्न है। इख्तलाफ के मौके पर भी अखलाक का दामन थामे रहने की तालीम दी। आज के दौर में ये सबक शायद पहले से कहीं ज़्यादा अहम महसूस होता है, क्योंकि हमारे पास बात पहुँचाने के ज़राए तो बहुत हैं, मगर बात किस तरह पहुँचानी है ये तरीका सीखना बाकी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुअल्लिम हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं कि अल्फाज सिर्फ बोले नहीं जाते, अल्फाज दिलों पर असर भी डालते हैं।

सामिन, आइए आज का आज के लिए आखिरी पैगाम लेते हैं। 6 अक्टूबर को हसन बुलुक की सालगिरह है, वो 9 साल के होंगे। मोताए ओगी से उनकी दादी उनके लिए ढेर सारी दुआएं करती हैं, मांगती हैं। बस दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह अज़्ज़वजल वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और एक फर्मा बरदार बच्चा बने।

听众朋友，欢迎歌曲欣赏节目差不多接近尾声，又要同各位听众朋友告别了，我等人在下次同一节目时间再见。

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

नमस्कार श्रोतागण, घर ही मिलाते चलिए। इस समय शाम के 4:11 हो चुके हैं हम और आप कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। आज का जो विषय है कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुने। हर इंसान की एक पहचान होती है, किसी की दौलत से, किसी की शोहरत से और किसी की खूबसूरती से। लेकिन सच कहें, इंसान की असली पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। आज इसी पर हम बात करेंगे कि इंसान की पहचान उसके लफ्जों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। आइए इस पर आप चर्चा कर सकते हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। 4028085 पर आप सभी का इंतजार है। इंसान की पहचान उसके लफ्जों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है।

0: तो चलिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक कॉलर है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो,
1: नमस्कार पूजा जी।
0: नमस्कार हरीश जी, कैसे हैं आप?
1: हमेशा की तरह आपके प्रोग्राम हम इंतजार करते हैं और आपके विषय पर सोच विचार करके कुछ बोलते हैं, कुछ बांटते हैं, कुछ अनुभव शेयर करते हैं। तो आज के जो विषय है, कैसे हम पहचानते हैं एक व्यक्ति को, कैसे हम उसको उसकी पहचान लायज का जिक्र करते हैं, उसके व्यवहार से या उसकी धन दौलत से या उसकी शोहरत से या उसके फैमिली नेम से, ये सब होता है। हम बहुत से लोग होते हैं कौन पैसन सा वाई बस उसको दिखता है, सूट केस लाता है, जैसा जाता है काम कर रहे सूट खवाते ज्ञान अब ये हेलो, तो उसके पहचान ये है। ये जरूरी नहीं है पूजा जी। हम फॉर एग्जाम्पल एक मिनिस्टर के लेते हैं, एक मिनिस्टर मॉरिशन मिनिस्टर, तो इट्स नॉर्मल नॉर्मल कि जब वो अपने मिनिस्ट्री में जाते हैं तो खुशी में हो के जाएगा, बल्कि वो उस मिनिस्ट्री के हेड होता है, तो ये तो होता है। लेकिन इसकी जरूरी ये जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा इंसान है, वो अच्छा व्यक्ति है, कि बहुत बड़ा पर्सनालिटी है, नहीं। इस व्यक्ति हम इसे पहचान करते हैं कि उसके एक्शंस क्या है, वो कैसे उसके कर्म क्या है। यो नॉर्मली अगर सोसाइटी में है, समाज में है, तो कैसे वो बिहेव करता है, वन से मैनर्स, उसके व्यवहार मैनर्स की लाभी चीज लिए ना, कैसे हैबिट उसके है, ये हम सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ ये सब देखना चाहिए। और कैसे जब समाज में है तो कैसे कौन एटीट्यूड से है, और उसके लाइफ में अपन अपने परिवार में वो कैसे जीते हैं, अच्छी तरह से जीते हैं, अपने परिवार से की सेवा करते हैं, या वो अपने आप पर सोचते हैं इगोइस्ट है, क्या बोलते हैं इगोइस्ट। तो ये सब हमको मालूम होना चाहिए, ताकि हम उस व्यक्ति को कैसे हम आदर करें, उसको होना करें, तो कि वो डिजर्व होता है, वो मेरी सालोनेला दोनों सालोनेला पशु एक्शन पशु बिहेवियर पशु लैबिटूड ए से फैशन फेयर एक जिमून द सोसाइटी हाउ ही बिहेव्स सा से मो ओपिनियन माय ओपिनियन जी। ओके,
0: बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, और आपने जो भी कहा सच कहा, आपको कहेंगे शुभ संध्या, बाय, नमस्ते। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्ते पिता जी।
0: नमस्ते संगीता जी,
2: नहीं हम इंदिरा हैं।
0: अच्छा इंदिरा जी, चलिए
2: इंदिरा मेबैक से
0: इंदिरा जी का आपका स्वागत है।
2: और
0: हाँ इंदिरा जी, आपका क्या कहना है इस विषय पर?

0: छत अच्छा सा बिचारने के आने ना, कैसे भैया है, भैया धनी ना भैया,
1: हाँ
0: भैया अच्छा अच्छा विचार बोला
1: जी,
0: हम
1: हाँ।
0: जैसे एक एक गो बाप दो तीन गो बटवे बच्चा हम बोला जैसे एगो आदमी के लापारों देख बस देखा ओकर से जीब ओकर से देखभ कैसे बोली विचार करता सका अदमिया आ तो आना देखलक तोरा खुशी हो तू अच्छा न अदमिया तो अच्छा बा कैसे बोले जला गो को जे कैसे भैया बोलक सक आक्षर न रियाक्षर हम बोलब लापारों से ट्रम्पेज ऊ निमन से आ निमन से बचे तू बोल निमन आदमी है जब गए और घर में रहलक जिंदगी गुजारत हुई तब देखा तब कैसे अब तक देख ला था मजा लापारों से ट्रम्पेज कैसे जाना जाए हम बोलीला अभी तक को मजे न ये जाना चाहिए सर कैसे अडम्याला को जा जा हम देखिला एक एक चीज हम जितना एक्सपीरियंस बा हमार हमार तीन को बेटी बा हम बोलीला जा जा तो निमन अडम्या वो निमन वे रही अर्जुन मोबे अडम्या वो जा जा मोबे वे रही वो हर आदमी के मैनेज वो मैनेज वो चीज जो समझे वो जमे नहीं हो आदमी में जे अच्छा हो तो अच्छा हो बुरा हो तो और बुरा हो हमरा ऐसे बुझाना को मजा और आवेदन सा को मजा कैसे बोले नंसा हो सांस ग्रीसे लो और आदमी ऐसे नहीं करना आवेदन सा को मजा छुपा छुपा के आवेदन सा बतावे नंसा निमा डर भी आवेदन सा तब देख पाओ कोई ब्रेड विजाज ओसे
1: ये तो है मन
0: रे देख के चाहे ना निमन से जांचा कितना हम बोया नहीं कितना जांचा कर जे तो हर दिस जिंदगी में तो हर किस्मत में बा निमन आदमी तो निमन भी जे रही बुरा तो बुरा भी हम तो ऐसे सोच विचार के दिख रहा जोन भगवान देवे रहा जे तोरा निमन दे तो निमन में ही दे और जैसे एगो बात बोला जला जैसे भगवान पांच तत्व के हो बने रहे पर आदमियों में ऐसे बा ओकर निमन ओकर बुरा ओकर अच्छा बोली विचार ओकर निमन सबा सब औसा मावेला हमरा तो ऐसे लख ला आदमिया में कोई नहीं सकी बोले जे सौ पुसा अच्छा बा सौ पुसा मोबे ओकर निमन मोबे हो सब बाकर में हमने के चाहना जाने के कैसे बोली विचार करब स जब मोबे होता तो हमने चुप हो जाब स मजे कॉम्प्रोमाइज विद आवर लाइफ उसे चाहना करे के जे वो एक बात बोला ताता तने सुन अतर के तो हमने चुप हो जाब स जे वो बोला ताता हो वो लाके जाना चुप हो जाके ऐसे को मजे एक कोई सुमेत हो जाना जाए कि ऐसी बात बोली में तब को मजे लविवा पहुंचने हो के जाए जे दुनो को मजे को माने जो दुनो के मोबे मोबे बाद दुनो के हो तो एगो के चाहना धीमा हो को मजे एगो मोबे तो एगो निमन आदमी और हम देखे ला हर परिस्थिति आदमी के परिस्थिति भी को मजे लोग के जीवन के लास्ट में हम देखे ला मजे हो निमन आदमी के एगो मोबे आदमी मिंगल और हाँ। जब वो भी आदमी आके देख में कोई निमन आदमी मिलेगा हम अपने जौदा में देखते हैं हमरे यहाँ देखते हैं हम एगो निमन आदमी है जमरा है तो एगो दूसरा कहते आदमी मिल गल बा हो वो ना तो निमन बा कहते एगो मोबे पत्नी मिल गल तो ऐसे बा हम तो देख रहा ऐसे बोली विचार जाना को मजे लखो जे भगवान तो राधे दुनो निमन निमन तो मोबे वा ना जन्म ना
1: नहीं जन्म भाई सच्चे के जाने ना जैसे तो हर मन बाते तू ऐसने हुए लोगों के देख बा लोग के देख बा जानेला हम जैसे जानले हैं कि
0: हाँ,
1: जैसे तो हर मन बात
0: देख बा हाँ देनी मन भाव तो तू निमन में से देख बा
1: निमन से देख बा हाँ
0: हम निमन से देखते हैं तो वो आदमी हमने निमन से नहीं देखा था उस जगह तो मैं तब बुरा बा उस हमने तब बुरा विचार से देखा था
1: वो
0: कहता तो सब सोच बुरा बा सब चीज जो बच्चा था हमने तो उसका निगाचिव बुझाता वो तो हमने सब निगाचिव निकाला था हमारे बोली विचार में तो उसे नहीं सक हो करे तब प्रीतो जो अच्छा बात है उपरी तो चुप हो जाए जाए जाओ का नेगेटिव ओका संगे हमार निमन हमार संगे ऐसे रहना ऐसे रहना अभी अभी जिंदगी बिताए हम वही लाई से अच्छा जोड़ी विचार निकाल लो पूजा जी शुभ रात्रि
1: शुभ
0: संध्या बाय बाय टेक केयर
1: अच्छा नमस्ते। एक और श्रोता है लाइन पर आइए उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो
2: हेलो पूजा जी नमस्ते।
1: नमस्ते विजय जी कैसे हैं आप?
2: सब ठीक बाटे आप अच्छा हुआ ना?
1: हाँ मैं भी अच्छी हूँ और आज हम बात कर रहे हैं कि हर इंसान की पहचान जो है उसकी व्यवहार से होती है उसके बोली से नहीं तो चलिए आप पर क्या आप इस पर क्या कहना चाहते हैं?
2: हाँ बहुत बढ़िया बटे हम लोग अच्छा बात जो प्रोग्राम रख ले बता जितना जना सुना सबको बता प्रणाम और हमारा लोग पहचान जो हमने हटे हमनी के नाम पर नहीं हटे पैसा पर नहीं है पैसा नाम पर नहीं हमने हमनी के चाहना हमने सोचे के पास कि ढेर अभी

0: जहाँ पर ये अभी चलाल बाटे दुनिया जहाँ चल बटे खेल पहचान निमन से पास की अभी कैसे बाटे घर में राम घड़ी में शाम सुन ले ना कैसे बाटे औसे हो जाला टे अभी जाना देखे के निमन से पास की बहुत अभी बहुत धोखा बा अभी के जिंदगी जहाँ चल जहाँ चलाल बाटे जहाँ चल रही अभी बहुत धोखाधड़ी बाटे इंसान के पहचान ओकर नाम से भी होला टे नहीं जब कोई बेटा टे नहीं वो बड़ा बहुत बड़ा आदमी है पैसा ओकर मानिए चाह दिखेगी और खूबी चाह दिखेगी कई कई कितना पर बाटे वो बस की अभी धोखाधड़ी बहुत बाटे पहचाने के इंसान के बहुत जिप्सी लोग अभी बोली पहचाने के वो इंसान के बहुत बहुत जिप्सी लटे देखबा ओकर ओकर विजाज दूसरा रटे और ओकर काम दूसरा रह बस की अभी तब एगो छोकरा दिखला शादी करके बोलबा बहुत अच्छा बाटे निमन बाटे जब जब जब प्रॉब्लम हो लगे तो बोलबे नहीं तब तो कोई बड़ी जानत थी से प्रॉब्लम आ रहा है संगे नहीं विजाज विजाज चलना रहेगी ओके मानिया चला जब मानिया वो इंसान में अच्छा रही ओकर बोली ओकर मानिया अच्छा रही तब जाके जन्म कैसे चाल चलन तब तब जाके वो इंसान के सब पहचाने पास की अभी तक धोखाधड़ी बहुत बाटे हमारा लोग जिप्सी लगे इंसान के पहचाने के कि कैसन बाटे वो पहचान पैसा से नहीं हो लगे पहचान नाम से भी नहीं हो रहा तोहर मानिया तो स्वभाव हाँ वो अच्छा रही तब जाके जाके जन्म वो सच्चा इंसान बाटे वो आने तब बहुत दिखेल जहाँ पहचाने के बहुत मुश्किल बाटे हमारा विचारों का तटे ना सबको जितना सोच समझ के पहचाने के वो इंसान के देखे के वो मानिया हमारा ऐसे बुझाता थे आप पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद देता था सर सबको बहुत प्रणाम
1: धन्यवाद और प्रणाम आपको भी एक और श्रोता है लाइन पर आइए उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है हेलो
2: हाँ
1: नमस्ते प्रणाम नानी जी
2: हाँ बेटी
1: अच्छा हुआ
2: हम कैसे अच्छा है तो लोग अच्छा हुआ ना
1: हाँ
2: हम यही बोले चाहता है जे के महात्मा गांधी बोले रलन बुरा

0: कहियो, उनका बोला था बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो आ बुरा मत कहो, तो यही यही विषय में बतिया था वजह ना।
1: हाँ, कि इंसान
0: बहुत अच्छा बतिया था वजह, अच्छा विषय बात है। चाहे सब कोई के भला से बतियाई के, भला से रहे के, जो दूसर बात नहीं बतियाई के, वो भगवान पाप लिखेलन नहीं अच्छा। हाँ, तो लगता अच्छा विषय अनले है, वो हम खुशी है, बहुत खुशी है बेटी सुने के ऐसा ऐसा बात। जो कहाँ मिली सत्संग, सत्संग नहीं मिले ला हाली, अभी हमने के भाग बैसे हमने के सत्संग देवता। हाँ, तो लोग बतियावे ला जाता, बहुत अच्छा अच्छा अच्छा विषय आने ला जा, बहुत खुशी है ऐसा विषय सुने के, लड़का लोग का चाहला सुनावे के भी, लड़का लोग जानी तो लोग भी अच्छा, बहुत खुशी है, बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, धन्यवाद दानी जी। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो
2: हेलो, नमस्ते।
1: नमस्ते भाई दिला जी, कैसे हैं आप?
2: चांदी सोना काली ते चमकत अलावी
1: ऐसे
2: हाँ अच्छा। सब के है झन झन झन जाने ला समझे को रिसर्च कर ला हम ना और एक्सपीरियंस कर ले आई ढेर जगह गल है हाई लेमोन में इंसान पफे नहीं बा कमेन हमू बोला थे यहाँ पफे नहीं है हम अप्स एंड डाउन बा ढेर कोई के समझ लो और जब एगो लड़का जन्म ले ले बा ना तो कुछ नहीं लेके आल बा ना और जब एगो इंसान चल जाला तो वो तो कुछ नहीं लेके जालन सा ना। हाँ, तो अभी आदमी बहुत घमंडी बा कौन फासों से घमंडी बा फ्रिकोंटेशन बड़ा बड़ा आदमी के फ्रिकोंटेशन करता प्रेस प्रेसेस लोग के सब जब अति करता और पैसा हम हर में सब बोली ला हाई पैसा एगो प्वाइजन हो गल बा लिमोन में समझ ला ढेर अत्याचार होता ना अत्याचार ढेर होता और आदमी अभी ढेर मूवे हो गल बा समझ ला। अभी कहाँ दिखले वो उतना आदमी है अभी समाज ज्यादा समाज को बदल डालो कहाँ दिखले वो आदमी जाता बैठ का तो प्रेस के मोरिश में सब फेमे हो गल बा अब लीगे देवटन से खोले के तो हो जाता ना

0: तबले ढेर लेका अच्छी गल जाते हो गल मूवी से कौन करता मूवी सी में ले जाता हूँ ढेर कालिते अच्छी बाक मजे अति करता बेकार काम करता ना और वो गौजमुन लोग हाई में एरिया करेला ना बहुत एरिया करेबा ना जब एगो लड़का उसका मैंने उन्हें सब जाता था शान क्या हुआ था कुछ नहीं पूछा था मैंने उन्हें कुछ नहीं पूछा खा ले होता पी दे होता सुख दे होता डर एगो गापो नहीं देता कर माँ बाप के कि कहाँ से आवा था वो लड़का थोड़ा दिन में लड़का हुए मूवे हो गल एगोइस हो गल अभी सुशांत के पूछो आदमी मूवे हो गल बा बहुत मूवे हो गल बा 25 पूछो तनी अति बहादी तो हम एगो मांग करत है कि अब से जन सब जन नवा अभी जन पीढ़ी आवा था सब सुधारे ओकरा तो कैसे सुधरबा ओकरा सब कम लोग के चाहला सब अति नेता लोग के बैस के लताब में सब चाहला जिसकीते करे के समझ लो और अभी देखते हैं लिमोन के आदमी बीमार हो गल बा बहुत बीमार हो गल बा तो चाहला इलाज करे के हो लेके ना तके इलाज करी सब मिल के चाहना इलाज करे के ना
1: हाँ
0: देखा अभी कितना अनहोनी होता अभी हम सब जिरेक बने से कब बोले काका होता अनहोनी होता अभी बहुत अनहोनी होता अभी और है ये हम एको अच्छी करता है छोटा संदेश हुआ सबको एक मैसेज करता है और बहुत ही अति हेलो पे बात भी आप नमस्ते
1: धन्यवाद नमस्ते एक और श्रोता है लाइन पर आइए उनको सुनते हैं हेलो नमस्ते वीना जी कैसी हैं आप आपकी आवाज बहुत धीमी सी आ रही है
2: अभी सुनाई दे रहा है
1: हाँ हाँ जी
2: तो मैं विषय पर आती हूँ मैं
1: जी
2: तो आपने कहा है कि सच में आपने तो कहा कि हमारी पहचान हमारे व्यवहार से होता है अगर व्यवहार ठीक ना हो हमें चाहता भी नहीं
1: जी
2: दूर भागता है
1: जी
2: हम प्रतिदिन अनेक लोगों से मिलते हैं
1: जी
2: हमें कुछ लोग अच्छे लगते हैं
1: वीना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है बहुत खराब जा रहा
2: है दे रहा
1: है नहीं अभी भी बहुत खरखर आ रही है आवाज आपकी
2: खड़ है ना
1: जी
2: तो मैं क्या बोलूँ बहुत अच्छा विषय था है ना अभी सुनाई दे रहा है
1: हाँ हाँ
2: तो मैं अभी सुना

0: हमें चाहता भी नहीं,
1: जी
0: दूर भागता है।
1: जी
0: हम प्रतिदिन हमें
1: जी
0: में हमें कुछ तो अच्छे लगते हैं।
1: वीना जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत
0: अभी
1: खराब
0: अभी
1: जा रहा है।
0: सुनाई दे रहा है
1: नहीं, अभी भी बहुत खरखर आ रही है आवाज़ आपकी।
0: खड़ है ना
1: जी,
0: तो मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छा विषय था कुछ है ना। अभी अभी सुनाई दे रहा है?
1: हाँ
0: अभी
1: हाँ,
0: तो मैं अभी सुनाई कहना चाहिए, इससे लोग हमारे ओर आकर्षित होंगे। जी बातचीत के दौरान भी हमें शांत, स्थिर और सजग रहना चाहिए, क्योंकि चुप रहकर ज्यादा से ज्यादा बातें सुनने का प्रयास करना चाहिए। ज्यादा बोलने की आदत में भी बदलाव लाना चाहिए और बात को अत्यंत विनम्रता से करना चाहिए।
1: जी
0: किसी भी बात पर हमें अड़ना नहीं है। कभी कभी महत्वपूर्ण ये नहीं होता है कि हम क्या कहना चाहते हैं, हम कैसे कहना चाहते हैं, ये मायने रखता है।
1: जी
0: तो इसका मतलब होता है कि हमें अपना प्रस्तुतिकरण जो है उसको सुधारना चाहिए, कि हम सामने वाले से किस तरह प्रस्तुत हो रहे हैं, उसके सामने क्या बात कर रहे हैं। सामने वाला चाहे व्यक्ति चाहे उम्र में बड़े हो, व्यवसाय में, पद में, अथवा आर्थिक रूप से चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, हमें सबसे आदर पूर्वक ही बात करनी चाहिए।
1: जी
0: क्योंकि ये होता है कि विनम्रता का फल जो बहुत भारी से भारी वृक्ष को भी झुका देता है। विनम्रता है जो एक शब्द है, तो हम आम में ये गुण भगवान ने दिया हुआ है, तो विनम्रता रखनी चाहिए। अपने हाव भाव में, कपड़े पहनने के तरीके में शालीनता होनी चाहिए हमें। दिखावा ज्यादा ना करें, जैसे कि कहा जाता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ लॉस्ट इम्प्रेशन। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी ये हो जाता है कि हम किसी को बहुत तड़क भड़क या अपने पैसे के जोर पर या सुंदरता के जोर पर या ज्यादा विद्वान है या विदुषी है या हम एक अच्छे पद पे है तो हम लोगों को कुछ समझते हैं, तो ये बहुत बुरी बात, हम खुद ही उनकी नजरों में गिर जाते। तो इन सब से हमें बचना चाहिए। अपने व्यक्तित्व को हर संभव हो सके तो निखारना चाहिए। जब हम इन सब बातों पर ध्यान रखेंगे ना पूजा जी, तो आप देखेंगे कि लोग अपने आप ही आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे और आपके साथ समय भी बिताना प्रसन्न करने लगेंगे। हमारा व्यक्तित्व जो है धीरे धीरे निखरने लगेगा और हम भी एकदम प्रसन्नचित रहेंगे। हमारे मन में किसी के प्रति दुराव या कटु जैसे होते हैं जो होता है, कड़वाहट नहीं होगी। तो मैं यही कहना चाहती थी कि अपने अनुभव से जो मैं जितना मैंने सोचा था कि सच में मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है, कैसे सामने वाले, सादगी और सरलता सबसे बड़ा गहना है बहन जी, मैं बोलती हूँ। चाहे आपके पास कुछ भी हो, कुछ भी, कितने बड़े ओहदे पर हो, चाहे कितने बड़े विद्वान हो, कितने बड़े धनवान हो, लेकिन अगर आप झुक जाते हैं, आपके में सादगी है, शालीनता है, सरलता है ना, तो शत्रु भी आपका मित्र बन जाएगा।
1: ये तो है, वो तो
0: मेरा
1: है।
0: मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि यही हमारा बहुत बड़ा सद्गुण है, भगवान ने हमें दिया हुआ है, लेकिन क्या है कि हम उसका उपयोग सही रूप से नहीं कर पाते हैं। सामने वाले को घात समझते हैं, कभी को कभी किसी को, चाहे वो कितना भी गरीब हो या अनपढ़ हो या कुरूप तो नहीं बोल सकते, क्योंकि भगवान की सृष्टि में सभी सुंदर है। जिन्होंने भगवान ने जिसकी रचना की है तो सभी सुंदर है। हम नहीं बोल सकते कि ये बहुत कुरूप है या ये बहुत सुंदर है। चमड़ी चमड़ी का, सफेद चमड़ी से लोग सुंदर नहीं, सुंदर मन से होना चाहिए पूजा जी। आपका मन सुंदर होना चाहिए। शरीर की त्वचा का क्या है, आज है कल नहीं रहेगा, वो तो मिट्टी में ही जाएगा, आज नहीं तो कल, भस्म ही होना है उसको। लेकिन जो आपका मन जो सुंदर है ना, तो आपके जाते ही भी संसार से लोग आपकी बातें करेंगे, आपको याद करेंगे हमेशा। तो मैं यही कहना चाहती थी, अब लोग इस पर विचार करेंगे। और मैंने किसी के लिए कोई बुरा शब्द नहीं कहा, मतलब जो व्यवहारिक रूप है, हम अपनी कैसे हम अपनी पहचान बना सकते हैं, इस पर मैंने अपने अपना अपनी बात रखी है। तो आपने मुझे धैर्य से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी ये मोबाइल जो है ना, एकदम से वो भी खराब पड़ जाता है, पता
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद,
1: और आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। ये सही है, आपने यही कहा कि जो लोग सादगी के साथ जीते हैं, शत्रु भी उनके मित्र बन जाते हैं।
0: तो ये सही है ना, अगर हम अकड़ के रहेंगे, हम किसी अपने सामने किसी को कैसे बोलते हैं, तुच्छ समझते हैं, तो वो तो हम हमसे कुछ दूर भाग

0: जाएगा ना, वो कहाँ हमारे समीप आएगा। लेकिन आप प्यार ही, प्रेम ही एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा व्यवहार, एक ऐसा व्यवहार है जिससे आप शत्रु को भी मित्रता में, शत्रुता को भी मित्रता में बदल सकते हैं।
1: जी
0: आदमी को मन भी नहीं करेगा ना, तो वो आपको कुछ भी नहीं भी बोलेगा तो आपको देख कर मुस्कुरा जाएगा, एक मीठी सी मुस्कान आपको दे देगा।
1: ये तो
0: समझ
1: है
0: रही है ना? तो
1: जी।
0: अपने व्यवहार को, अपने चरित्र को हमेशा शुद्ध, सरल और सादगीपूर्ण रखना।
1: वो तो है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद,
1: धन्यवाद,
0: मुझे
1: धन्यवाद,
0: बता दिया। शुभ संध्या आपको।
1: शुभ संध्या आपको। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो,
2: हेलो पूजा जी, नमस्ते।
1: नमस्ते इंदिरा जी।
2: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
2: मैं ठीक हूँ। अभी पूजा पाठ के लिए तैयारी हो रही है ना? हाँ, पिता पक्ष तो थोड़ा दिन में खत्म हो जाएगा, कि
1: जी
2: नवरात्रि के लिए तैयारी हो गई।
1: हाँ
2: और शुभ दिन, शुभ शुभ बात करेंगे
1: जी
2: पूजा के लिए। कुछ ऐसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए ना,
1: जी
2: ठीक है ना? जो बीमार है अपना, तो अपने अपना को सेवा करना चाहिए, बोलना चाहिए दुख,
1: जी
2: अपने बोलना चाहिए। जिसका दुख नहीं है तो उसे तो, जिसका दुख नहीं है तो उसे तो दुख मिलना ही चाहिए, है ना?
1: जी
2: ऐसा तो है ना, भगवान भगवान जब आते हैं तो किसी का भला छीनेंगे तो उसका तो भला नहीं होगा, दुख ही होगा।
1: जी जी
2: ऐसे ही बात करते हैं ना, और क्या करेंगे।
1: जी
2: ओके, बाय
1: बाय
2: बाय।
1: बाय। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो,
0: नमस्ते पूजा जी। हम
1: नमस्ते कमला जी, कैसी हैं आप?
0: ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ, आपका स्वागत है हमारे आप कार्यक्रम में।
0: आपको भी स्वागत है हमारे घर में। बहुत बढ़िया बढ़िया सा, प्यारी सी बोली, मिठास। हम
1: धन्यवाद।
0: तो प्यार के भी इंतजार करते हैं, हम प्यार के भूखे हैं पूजा जी।
1: जी
0: दो बोली प्यार के बांट लेते हैं रास्ते में चलते हुए, बच्चे हैं चाहे बूढ़े हैं चाहे जवान हैं,
1: जी
0: हाथ जोड़कर एक प्रणाम, एक नमस्कार करके, कैसी हैं आप बोल देते हैं तो दिल खुशी हो जाते हैं।
1: अवश्य,
0: दिल
1: ये तो है।
0: दिल खुशी हो जाते हैं कि गदगद हो जाते हैं। यही प्यार है, यही जरूरत है, इससे बड़ा कुछ नहीं है।
1: कुछ नहीं है
0: धन
1: जी।
0: दौलत रह जाएंगे, बड़का बड़का महल रह जाएंगे, कुछ भी साथ ले जाएंगे, सिर्फ दो प्यार की बोली, दो प्यार की बातें बोलते हैं कि कितने अच्छे से हैं। सभी कहते हैं आपके बोली में कितना मिठास है। सामने आपको देखा नहीं लेकिन बाकी बहुत बहुत मीठा सी बात करते हैं। यही प्यार हमारे लिए बहुत है पूजा जी।
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: अच्छा
1: धन्यवाद।
0: लगता है दो बातें करके बुजुर्गों से। हमें सीखना चाहिए, हमें सिखाना चाहिए कि कैसे बातचीत करना चाहिए। आजकल के पीढ़ी तो राम सलाम नहीं करते हैं,
1: नहीं करते।
0: नहीं करते हैं, चिंते नहीं हैं कोई। लेकिन हम बोल देते हैं, कैसे हैं बेटा, कैसे हैं बेटी, कहाँ जा रहे हैं, प्यार से। यही बहुत थी हमारे लिए, यही हमारे बड़ों ने सिखाया है कि प्यार से बोलो, कभी घमंड से नहीं, कभी कड़वा बोली नहीं, कभी कड़वा बोली नहीं। हमारे पास खाना नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन प्यार से बात करना चाहिए, बहुत प्यार से मीठा बोली। यही हमारे लिए बहुत है पूजा जी। बहुत धन्यवाद आपको, आज शुभ संध्या।
1: शुभ संध्या आपको भी कमला
0: शुभ
1: जी, और आपके इन मीठी मीठी बोली के लिए भी बहुत बहुत
0: आपको भी
1: धन्यवाद।
0: मीठी मीठी बोली से बहुत बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अच्छा धन्यवाद, नमस्ते आपको भी। चलिए श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं कि इंसान अपने लफ्ज़ों से नहीं अपने व्यवहार से पहचाने जाते हैं।

0: कहा जाता है कि हम कितनी भी मीठी बातें कर लें, अगर हमारा बर्ताव किसी के दिल को ठेस पहुंचाता है तो वो सारी मिठास अधूरी रह जाती है। लाइन पर एक और श्रोता, आइए उनको सुनते हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: प्रणाम अभिषेक सर जी।
1: प्रणाम प्रणाम
0: प्रणाम, कैसे हैं आप?
1: सब चल रहा है ईश्वर की कृपा से।
0: बताइए आपका
1: हाँ
0: क्या कहना है इस विषय पर?
1: पहचान पर कह रहे हैं।

0: है ना।
1: इंसान की पहचान उसके लफ्जों से नहीं, उसके व्यवहार से पहचाने जाते हैं।
0: व्यवहार से। बहुत ही बहुत बढ़िया विषय है आज का।
1: जी धन्यवाद।
0: हाँ, वैसे पहचान जो है सबसे बड़ी बात है। मान लिया जाए भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने हमें धरती पर भेजा है कर्म, शुभ कर्म करने के लिए, और अपने पहचान से अन्य लोगों को लाभ देने के लिए। तो मान ले जाए महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद, अनेक ऐसे प्रधानमंत्री, सभी देशों का प्रधानमंत्री जो है, ये ऐतिहासिक नाम, इनका पहचान हमेशा के लिए रह जाएगा। मान लिया जाए कैसे महात्मा गांधी को कहता हूँ,
1: जी
0: तो महात्मा गांधी ने कितने कष्ट अपने देश के लिए, क्या कुछ नहीं किया है, और अंत में गोली खाया, लेकिन कोई बात नहीं, उनका नाम जब तक संसार रहेगा तब तक उनका नाम लोग लेते रहेंगे। यह बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही इंसान जो हमें मानव का शरीर मिला है, तो हम तो यही चाहते हैं कि हम शुभ कर्म करते रहे, कभी किसी का दिल न दुखाएं, कभी किसी का निंदा गिला न करें, हमेशा अच्छाई जहां तक हो सके, भूखे को खाना दें, हमेशा निर्धन को धन दें, भक्ति दें, शक्ति दें, सब कुछ देते रहें, ताकि एक दिन वो हमेशा याद करेगा कि हम, हमें ये फलाना व्यक्ति ने हमें ये दिया था, आज मैं यहाँ, मैंने इसे बहुत काम किया है, बहुत बहुत भलाई किया है। एक व्यक्ति जो था मेरा एक मित्र, वो दुकान के यहाँ बैठा रहता था। मैंने कहा चलो भाई हिंदी पढ़ते हैं, अभिमन्यु अनंत के साथ, और पढ़ कर वो आज वो भी टीचर बन गया। तो ऐसे ऐसे बहुत कार्य किए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हम जो है, हम किसे कहते हैं कि हम हमेशा अपने को देखें, अपने को पहचाने, और अपनों के लिए कुछ करते रहे, ऐसी हमारी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, आज का विषय, बहुत धन्यवाद,
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद दबी से सर
0: हाँ
1: जी, प्रणाम और शुभ
0: बहुत
1: संध्या आपको।
0: शुभ संध्या, आपको भी शुभ संध्या, शुभ रात्रि।
1: शुभ रात्रि। श्रोताओं, मेरा ये मानना है कि जब जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमें ये जानना आवश्यक है कि ये जीवन हमेशा के लिए नहीं है, एक न एक दिन मृत्यु को आना ही है। तो यही तो हमारे जीवन की सच्चाई है। जब हम ऐसे सोचेंगे, ऐसे विचार रखेंगे, तो कभी भी हमारे अंदर घमंड नहीं आएगा। आइए, इस विषय पर आप भाग ले सकते हैं कि इंसान की पहचान जो है, उसके लफ्ज़ों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से, उसके व्यवहार से होती है। आइए, लाइन पर एक श्रोता है, उनको सुनते हैं। हेलो,
2: हेलो पुजारी जी, नमस्ते। मैं
1: नमस्ते माला जी, कैसी हैं आप?
2: ठीक हूँ, आप कैसी हो?
1: मैं भी ठीक हूँ। और आपका क्या कहना है इस विषय पर? आपका
2: नहीं,
1: स्वागत है।
2: ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि और कुछ समय देना चाहिए।
1: अच्छा, बोलिए।
2: मैं अस्पताल गई थी, सिर्फ थोड़ा सी थोड़ा ही बात करूंगी। मैं अस्पताल गई थी तो वो सिस्टर मेरा बीपी ले रहा था, वो सिस्टर मेरी बीपी ले रही थी, तो घर पे मेरी बेटी भी मेरी बीपी लेती है और मेरी बेटी भी नर्स है। तो मैंने सिस्टर को बोला, वो पता पता है वो, जो सिस्टर ने मेरा मेरे को क्या बोला, बोला आप एक बहुत अच्छी माँ हो, घर पे आप अपनी बेटी से ऐसी ही बात करती हो, इसीलिए आपने सोचा घर पे हो, मेरे को बेटी बोल दिया। तो सोचो कितनी अच्छी बात है, पैसा
1: हाँ
2: पर घमंड करोगे, घर पे घमंड करोगे, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा लाखों का कारोबार है, मेरा लाखों का पैसा है, जाना तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा ना पूजा भेटी, कुछ
1: जी अवश्य।
2: नहीं जाएगा साथ में, साथ में अपना कर्म जाएगा,
1: जाएगा, बस यही जाएगा जी।
2: यही तो। देखो वो सिस्टर ने कहा आप एक बहुत अच्छी माँ हो, मेरी तो बोला फिर मैं जरी में घर पे ऐसी ही बात करती हूँ अपनी बेटी से, लेकिन मेरे सिस्टर बोला

0: मामा जय बहू मारिए
1: आपके
0: अच्छा नहीं
1: व्यवहार
0: है।
1: अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। आपने जिस मीठी बोली से उसको कहा उसको अच्छा लगा।
0: हाँ
1: कहीं जब हम जाते हैं तो लोग कठोरता से बात करते हैं, पहचानते भी
0: हाँ
1: नहीं है।
0: कठोरता से आपको देखते ही नहीं आँख उठाकर ऐसा
1: हाँ ये तो है,
0: लगता
1: नमस्कार
0: है
1: भी
0: वो
1: नहीं
0: प्रणाम
1: करते, प्रणाम भी नहीं करते। आप भी करो तब
0: आपको बेटी।
1: भी पलट कर जवाब नहीं देते जी।
0: हाँ ओके
1: बहुत बहुत
0: सभी के साथ
1: धन्यवाद।
0: अच्छे ही ऐसे वो है।
1: जी, ये तो है। बहुत बहुत धन्यवाद माना जी।
0: आपको पूछा बेटी कल मैंने आपका पुरंजा पकवान देखा पकौड़ी बहुत
1: अच्छा धन्यवाद,
0: अच्छा
1: नमस्ते
0: है।
1: नमस्ते। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो,
0: हेलो हेलो हेलो पूजा जी, किस विषय पर बात कर रहे हैं आप?
1: आज हम बात कर रहे हैं इंसान अपने लफ्जों से नहीं उसके व्यवहार से पहचाने जाते हैं।
0: हाँ हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी।
1: जी
0: हाँ सच में इंसान अपने लफ्जों से नहीं, हम जैसा व्यवहार करते हैं उसी बात को हमारे सामने वाला का जो व्यक्ति है वो उसको पकड़ता है, उससे उसे पता चल जाता है कि हम कैसे लोग हैं।
1: जी
0: हमारी पहचान हमारे व्यवहारों से ही होती है, क्योंकि देखिए शब्द तो कभी कभी हम मनुष्य ही हैं, हमारे मुंह से कभी कुछ गलत शब्द निकल जाता है, कुछ कड़वे शब्द निकल जाते हैं, लेकिन जब हमारा व्यवहार एक दूसरे के प्रति अच्छा होता है, मतलब भले ही कुछ हो जाए छोटी मोटी नोक झोंक, लेकिन बाद में फिर से हम उस व्यक्ति से मिलकर हम घुल मिलकर हम अपना स्वभाव मतलब उसके प्रति आदर भाव दिखाते हैं, तो व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति विनम्र है या वो कैसा व्यक्ति है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि व्यवहार ही हम मनुष्यों की पहचान है। और कैसे हम कहते हैं, बात से तो कुछ भी हम बोल सकते हैं, जिद का तो जिद की तो कैसे कहीं भी कुछ भी मुंह से निकल जाता है, लेकिन जब हमारा व्यवहार अच्छा होता है किसी एक व्यक्ति के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, तो वो उसी बाद में वो व्यक्ति जाकर सोचेगा कि हाँ देखो ये आदमी कैसा है, इसने मेरे साथ क्या किया था, देखो अभी खुद आकर वो मुझसे कैसे पेश आ रहा है। तो इसलिए व्यवहार हमारा हमेशा अच्छा होना चाहिए किसी के प्रति, चाहे कुछ भी हो जाए, वो तो जिंदगी है होती ही रहती है छोटी मोटी बात, लेकिन बाद में हम अपने व्यवहारों को बदल कर हम फिर से अपना अच्छा जो है हम अच्छे व्यवहार को अपनाएं, और दूसरों से भी हम यही चाहें कि वो भी हमारे प्रति अपना व्यवहार ऐसा ही रखे। बहुत धन्यवाद पूजा जी, शुभ
1: बहुत
0: संध्या।
1: बहुत धन्यवाद आपको भी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमेशा मेरे इस कार्यक्रम में आप भाग
0: मैं
1: लेती
0: बहुत रुचि
1: रहती हैं।
0: रखती हूँ, मैं किसी इंतजार करती हूँ, अभी तो मैं मंदिर में हो रही है, असल में
1: जी
0: मैंने थोड़ा सा समय निकाल कर बाहर आकर मैं आपसे बात कर रही
1: ओ
0: हूँ अभी।
1: माय गॉड, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: ओके पूजा जी
1: अच्छा जी,
0: धन्यवाद, शुभ
1: धन्यवाद,
0: संध्या,
1: नमस्ते,
0: शुभ
1: शुभ
0: रात्रि।
1: संध्या आपको भी। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो आशा जी, नमस्ते, कैसी हैं आप?
0: हेलो नमस्ते पूजा जी, मैं अच्छी और आप अपनी सुनाइए।
1: मैं भी ठीक हूँ। आप आ गई हैं ना, इसीलिए मैं और खुश हो गई। चलिए बताएं आपका क्या कहना है इस विषय पर।
0: तो सबसे पहले बड़े बुजुर्गों को सादर नमन है, और दौलत और शोहरत जो जिनकी है शान, इंसान का चरित्र उसका व्यवहार है उसकी सही पहचान। हमारे कर्म हमारे व्यवहार हमें अच्छे राह पर चलना सिखाते हैं,
1: जी
0: क्योंकि अगर आपने किसी से अच्छा व्यवहार किया तो लोग युगों युगों तक आपको याद करेंगे, पर यदि गलती से भी एक गलत व्यवहार आपसे हो गया तो लोग आपको बुरी नज़र से देखेंगे, आपको अपनी नज़र से गिरा देंगे, क्योंकि अगर ठोकर लग जाती है तो आप उठ भी सकते हैं, पर अगर किसी के नज़र में आप गिर जाते हैं तो उतना मुश्किल हो जाता है। आँखों से आंसू गिर जाते हैं तो वो फिर से आँखों में नहीं आते, उसी प्रकार हम अगर अपने चरित्र से गिर जाते हैं तो हम फिर से कभी नहीं उठ पाएंगे। तो कहने का यही अर्थ होता है पूजा जी, जो हमारा व्यवहार होता है ना वो हमारे दर्पण की तरह होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको उदाहरण की तरह दूं, राह चलते आपने किसी दिन दुखी की सहायता कर दी तो आपको कितने सारे आशीर्वाद मिलेंगे, दुआएं मिलेंगी। अगर आपने किसी के संकट के समय में उनकी सहायता कर दी तो जरा सोचिए आपको मन की सच्ची शांति मिलेगी।
1: ये तो है।
0: अगर आपने अपने व्यवहार

किसी के दिल को जीत लिया, आप वो कार्य स्थल में हो या घर परिवार रिश्तों में हो या कहीं भी आप जाते हैं, आप अपने व्यवहार से किसी के दिल को जीत लेते हैं, जो सही माने में आपकी सच्ची प्रशंसा होती है। ये झूठी मूठी प्रशंसा तो होती रहती है, पर जो अगर आपके चरित्र से, आपके व्यवहार से अगर आपकी प्रशंसा होती है, तो वो आपकी अभी के लिए नहीं बल्कि आगे दिन के लिए भी आपकी सही पहचान बनती है। और हमारे व्यवहार में जो सबसे बड़ी चीज होती है, कर्म के साथ साथ आपकी मधुर वाणी, यदि आप अपनी मीठी बोली से, यदि जो कहते हैं ना, ये मीठी बोली होती है वो दवा का काम भी करती है, और जो कटु शब्द होते हैं वो जहर का काम करते हैं। अगर सोचिए आपने किसी से कटु वचन बोल दिया है, तो सोचिए क्या होता है, कितने दिल टूटते हैं, कितने घर टूटते हैं, कार्यस्थल में भी मान सम्मान कट जाते हैं। तो इसलिए कहती हूँ, अपने व्यवहार को सुधार देंगे, अगर हम अपने व्यवहार को सही दिशा में ले जाएंगे, मीठी वाणी बोलेंगे, जिन चीजों की सहारा करेंगे, अगर सबके लिए भलाई सोचेंगे, किसी के साथ छल कपट नहीं करेंगे, तो वो व्यवहार हमारे जीवन के सही पहचान होती है। और आज नहीं तो कल हमको जाना ही है, तो साथ ये धन दौलत नहीं जाएगा, ये हमारे अच्छे कर्म, हमारे सही व्यवहार ही हमारे साथ जाएगा। तो व्यवहार ही सच्ची पहचान है, इस पहचान को अगर उज्जवल बनाए रखेंगे तो जिंदगी के अंधेरे

0: व्यवहार ही सब कुछ कहता है, हमारी बोली नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, और भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: धन्यवाद पूजा जी, आप सभी श्रोताओं को कहूंगी शुभ संध्या।
0: शुभ संध्या आपको भी। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो तारा जी।
2: हाँ नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
2: हम ठीक हैं, आप ठीक हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ। और आपका क्या कहना है?
2: हम बहुत खुश हैं हमको आपका सुनकर।
0: धन्यवाद।
2: बोलते हैं हाँ
0: जी,
2: हम लोग बात करते हैं ना, तो क्या बोलेगा, हम लोग अच्छे से रहना चाहिए। किसी को हम लोग नहीं बदल सकता था, जैसे वो लोग जीते हैं
0: जी।
2: जो आदमी हम लोग देखते हैं जो नहीं अच्छा से बात करते हैं, तो उसको बोलना चाहिए, सिखाना चाहिए, ठीक से बात करना चाहिए
0: जी।
2: और किसी को उसत बात नहीं बोलना चाहिए, उसको दिल में लग जाते हैं, उसका दिल दुखते हैं ना
0: जी।
2: और हम लोग को बच्चों लोग के, परिवार लोग के, हम लोग सब कोई अपने हैं ना, मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक से बात करना चाहिए। जब हम लोग अच्छे से बात करते हैं तब वो लोग भी अच्छे से बात करेगा ना।
0: जो आप देते हो आपको मिलता है।
2: हाँ,
0: बहुत बहुत धन्यवाद तारा जी।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको कहेंगे कि आपने भाग लिए, आपने कोशिश की बात करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। और शुभ संध्या आपको।
2: शुभ संध्या।
0: शुभ संध्या। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो।
3: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते देवी जी, कैसी हैं आप?
3: ठीक है, मैं आपकी आवाज़, आपका नाम भूल रही हूँ।
0: मेरा नाम भूल गई, पूजा जी, पूजा हूँ। चलिए बताइए।
3: तो मैं अभी पकवान देखा ना, तो मुझे वो शेफ की आवाज बहुत अच्छी लगी।
0: अच्छा, शेफ की आवाज बहुत अच्छी लगी। हाँ, वो है।
3: नहीं, पकवान पर ध्यान नहीं दे रही थी, उनकी आवाज पर।
0: ओह माय गॉड, चलिए चलिए।
3: बात कर रहे थे हमारे मंदिर की जो आचार्य जी है ना, ऐसा लगा जैसे वही वही बात कर रही है, वो भी इंडियन है।
0: अच्छा,
3: ऐसे ही हिंदी में बात करते हैं। वो शब्द जो उसने इस्तेमाल किया बस बराबर। तो मैं कल भी देखा पकवान, आज भी देखा
0: जी।
3: उस शेफ को की आवाज सुनने के लिए। तो मेरी दृष्टि से इंसान की पहचान ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए।
0: क्या उदाहरण ले लिया आपने।
3: हाँ,
0: मेरी पकवान
3: मिल गई मुझे। अभी मैं भाग नहीं लेती, जन सब की याद आ गई। अभी मैं मंदिर नहीं जा रही हूँ तो वो पंडित जी की याद आ गई। अभी कुछ सप्ताह हुए मैं नहीं जा रही हूँ ठंड के कारण। अभी मैं जाऊंगी वो नमस्ते प्रणाम नहीं कहती है, जय जय
0: जय जय। हाँ,
3: जय जय। तब मैं भी हाथ जोड़ कर उन्हें कहती थी जय जय पंडित जी।
0: हाँ, ये तो है।
3: हाँ, अभी मैं जाऊंगी ना, दुर्गा पूजा नवमी आ रही है ना, अभी वो मुझे देखेंगे ना तो कहेंगे कहाँ हो मैया।
0: जी जी, वो तो है।
3: ऐसे ही बात करते हैं, कभी माता कहते हैं कभी मैया।
0: ये तो है। जो भी, सभी का अपना एक अंदाज होता है आप लोगों का जो है स्वागत करने के लिए। और ये तो है कि जहाँ जो भी आप देते हो, ये जो इंसान है ना वो प्यार के लिए तरस जाता है। और प्यार जब आप देते हो, घमंड नहीं दिखाते हो, अपनापन ये जो भी है दिखा आते हैं, तो इंसान खुद ब खुद खींचा चला आता है ना,
3: कोई रिश्ता बन जाता
0: है। देखा ना, आवाज से बन गया रिश्ता आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी, और आपको कहेंगे शुभ संध्या।
3: आपको भी।
0: अच्छा, बाय बाय। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो।
4: हेलो पूजा जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कैसी हैं आप?
4: ठीक है पूजा जी, आप पूजा ही हैं, आपका नाम ठीक है। हाँ, आपका जो प्रोग्राम लगते है ना, अच्छा लगता है सुनने के लिए।
0: चलिए, बहुत बहुत
4: आवाज। और मैं कैसी हूँ पूजा जी, जो आप बात करेंगे किसी से प्यार से, जैसे आप बात करेंगे तो वो भी ऐसे ही बात करेंगे सामने वाला।
0: ये तो है।
4: अगर क्रोध से बात करेंगे तो सामने वाला आपसे क्रोध से बात करेंगे तो आप

0: आपको बुरा लगेगा ना।
1: जी
0: हाँ, तो इसलिए कहते हैं जब वो क्रोध से बात करते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं, जो आप करते हैं बात नाराज से तो वो भी नाराज होंगे ना। हाँ, तो इसलिए प्यार से बातें करो, प्यार पाओ और खुशी होती है जब सब बात प्यार से करते हैं, या कहीं भी जाते हैं तो राम सलाम करते जाना।
1: जी
0: हाँ, वो आपको राम सलाम करे ना करे तो आप कर दो।
1: जी ये तो है,
0: वो हाँ, आप वो रिपोर्ट नहीं देंगे तो कोई बात नहीं,
1: कोई बात नहीं,
0: सोचना कि आप भगवान
1: आप
0: को
1: अपना कर्तव्य करते जाओ।
0: हाँ, और अब कहना कि आप भगवान को नमस्कार कर रहे हो।
1: हाँ ये तो, वो तो
0: हाँ
1: है।
0: शुभ संध्या पूजा जी।
1: धन्यवाद और शुभ संध्या आपको भी लक्ष्मी जी,
0: अच्छा बाय
1: बाय।
0: बाय।
1: तो जिन जिन लोगों को जो है अभी हाल में अवसर नहीं मिला, धनी जी फ़ोन कर रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए, अगर वो आसपास हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं धनी जी। और जिन जिन लोगों को जैसे अवसर नहीं मिले, उनका नाम भी दिखाई नहीं दिया मुझे, बसंती जी हैं और चमेली जी हैं और भी लोग हैं जो भाग लेते हैं इस कार्यक्रम में, अगर आप लोग भी अपना विचार देना चाहते हैं तो बेझिझक आप फ़ोन कर सकते हैं 4020085 पर। इंसान की पहचान वो अपने लफ्जों से नहीं, अपने बर्ताव से ही जाने जाते हैं। वैसे श्यामा जी भी नहीं आई आज, पता नहीं, पर अगर आप लोग आसपास हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं।

0: इज्जत देने के लिए सामने वाले का बड़ा या छोटा होना जरूरी नहीं, क्योंकि इज्जत इंसान की हैसियत देकर नहीं, उसकी इंसानियत देकर दी जाती है। कभी किसी की मजबूरी पर मत हंसिए, कभी किसी के खामोश रहने को उसकी कमजोरी मत समझिए। हो सकता है तो वो अपने अंदर की पूरी जंग लड़ रहा हो और आप उसकी जंग नहीं जान सकोगे। कभी कभी किसी इंसान को हंसते हुए देखा है आपने? हंसता रहता है, हंसती रहती है, पर उसके अंदर में जो जंग है वो लड़ रही है, वो आप कभी भी नहीं जान पाओगे। और एक बात याद रखिए, हम दुनिया से जैसा व्यवहार पाना चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार जो है हमें दुनिया को देना भी सीखना होगा। जो हम बदलाव देखना चाहते हैं खुद में, दूसरों में, हमें अपने आप में वो व्यवहार लाना चाहिए। एक और श्रोता है लाइन पर। हेलो।
1: हेलो पूजा जी, नमस्कार।
0: संगीता जी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ। अच्छा संगीता जी, आपका क्या कहना है?
1: आपका विषय बहुत अच्छा है, वो मीठा मीठा बोल के सच्चाई पे चाही बोले के जाने हैं, कबो कोनो जैसे बोलते हैं कोनो मीठा मीठा बोले ला से मत सच्चाई में नहीं बोले सच्चाई में चाहिए। जब एक बात नहीं अच्छा रही तो नहीं अच्छा रही, जब एक बात अच्छा रही तो अच्छा रही, चाहे सच्चाई बोले थे। जैसे बोलते हैं हिपोक्रेट नहीं चाहिए कह रही
0: नहीं रहेगी। हाँ
1: यही मेरी विषय है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी,
1: पूजा जी,
0: धन्यवाद, बाय बाय। आजकल इंसान मतलबी हो चुका है और कुछ पाने के लिए वह हमेशा मतलबी हो जाता है और साथ साथ में मीठा बोलने लगता है ताकि उसका काम हो जाए। चलिए हमारी प्यारे जो हैं धनी जी आ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। हेलो धनी जी, कैसे हैं आप?
2: नमस्कार, नमस्कार पूजा जी।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: जी मैं भी दो बात बोलूं। आज की दुनिया बहुत बदल गई है। आज के इंसान पूजा जी अपनों ही में पहचानना मुश्किल होता है आज। देखिए इतना कहूँगा कि कभी कभी देखते हैं आज के समय में विवाह होता है, एक सप्ताह में तलाक
0: जी।

0: जी आज के इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल है। है अच्छे आदमी, आज भी है अच्छे,
1: आप भी तो कितने अच्छे हैं, देखो कितने प्यारे से बात कर रहे हैं, इतने इतने जो है घड़ी आपने इंतजार किया फिर भी फोन किया आप गुस्से भी कर लेते हैं फिर भी प्यार से बात करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद धनी जी।
0: जी बहुत धन्यवाद पूजा जी, समय जा रहा है
1: जी। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद,
0: पहचानना मुश्किल है
1: जी, ये तो है। अच्छा धन्यवाद।
0: एक विवाह होता है कितना पैसा लगाते हैं,
1: हाँ ये तो है
0: बहुत पैसा
1: जी,
0: तो फिर तलाक हो जाता है एक सप्ताह में, माता पिता कितना पैसा लगाते हैं। धन्यवाद
1: धन्यवाद हनी जी, और नमस्कार आपको, शुभ संध्या। हमें याद रखना चाहिए कि जो भी मिलता है वो कुछ समय के लिए ही मिलता है और उसको लेकर हमें घमंड नहीं करना चाहिए और अपने अंदर की इंसानियत को नहीं मारना चाहिए, हमेशा इंसानियत को जारी रखना चाहिए क्योंकि अंत में बस यही रह जाता है और कुछ भी नहीं। तो चलिए इसी के साथ हम और आप कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। अब हम बढ़ेंगे त्योहार पसंद कार्यक्रम की ओर और इसके लिए चलिए एक सुंदर सा गीत हम सुनते हैं और उसके बाद कार्यक्रम को जारी रखेंगे त्योहार पसंद।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से तमाहा के रहने वाले निवासियों को, खासतौर पर रमो सेलमा कॉलोस के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि सोमवार 5 अक्टूबर 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस सुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

दोस्ती बढ़ाए के ही तो हमनी चलाल है सब तोहार पसंद कार्यक्रम में देखत हो न। सब कोई के नमस्ते और ई प्रणाम। और 5:14 हो गल बाते तोहार पसंद कार्यक्रम में सब कोई के स्वागत करत है जा। जिंदगी में चाहेला सब कोई के मिलजुल के रहे के प्यार से जिए के है ये तो जीवन है। तो चला अभी तोहार सब खातिर अभी तनी सुन गमट हमनी करब जा कहे कि ई तोहार पसंद कार्यक्रम है और तोहरे पसंद के गीत हमनी चलायला सा। नंबर तो वही है 402-808-5414 पर। और जितना कोई के लाइन नहीं मिलल बाते उन लोग खातिर खास तौर पर कमला दीनू जी जो हमनी के हमेशा हमनी के कार्यक्रम में भाग ले बेलन जा और उकर प्यारी आरोही। तो चला कहानी काहे नहीं आल बातें हमार आप कार्यक्रम में तो कोई ना जेकर जेकर जुन भाग नहीं रहल तो चला तो हर सब खातिर एगो बढ़िया सा भोजपुरी गीत हमने चलावत हैं जा। और सक बजा हमने के मैसेजो भेजे सेकंडो सेकंडेंस 005 पर सक बजा हमने के व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेजे। सब गोरी लोग के हमने ले जाप सब।

शहर के बजरवा नहीं, रेडियो मार्शस के हमनी अभी लहरों पर हमनी हाइसा और जे जे कोई हमनी संगे जुड़ गर हवन जा सब कोई के बहुत बहुत जुन्हा स्वागत बाते। और अभी खातिर जुन्हा कमला दीनू जी हमनी के सुनत हवन जा आज उकर जन्मदिन बाते। हैप्पी बर्थडे टू यू कमला जी और उनके पूरे परिवार के दिने से ओकरा जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं और पूरे एमबीसी टीम तोहरा बहुत खुशी रहिला सा कहे कि हमनी के कार्यक्रम में बड़ी भाग लेला जा और एकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और ओकर प्यारी आरोही के दिने से ओकर रामदनी परिवार खास तौर पर केशा मिष्टी और ओकर दोनों लैकन के दिने से ओकरा जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं। और जे कोई हमनी के सुनत हवन जा और जे कोई आज अपन जन्मदिन मनावत हवन जा और खास तौर पर रत्ना जी ओकर जन्मदिन तक कार रहल तो ओकर खातिर भी हमनी के फेवरेट जन्हा रत्ना पदारत जी उनका जन्मदिन रहल तो ओकर जन्मदिन के खातिर ओकरा जन्मदिन की शुभकामनाएं देवत हवन जा। निमन से रही ऐसने निमन निमन कार्यक्रम लेकर आई और ओकर सब परिवार और दोनों और तीन बेटियन के दिने से बूढ़ा ओकर सब परिवार दिने से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चला कमला जी और रत्ना जी और खास तौर पर जो कोई अपना जन्मदिन मनावत हवन जा सब कोई के एमबीसी के देने से

जलबा मोमबत्ती तो चला अभी हमनी मोक्षदा के जन्मदिन के अवसर पर ओकरा ढेर सारी शुभकामनाएं भेजत हम जा ओकर दादी इंद्रानी जी वाकवा से ओकर पापा हवन रोशन मामा पद्मिनी और भाई अंकुश और सभी चताकू परिवार के देने से ओकरा जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं।

जन्मदिन बधाई। हाँ जी, जन्मदिन बधाई। जितना कोई आज अपन जन्मदिन मनावत हवन जा, खास तौर पर हमनी के सुंदर कमला जी जो हमनी के सुनत हवन जा, ओकरा जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं निम्ने से जी, और लंबी उम्र से और हमनी के कार्यक्रम में भाग लियन जा। चल अब हमनी कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ, अब जा बुलल गल बातें ना संगत कर जान के, पानी पिया छान के, और गीतवा की मांग कर ले बातें हमनी के शांता सुकारी दादी से जमील फुगैसाइट से अपन दमाद के याद कर लन जा। राजन जिनकर कर नाम है, और चंदनी यश येशा और पंचम परिवार खातिर, और ये गीतवा के मांग कर ले बातें। नानी सुखलाल जी जो हमनी के सुनत हवन जा, और उकर सब सुखलाल परिवार के खातिर रा। तो चला है गीतवा हमनी सुनीला सा, और सुनीता जी गाँव गो बस से हमनी के सुनत हवन जा, उकर तीन बहिन, उकर दू गो बहिन चलाल बाते उकर घरे।

और पकावत पकावत हमनी के सुनत हवन जा गर्मा गर्म रोटी पकावता और ओकर दोनों बहिन चलाल हवन जा तो चलो कर खातिर हई गीत हमनी चलावत हैं जा।

पानी पिया छान के ई सच्चे हाथ निमन संगत करबा त निमन विचारो रही। तो चला एगो और गीत हमनी चलावब जा और गीत वाके मांग कर ले बाते चतनिया और गीत मीरा मोहन के गावल गीत और गीत के मांग कर ले बाते इंदिरा लौटन जी और ओकर सब परिवार जो लंदन से हमनी के सुना था मंजा ओकर सब परिवार खातिर चला गीतवा हमनी सुनी रासा।

जनिला श्रोतागण, ई जीवन बड़ा ही सुंदर है। जिए जन्म तय दिखब कि जीवन बड़ा ही सुंदर है। भले अकेले ही जिया थव, अकेले आल हव त अकेले ही जेब, ते नहीं चाहेला एगो साथी

मान ल साथी मिलल भी तो अच्छा, नछा नहीं मिलल तो गड़बड़। तो ये चाहेला निम्ने से जिए के तोहर अनुसार जे तोरा अच्छा लगी उही तौर पे तू जिया, तभी तो तोरा है जीवन वा अच्छा लगी जिए के। तभी एगो गीत के मांग कर ले बाते विजय या रामचंद्र जी और मेलगोज की हवन जा, पन खास तौर पर संगतिया रंजन बालचंद जी खातिर जो बीमार हवन जा, ओकर अच्छा स्वास्थ्य खातिर हमने प्रार्थना करी ला सर कि वो निम्ने से और अच्छा हो जाए या और जल्दी से अच्छा हो जाए और हमने के कार्यक्रम में भाग लिया अंजा। अगर गाड़ी हमने के सुनत हवन जा तो ओकरा बोलब जा बुकुगार और भगवान थोड़ा निम्ने से रखी। हमने प्रार्थना करी रासा कि जल्द ही तू स्वस्थ हो जाएगा। तो चला है गीतवा खास तौर पर विजय रामचंद्र जी के देने से उनका सब परिवार और खास तौर पर मेलगोज के सभी सीनियर सिटीजन के खातिर है गीतवा के मांग कर ले बाते। और जितना कोई सुना नयान जी के गावल गीत पसंद करी लंजा ओकर सब खातिर चला है गीतवा हमने सुनी रासा।

0: आजकल तक कोई के शरम हुए नहीं बाती काहे की शरम है दिखत हो ना कैसे ऐसे कोई गीत गाए तो सच में के शरम लग जाए। ये तो हमनी बोलला सही ह सुना नयान एकर गीत जे कोई हमनी सुने ला सा तो गमट में हंसी ला सा यह हमनी के भोजपुरी भाषा जेकरा हमनी के चाहे ला आगे बढ़ाए के और ऐसा नैसन गीत जे आदमी के ओ लोग के हंसा देवेला जे कोई गीत सुनेला तो नाचे लगेला नहीं तो हंसे लगेला। तो चला अभी जे कोई हमनी के सुना था वंजा खास तौर पर रूमा आरती इंदिरा जी और ओकर भाई राकेश धीरज और ओकर बेटा नमलेश बेटी कीर्तिना शिमला जी हवन बेलगोल से हमनी के सुनत हवन जा और खाए के पकावत पकावत हमनी के सुनत हवन जा। तो चला नाचते नाचते शिमला जी चला है गीतवा हमनी तोहर खातिर चलावत हैं जा और खास तौर पर दुली चिंतामणि और ओकर पति कीर्तिलाल और सप्लाई कालो खातिर और साथ में काजल जी हवन जा वो हमनी के सुनत हवन हाईलैंड से और ओकर छोटका बाबू खातिर और ओकर सास खातिर खास तौर पर ओकर पति पवन सिंह खातिर। तो चला है गीत तो हमनी सुनी रासा एगो फट
1: एगो

धामने के सुना था वन नजा महेंद्र जी और पालमा से हमने के सुना था वन जा और बड़े प्यार से दीदी मान खातिर और ओकर सब परिवार खातिर है गीतों के मांगले बाते बेल बेल दे कौन ची बेले के रोटी बेले के दलपूरी बेले के नहीं तो लोग के दिमाग के बेले के और अभी तो सब कोई तलाक जिन में वहाँ हवन जा और बिला थवन जा खाना बनावा थवन जा जे कोई सफर करके हमने के सुनो थवन जा सब कोई के नमस्ते।

देवी जी हवन हालन से हमने के सुना था वन जा और एगो गीत के मांग कर ले बात इतना चला तोरो नाम हमने हैजा जोर दे ले हैं सा और ये गीत खास तौर पर दुमन परिवार

जीवन में नहीं चाहेला बंताड़ करे के अभिमन्यु हरपाल जी के गावल गीत गीतवा के मांग कर ले बाते लेखराम जी ओकर पत्नी हवन देवी छिपाके से हमनी के सुनत हवन जा बीस के पास बा कोई तक घमंडो करेला बीस के पास से बंटार ई बात बोला

तो चला श्रोतागण यही संगे हमनी तोहार पसंद कार्यक्रम के अंत तक चलाल हैं जा अंतिम गीत हमनी चलावत हैं जा चित्राजी मौदाल बिया सेहवन जा और खास तौर पर इंदिरा लौतन जी विजय बंदन जी कमला सलोनी रतन और ज्ञान ओकर पति खातिर है गीतवा के मांग कर ले बाते तो चला है गीतवा कर खातिर और सब कोई के बोलब जा नमस्ते स्वस्थ रहिया सुरक्षित रहिया।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घरे मिलाते, चलिए शाम के ठीक 6 बजे हैं। रविवार 4 अक्टूबर 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पौना चौल के आसपास चलाई जा रही खोज कार्रवाई 7वें दिन पर पहुंच गई है। एनसीजी की टीमें उस 26 साल के भारतीय नागरिक को खोजने में लगी हुई है जो पिछले रविवार को देश के दक्षिण में स्थित पौना चौल में एक चट्टान से गिर गया था। शुक्रवार 2 अक्टूबर को लंदन में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम और बरतानी राष्ट्रीय सलाहकार जोनाथन पावल के बीच शागुस मुद्दे पर हुई बैठक आज कई अखबारों की सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री के एक बयान का हवाला देते हुए एक्सप्रेस डिमांश और वीकेंड ने अपने लेखों में कहा है कि अगर उचित समय सीमा के अंदर शागुस संधि को मंजूरी नहीं दी गई तो मॉरिशस कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपना सकता है। तमांग के लामीवुआ इलाके के रहने वाले लोग अपने आसपास पैडल और टेनिस कोर्ट, 24 विला और 45 हाउसिंग यूनिट्स जैसी परियोजनाओं के कारण चिंता जता रही हैं। उन्हें खास तौर पर संभावित परेशानियां और बाढ़ की समस्या के बिगड़ने की चिंताएं हैं जिनका सामना वे पिछले कई सालों से कर रहे हैं। स्पेन के कतालोनिया प्रांत में भारी बारिश के चलते भयानक बाढ़ उतर आई है। कई नदियां उफान पर हैं, 2 लोगों के मारे जाने की खबर है और कई अन्य लापता बताए जा रहे हैं। पौना चौल के आसपास चलाई जा रही खोज कार्रवाई 7वें दिन पर पहुंच गई है। एनसीजी यानी नेशनल कोस्ट गार्ड की टीमें उस 26 साल के भारतीय नागरिक को खोजने में लगी हुई है जो पिछले रविवार को देश के दक्षिण में स्थित पौना चौल में एक चट्टान से गिर गया था। लुशालों की एक टीम आसपास के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और पर्यटकों को खाई के बहित खरीब के करीब जाने से रोकने के लिए तैनात हैं। शुक्रवार 2 अक्टूबर को लंदन में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम और बरतानी राष्ट्रीय सलाहकार जोनाथन पावल के बीच शागुस मुद्दे पर हुई बैठक आज कई अखबारों की सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री के एक बयान का हवाला देते हुए एक्सप्रेस डिमांश और वीकेंड ने अपने लेखों में कहा है कि अगर उचित समय सीमा के अंदर शागुस संधि को मंजूरी नहीं दी गई तो मॉरिशस कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपना सकता है।

0: तामारिन के लामिवा इलाके के रहने वाले लोग अपने आसपास चल रहे रियल एस्टेट और मूल ढांचा परियोजनाओं को लेकर चिंता जता रहे हैं। पैडल और टेनिस कोर्ट, 24 विला और 45 हाउसिंग यूनिट्स जैसी परियोजनाओं के कारण लोगों की आशंकाएं बढ़ रही हैं। उन्हें खास तौर पर संभावित परेशानियां बाढ़ की समस्या के बिगड़ने की चिंताएं हैं, जिनका सामना वे पिछले कई सालों से कर रहे हैं। देश में जल भंडार की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश का कोई अनुमान नहीं है। अगर ये सही साबित हुआ तो पानी के वितरण में भारी बाधा पैदा होगी। इस सिलसिले में इस हफ्ते एक क्राइसिस कमेटी की बैठक लगेगी। CWA के महानिदेशक शांतानु कल रात MBC के फ्रेंच बुलेटिन में मौजूद हुए थे। उन्होंने आपातकालीन योजना का ऐलान किया, जिसमें जलापूर्ति सारिणी में बदलाव शामिल हैं। उनको सुनते हैं।
1: श्याम तानू ने कहा, एक आपातकालीन योजना है, अभी संबंधित प्रतिबंध योजना पर कार्य कर रहे हैं। इस बात को रेखांकित करना चाहेंगे कि संकट स्थिति का सामना कर रही है। सरकार की ओर से एक समिति का गठन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री कर रही है। अगले हफ्ते क्राइसिस कमेटी की बैठक लगेगी, संबंधित कदम उठाए जाएंगे, जैसे कि गंभीर प्रतिबंध, और लोगों से मांग की जाती है कि पानी जाया न करें, समझदारी दिखाएं। अगस्त महीने की शुरुआत में कुछ नियम लागू किए गए और लोगों से पानी बचाने की भी मांग की जा रही है। इस विधेयक में जुर्माना भरने का भी प्रावधान है। लोगों के लिए सलाह है कि बहुत सावधान रहें, पानी की बचत करें, सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार का जल भंडारण हो घर पर, ताकि दैनिक इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त पानी रहे। ये प्रश्न पूछे जाने पर कि अगर नवंबर दिसंबर महीने तक भी वर्षा न हो तो ऐसे में स्थिति का सामना कैसे किया जाए, इसके जवाब में शांतानु ने कहा कि माओ वाकवा में अभी स्थिति बहुत गंभीर है। दो नदियां हैं, पितरा और पापाई। सीधा लामागी से वाटर फिल्टर स्टेशन से पानी पंप किया जाएगा। सामान्य स्थिति में माओ वाकवा को लामागी को करीब 1,10,000 क्यूबिक मीटर पानी पहुंचाता है। शुक्रवार तक लगभग 71,000 और शनिवार को 69,000 क्यूबिक मीटर पानी था। स्थिति काफी चिंताजनक है, ऐसे में प्रतिबंध लागू करने ही है। ये भी सुनिश्चित करेंगे कि समय सारणी निर्धारित हो, जनता को सूचित किया जाएगा ताकि लोग नकारात्मक तरीके से प्रभावित न हो।
0: जैसे कि हम आपको कुछ देर पहले बता रहे थे कि तामारिन के लामिवा इलाके के रहने वाले लोग अपने आसपास चल रहे रियल एस्टेट और मूल ढांचा परियोजनाओं को लेकर चिंता जता रहे हैं। पैडल और टेनिस कोर्ट, 24 विला और 45 हाउसिंग यूनिट्स जैसी परियोजनाओं के कारण लोगों की आशंकाएं बढ़ रही हैं। उन्हें खास तौर पर संभावित परेशानियां और बाढ़ की समस्या से स्थिति बिगड़ने की चिंताएं हैं, जिनका सामना वे पिछले कई सालों से कर रहे हैं। अंजू राम गुलाम की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
2: तामारे में मुसलमान रामदेनी के लामिवा में बाशिंदे परेशान हैं। उनकी नाक के नीचे कानों को तकलीफ देने वाली और शांति भंग करने वाले टेनिस और पैडल कोर्ट्स बनाए जाएंगे। पैडल के लिए 80 से 100 डेसिबल की सीमा निर्धारित है, जबकि आवासीय इलाकों में ये सीमा सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक 60 डेसिबल है। जो इलाका अब तक हरियाली से घिरा था, वहां बारिश के बाद उगने वाले मशरूम की तरह तेजी से रियल एस्टेट परियोजनाएं सामने आ गई हैं, और अभी और बाकी हैं। यहां 24 विलास बनाए जाने वाले हैं।
3: On demande nous à ce qu'on nous écoute, à ce qu'on nous aide et à ce qu'on comprenne ce qui se passe.
2: यही नहीं, एक अन्य प्रमोटर ने 45 आवासीय इकाइयों वाले एक प्रोजेक्ट के लिए आवेदन दिया है। इनमें ग्राउंड फ्लोर 2 मंजिलें, तीसरे स्तर पर पेंट हाउस होंगे, नदी से कुछ ही कदमों की दूरी पर। निवासियों ने कई निर्वाचितों से संपर्क कर अपनी चिंता व्यक्त की। सांसद जुआना बेहोंजे ने उनके स्थल पर आने की मांग की। ये एक आवासीय इलाका है, पर्यावरण आदि को ध्यान में नहीं रखा गया है। आने जाने की एक ही सड़क है, पानी की कमी, सुरक्षा की कमी। जो लोग ये अपार्टमेंट खरीदेंगे वे नहीं जानते कि ये बाढ़ संभावित इलाका है।

0: जुट पाको ने जुट किसे एनजुन इनोडाम।
1: पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी औपचारिक ब्रीफ के अनुसार इस स्तर पर तीन स्थलों में कोई वेटलैंड शामिल नहीं। हालांकि लॉट 22 पर प्रस्तावित 45 आवासीय इकाइयों वाली परियोजना के मामले में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। परमिट पर अभी विचार किया जा रहा है और मंत्रालय एक प्रारंभिक पर्यावरणीय अध्ययन की मांग करने की योजना बना रहा है। वेटलैंड हो या न हो, इस रियल एस्टेट परियोजना से लामीवा के निवासी बाढ़ की समस्या का सामना कर रहे हैं। सबूत के तौर पर उन्होंने वीडियोस भी साझा किए। उनके अनुसार पिछले 15 सालों से अधिक समय तक ऐसी स्थिति कभी सामने नहीं आई थी।
2: Une PME pour construire dans Beau la rivière, qui est-ce qui est normal ça?
3: Et un comité.
1: PBMC समिति काम करके सलाह देती हैं। वे एप्लीकेशन पर काम करके देखते हैं कि सभी मापदंडों का पालन हो रहा है या नहीं। अलग अलग मापदंड हैं, जैसे पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि के लिए क्लियरेंस, सीबी,
3: सीडब्ल्यूएबीआ।
1: लामीवा के निवासी अभी भी अपनी आवाज उठाने का प्रयास जारी रखेंगे, अपने इस छोटे से हरे भरे इलाके को बचाने के लिए, जहां कंक्रीट का फीका रंग धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहा है।
4: और जैसे कि आपको बताया गया था कि पोनाचखल के आसपास चलाई जा रही खोज कार्रवाई सातवें दिन पर पहुंच गई है। एनसीजी की टीमें उस 26 साल के भारतीय नागरिक को खोजने में लगी हुई हैं, जो पिछले रविवार को देश के दक्षिण में स्थित पोनाचखल में एक चट्टान से गिर गया था। विशालों की एक टीम आसपास के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और पर्यटकों को खाई के करीब जाने से रोकने के लिए तैनात हैं। कुणाल गुजी की रिपोर्ट।
5: पहली बार इधर आए हैं
6: जी? पहली बार।
5: पहली बार मैं आपको बता दूं, अब जहाँ जा रहे थे उधर बहुत खतरा है जी। इधर आप जैसे देख रहे हो, यहाँ एक ब्रिज है, देखने के लिए बहुत अच्छा है, बट यहाँ बहुत लोग अपने जान गंवा दिया है। ऐसे मैं बोलूँगी आप इधर ही से देखना, उधर मत जाना। जैसे आप देख सकते हो वहाँ पर भी बहुत सारे वेव्स आ रहे हैं। ऐसा सेल्फी ले रहे हो तो कभी एक वेव आकर पीछे से आपको ले सकता है, और यहाँ से भी बहुत चांस होता है आपको फिर ऊपर लाने के लिए, देख सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी उधर जाना ही नहीं, जो फ़ोटो लेना है इधर ही से लेना।
6: थैंक यू।
5: एंड आप जाओगे अपने फ्रेंड्स लोग को भी बोल देना जो यहाँ आना चाहते हैं, ताकि हम जितने चाहे आप लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि पोनाचखल इज़ वेरी नाइस टू सी, बट यहाँ बहुत खतरा है। यहाँ आना है तो बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है।
6: ओके मैम,
5: थैंक यू। इधर से आप फोटो लो।
6: ओके,
7: थैंक यू। ओके, मेरा एक दोस्त आया था इधर, वही जाके बताया वो जगह बहुत अच्छा है, इसीलिए हम लोग आए इधर घूमने। हाँ, यहाँ पे बहुत सावधानी लेना चाहिए, नहीं तो आपको जान को भी खतरा हो सकता है।
8: हमारे दोस्त भी पहले आए थे, वो भी लोग बोले थे आप जाइए वहाँ पर घूम के आइए, बहुत अच्छा जगह। हम लोग आए, हमको यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा जगह है सेल्फी लेने के या फोटो लेने के लिए या घूमने के लिए, ये बहुत अच्छा जगह है। ये चीज़ को हमको ध्यान में रख के हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, जो डेंजर एरिया है उधर हम लोग नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए गार्ड भी हैं, हम लोग को मना कर रहे हैं इधर नहीं जाना है, वहाँ पर हम लोग उस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं।
4: सरकार अपने इकोलॉजिकल ट्रांजिशन रोडमैप की रफ्तार बढ़ाना चाहती हैं। स्थानीय बायोमास उत्पादन की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए पिछले 24 सितंबर को कृषि उद्योग मंत्री डॉ. अरविंद बुलेल की अध्यक्षता में एक राउंड टेबल चर्चा लगी। मॉरिशस के इंडस्ट्री अथॉरिटी की पहल पर आयोजित इस बैठक में इस सेक्टर से जुड़े साझेदार एक स्पष्ट मकसद के साथ एकत्र हुए। 2035 तक राष्ट्रीय ऊर्जा मिश्रण में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी 60% तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य के केंद्र में खेती से जुड़े नए तरीके, वन विभाग और आर्थिक आर्बिट्रेशन जैसे पहलू शामिल हैं। माधवी जगन्नाथ, रजनी विकर।
9: हमारे स्थानीय बायोमास के इस्तेमाल के लिए ठोस समाधान ढूंढना मॉरिशस के इंडस्ट्री अथॉरिटी MCIA की ओर से पहल की गई है, और इसके लिए यही अहम मुद्दा। गन्ना प्राधिकरण की तरफ से एक के एक गन्ने की एक नई किस्म प्रस्तावित की जा रही है, ताकि देश के ऊर्जा ट्रांजिशन में ये सहायक सिद्ध हो। मॉरिशस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी के CEO डॉक्टर सुमन सिरतन ने कहा, बहुत से ईख के खेत त्याग दिए गए थे। 4 वर्षों की एक बड़ी परियोजना है जिसके तहत 1,500 हेक्टेयर त्यागी हुई जमीन पर फिर से खेती की जाएगी।

0: ऐसा करते हुए मौका से फायदा उठाते हुए क्लासिकल वैरायटी की तुलना में अधिक फाइबर वाली किस्म पर ध्यान केंद्रित करेंगे। गन्ने के संबंध में गन्ने के पत्तों को भी जमा करने की बात शामिल है। कुल 500 गीगावाट से 2030 प्रति घंटे तक का लक्ष्य निर्धारित है। लेकिन इस ट्रांजिशन में केवल गन्ना ही नहीं है, एक अन्य अहम मुद्दा भी है, वो है हमारे जंगल। कृषि उद्योग मंत्रालय के फॉरेस्ट कंजर्वेटर पूजन राज खरन ने कहा, उद्देश्य है अनुकूल पेड़ों के साथ फिर से जंगल को व्यवस्थित करना ताकि रिन्यूएबल एनर्जी की योजना पूरा कर सके। प्रतिवर्ष 100 टन लकड़ी है। अभी इन दिनों सरकार ईख के पत्तों और बायोमास के लिए 3.50 रुपए किलोवाट प्रति घंटे के हिसाब से पैसे चुका रही है। बिजली के स्वतंत्र उत्पादक इस टैरिफ के बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। बिजली के इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के प्रवक्ता ग्रेगोरी बाथफील्ड ने कहा, इससे आयात की जाने वाली ऊर्जा पर कम निर्भर होंगे, जो कि मुद्रा के हिसाब से ज्यादा महंगा है। अभी दाम पर गौर करने की दिशा में काम कर रही है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। स्थल की हकीकतों के चलते कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेट व्यावहारिक होना चाहते हैं। स्थानीय उत्पादन काफी नहीं होगा। 9 वर्षों में 60% मिक्सड एनर्जी तक पहुंच पाने के वास्ते बायोमास आयात से नहीं बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा,
1: बागास इन एन रोल बियन इंपोर्टेंट अवेक लेज बायोमास।
0: अन्य बायोमास की तरह बागास की एक अहम भूमिका है। MCIA का एक शेड है जिसे परिवर्तित किया जाएगा। सख्त सैनिटरी नियम है, एक तरफ ईख के गन्ने होंगे तो दूसरी तरफ बायोमास, और कोई विकल्प नहीं। धीरे धीरे बायोमास बढ़ाएंगे तो आयात कम करेंगे। इस ट्रांजिशन से स्पष्ट संकेत, रेजवी में बायोमास के लिए समर्पित एक प्रयोगशाला का उद्घाटन, जहां पर इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों का विश्लेषण किया जाएगा। जहां तक वार्ता की बात है तो बहुत जल्द सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी ताकि स्थानीय शाखा की आर्थिक एवं लॉजिस्टिक आर्बिट्रेशन निर्धारित हो, जो कि मॉरिशस के लिए ऊर्जा संबंधी रोडमैप के लिए अहम है।
2: कई हफ्तों की बातचीत के बाद सेंट्रिक्स के 300 से अधिक कर्मचारियों और कंपनी के प्रबंधन के लिए एक स्वीकार्य समझौता आखिरकार तय हो गया है। कॉन्सेंट्रिक्स के बंद होने से मॉरिशस में BPO सेक्टर के भविष्य पर एक बार फिर चर्चा हो गई है। एक अंतर मंत्री स्तरीय समिति वर्तमान में नई चुनौतियों का सामना कर रही इस सेक्टर के पुनर्गठन पर काम कर रही है। यासीन दिल महमूद की रिपोर्ट पर पूजा सुकालू का विवरण।
3: अस्थिरता में जीना ज्यादा मुश्किल होता है। कई हफ्तों तक श्रमिक संघ, कंपनी के प्रशासन और श्रम मंत्रालय के समझौतों के बीच कॉन्सेंट्रिक्स के कर्मचारी बिना जवाब ही रह गए। आखिरकार शुक्रवार को ग्रुप के शेयर होल्डरों की बदौलत उम्मीद की किरण नजर आई। दो महीनों का समझौता तय हुआ है। वेतन, सालांत का बोनस, कैजुअल लीव, वैकेशन आदि की भरपाई अलग से की जाएगी। मंत्रालय ने इस फैसले की सराहना की। श्रम मंत्री बताते हैं,
4: कॉन्सेंट्रिक्स
3: के पास कर्मचारियों के वेतन के लिए पैसे ही नहीं थे। शेयर होल्डर कर्मचारियों की कड़ी मेहनत को ध्यान में रखकर पैसे चुकाने को राजी हुए हैं। कॉन्सेंट्रिक्स से परे पूरा BPO क्षेत्र कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और वेतन को लेकर बढ़ी हुई उम्मीदों के कारण एक अंतर मंत्रालय समिति सुधारों पर विचार कर रही है।
5: Besoin une refonte complète de nos stratégies parce que nous encore on a beaucoup à offrir.
3: रणनीतियों पर फिर से विचार किया जाना होगा। बहुभाषी होने के नाते हम विदेशी कंपनियों को सहयोग दे सकते हैं। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव्स के साथ आगे आना पड़ेगा। समिति का काम शुरू हो चुका है। रिपोर्ट कैबिनेट को सुपुर्द की जाएगी।
2: ओम्बड्सपर्सन फॉर चिल्ड्रन दफ्तर ने शुक्रवार को कोरा ऑथ सेंटर में अपनी 2025-2026 रिपोर्ट प्रस्तुत की। लगभग 200 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में कई अध्याय शामिल हैं जो मुख्य रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों के अधिकारों, गंभीर व्यवहार

0: संबंधी समस्याओं वाले बच्चों, ऑटिज्म और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तथा अन्य विषयों को समर्पित हैं। याद रहे कि जुलाई 2025 और जुलाई 2026 के बीच ओम्बड्सपर्सन दफ्तर ने 363 मामले दर्ज किए, जिनमें से 6 रोड्रिग्स के थे। इनमें 167 मामले स्कूल से जुड़ी समस्याओं के रहे, जिनमें बुलिंग शामिल रहा। 63 मामले पारिवारिक समस्याओं से जुड़े थे और 11 मामले दिव्यांग बच्चों से संबंधित रहे। ओम्बड्सपर्सन फॉर चिल्ड्रन ने अपनी 2025-2026 रिपोर्ट में मॉरिशस में ऑटिज्म बच्चों की स्थिति पर एक अध्याय शामिल किया है। दफ्तर में दर्ज की जाने वाली शिकायतों की संख्या से पता चलता है कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए अच्छी किस्म की और समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सिंचामुत्यू यचना मिश्रा।
1: मॉरिशस में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों की देखभाल और शिक्षा व्यवस्था में मौजूद कमियों की पहचान करने तथा उनके अधिकारों और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अधिक समावेशी शिक्षण के लिए ओम्बड्सपर्सन फॉर चिल्ड्रन ने संबंधित साझेदारों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया। प्रमुख बाधाओं पर विशेष रूप से चर्चाएँ की गईं।
2: Il y a plein d'enfants qui ont un problème, parents pas connaît qui peut faire autre domaine extrême cas extrême et nous faisons une recommandation une structure pour prendre autre en compte.
1: कई बच्चे समस्याओं से जूझ रहे हैं, माता पिता परेशान हैं, हमने सिफारिशें की हैं। कानूनी स्तर पर ऐसे बच्चों की देखरेख के लिए कई कमियां पाई जाती हैं, खासकर 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए। प्रमुख मुद्दों में ऑटिज्म के बारे में सीमित जानकारी, जो भेदभाव को बढ़ावा देती है, शामिल हैं। इसके अलावा कई कक्षाएं बच्चों की जरूरतों के अनुरूप नहीं और आवश्यक संसाधनों तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी कमी है। दिव्यांग बच्चों या ऑटिज्म जैसी बीमारी में जी रहे बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को नियंत्रित करने वाले एक मजबूत कानूनी ढांचे का अभाव भी समस्याओं में शामिल है। विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चों के लिए आवासीय सुविधाओं की कमी है। माता पिता और देखभाल करने वालों के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन और सहायता का अभाव भी है। इन बच्चों की शैक्षणिक देखभाल और सहायता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई प्रस्ताव रखे गए। ओम्बड्सपर्सन दफ्तर चाहता है कि संबंधित अधिकारी इन सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
0: 2019 में होल्डेम सेंट स्कूल विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले बच्चों और युवाओं की स्कूली शिक्षा और उनके विकास में सहायता कर रहा है। कैटरबोन में स्थित इसके 2 संस्थानों में लगभग 100 छात्र पढ़ाई करते हैं, जहाँ पेसक से लेकर प्री वोकेशनल और वोकेशनल तक के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। उनकी क्षमताओं के अनुसार अनुकूलित शिक्षण पद्धति उन्हें अपनी गति से आगे बढ़ने में सहायता देती है। अश्विनता बंटू, पूजा सुकालू।
3: होल्डेम सेंट स्कूल में लयका लोग के सहयोग दे के शुरुआत हर छात्र के क्षमता के निमन ढंग से समझे से होला। हर एगो लयका की क्षमता के मूल्यांकन करला के बाद शिक्षण के हर एगो छात्र के व्यक्तिगत जरूरत और ओकर सीखे के गति के अनुसार ढालल जाला। मैं रितेश बिहारी बोलेलन। कोनो लयका अकेडेमिक स्तर पर कमजोर रहेलन सा, यही खातिर हमनी लोग थेरापी के कक्षा चलाइला सा गतिविधि के माध्यम से, जैसे कि खाना पकाए के, बागबानी। अब जो लयका में क्षमता बा पेशा के परीक्षा दे के, तो हमनी उ लोग के तैयार करीला सा, तब जाके ई लोग कोनो कॉलेज में दाखिला पाई सकेलन सा। दोनों संस्था में 33 कर्मचारी की एगो टीम बाते, जेकर में खास करके शिक्षक, सहायक और देखभाल करता शामिल बा। लयका के रोजाना सहयोग और मार्गदर्शन देवेलन सा, मगर सीखे के प्रक्रिया में व्यावहारिक और रचनात्मक गतिविधि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभावेला। हाल ही में आयोजित एगो ओपन डे में संस्थान छात्र लोग के एगो खास विषय पर काम करे के अवसर दिलक, जो डायनोजोर। लयका लोग इ गतिविधि के माध्यम से अपन क्षमता दिखावेलन स, उ लोग के रचनात्मकता, अभिव्यक्ति और आत्मनिर्भरता के विकसित करे में भी मदद करेला।
0: खबरों को आगे बढ़ाती हैं। 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 157वीं जयंती मनाई गई। इतने साल बाद आज भी उनके सिद्धांत दुनिया भर में सत्य, अहिंसा और सद्भावना जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं। बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए परंपरा अनुसार इस बार भी लामोचा गांधी भवन में एक भव्य समारोह का आयोजन

0: किया गया। ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए पोर्ट लुइस की डायोसेस ने ड्रग्स का सेवन करने वालों और उनके परिजनों को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए एक अंतर धार्मिक समूह बनाने का आह्वान किया है। पिछले गुरुवार को रोजिल स्थित इंस्टीट्यूट कॉर्डिनल जो मार्जियो में प्रशिक्षण का दूसरा सत्र आयोजित किया गया। नशीले पदार्थों, तस्करी, खपत और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से जुड़े नवीनतम आंकड़े साझा किए गए। इस नर्क में फंसे लोगों की बेहतर सहायता करने के लिए अपने अपने समुदायों में लौटने से पहले अन्य चर्चाएं भी निर्धारित हैं। वाली काली याचना मिश्रा।
1: रुचि के साथ लोग इस प्रस्तुति को सुनने आए। आर्य सभा मॉरिशस द्वारा संचालित उपचार और पुनर्वास केंद्र से विमला जदुनंदन ने तथ्यों को आधार बनाकर ड्रग्स की समस्या और उससे जीवन में उत्पन्न बाधाओं पर बात की। वे बताती हैं,
2: L'âge de prise de drogue peut baisser, hein? La quantité de personnes qui sont en traitement, nous trouvons bien peu de dames, bien peu de filles là-dedans, plus de monsieur.
1: ज्यादा से ज्यादा कम उम्र के लोग और पुरुष लड़के आदि ड्रग्स लेते हैं। हमारा मस्तिष्क 25 साल की उम्र तक विकसित होता है और यदि इस उम्र की सीमा के अंदर ड्रग्स दिया जाए तो आप ही सोचिए कि मस्तिष्क पर इसका क्या प्रभाव होगा। इस संवाद की पहल पोटवी गिरजाघर की ओर से की गई। ये दूसरी बार है जब धार्मिक प्रतिनिधियों के साथ गैर सरकारी संगठनों के जिम्मेदार सदस्य और विशेषज्ञ एक साथ आए ताकि वे राष्ट्रीय चुनौती बनी इस समस्या को समझे और अपने विचार बांट सके। क्या कोई भी मॉरिशन परिवार इससे बचा है? कोई ना कोई रिश्तेदार इसके चंगुल में है। धर्म शायद कुछ उम्मीदें लेकर आई, लेकिन मानवता का क्या? ड्रग्स किसी भी समाज को मानवताहीन बना सकता है।
3: Une, peut-être une espérance, une parole, mais comment garde l'humanisation? Ben là, c'est ça. La drogue déshumanise une société.
1: सत्र के अंत में कैथोलिक चर्च को उम्मीद है कि धार्मिक प्रतिनिधि न केवल अपने समुदायों में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे बल्कि विभिन्न धर्मों के बीच आपसी सहयोग भी मजबूत होगा। हम अलग तरीके से जानकारी हासिल कर रहे हैं और अब हम जाकर सभाओं में ये संदेश देंगे। हम उन लोगों को सुनेंगे, उनकी स्थिति के बारे में ज्यादा समझेंगे।
4: Comme coup de main, you are the right resource person to talk to that target market. T'as vraiment pas besoin l'exemple pour dire, moi rentre dans pays, moi qui est une religieux musulman, me trouve un problème parmi ben.
1: आज हमने ये जाना कि हम अपनों के बीच संदेश पहुंचाने के लिए सही माध्यम हैं। मान लीजिए पाई में मुसलमान होते हुए यदि मैंने किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को समझाना चाहा, तो शायद मेरी बातों पर उतना दम नहीं होगा जितना कि उस व्यक्ति के धर्म का कोई दूसरा जन। हम साथ मिलकर ये आश्वस्त कर पाएंगे कि हमारा देश स्नेह से ज्यादा भरा है। आने वाले सत्रों में अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाएगी ताकि धार्मिक प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के बीच इस संवाद का सकारात्मक प्रभाव पूरे समुदाय में देखने को मिले।
0: आज वे 104 वर्ष की होती। सैतुबे में जन्मी लेडी सुशील राम गुलाम अपने परिवार की यादों में एक सतर्क माँ और सचिव सागर राम गुलाम के साथ एक शांत उपस्थिति के रूप में जीवित हैं। सुर्खियों से दूर उन्होंने अपनी सादगी और कर्तव्य की भावना से अपने आसपास के लोगों पर गहरी छाप छोड़ी। इस पर ज्यादा जानकारी अश्विनता बांटू की रिपोर्ट पर करुणा लालू के विवरण के साथ।
5: सचिव सागर राम गुलाम के साथ उन्होंने सदैव ही शांत और निरंतर मौजूदगी बनाए रखी। फर्स्ट लेडी को मुख्य रूप से उनके पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए याद किया जाता है।
6: Mais quand les enfants sont dans la carrière, mais moi aussi, tous les temps, ils sont nous. Ils n'ont pas de laisser nous. Son caractère, c'est un caractère super, c'est bien content aux enfants, c'est bien content aux familles, c'est bien simple.
5: Saint-Aubin, mais on a eu le 2 octobre 1922, ce qui a été
7: fait. Je me connais avec le docteur Ram Goulam, il est bien content ce moment. Ce moment-ci, il est bien content. Et ce moment, ce bénédiction, tous les temps, il y a un lit.
8: Le premier fait, c'est l'idée du Parti travailliste. Ça symbolise ça, une grande dame qui discrète le profil

0: Et c'est eux qui ont fait le succès de SSR.
1: Traditionnellement, nous célébrons cet événement-là aujourd'hui ici en mémoire de Lady Chouchil Ramgoulam, qui est née à Saint-Aubin.
2: Nous connaissons comment les Tibézains sacrifient en tant que maire et en tant qu'une madame Ndimoun quand les sommissiers, les Tibézains, allent de l'avant pour gouverner Maurice.
3: C'est Sissou Sagar Ramgoulam qui sarvajanik chavi ke piche ek mahila thi, ek patni, ek maa aur saath hi parivar ka ek mazboot stambh.
4: रॉजिल स्थित एम्सो में जानवरों के प्रति संवेदना और सम्मान को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 4 अक्टूबर को मनाए जा रहे विश्व पशु दिवस के अवसर पर आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया। ये समारोह जानवरों के संरक्षण माने जाने वाले संत फ्रांसवा दासीज की स्मृति से भी जुड़ा है। इस वर्ष की थीम है उनकी नज़र से दुनिया को देखिए, यानी सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आइज। उनके लिए बुबुना सिर्फ एक कुत्ता नहीं है। 15 साल की उम्र में यह वफादार साथी आमिर के जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ये मेरे लिए सब कुछ है, मेरा प्यार है, ये हमेशा हमारे साथ आशीर्वाद की तरह रहे। आज उनके मालिक बुबुना को माइक्रोचिप लगवाने के लिए एम्सो लेकर आए। ये कुत्ते के लिए भी जरूरी है जिससे समाज में इसे पहचाना जा सके। कभी भी ऐसा हो कि ये गुम हो जाए तो इसके माइक्रोचिप के जरिए हमें इसके मालिक का पता चल पाएगा। लेकिन बुबुना अकेला ऐसा जानवर नहीं था जिसे आज खास ध्यान मिला। ब्राजील स्थित एम्सो में पिल्ले आपस में खेलते नजर आए और देखभाल करने वालों के करीब आकर प्यार और दुलार का आनंद लेते भी। उनकी आंखों में मासूमियत के साथ एक उम्मीद भी नजर आई।
5: और यहाँ पे मेरा काम बिल्कुल चेक करना पड़ता है, अगर सर्जरी करना है सर्जरी प्रिपेयर करके डॉक्टर को देना है, इसलिए ये काम करते हैं उसको दुख में से निकालने के लिए।
4: विश्व पशु दिवस के अवसर पर आयोजित इस आशीर्वाद समारोह में 4 अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्री अरविंद बुलेल और जूनियर मंत्री फाब्रिस दावी तथा कई पशु प्रेमी मौजूद रहे। सभी ने जानवरों के प्रति संवेदना और सम्मान के महत्व पर जोर दिया।
6: परमात्मा ने बनाया अनेक प्रकार के प्राणी, इसमें मनुष्य आता है, चिड़िया आती है और इसमें 4 पैर वाले जानवर भी आ जाते हैं। इसी कारण मनुष्य के कर्तव्य ये बनता है कि वह औरों के प्राण और प्राणी के प्रति अपना जो प्रेम है, अपनी सेवा है, प्रस्तुत करे।
4: एम्सो के लिए जानवरों की सुरक्षा का मतलब ठोस कदम उठाना भी है। कुत्तों की नसबंदी को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि उनकी संख्या में बढ़ोतरी और आगे चलकर आवारा कुत्तों की संख्या को कम किया जा सके। ये स्थिति पर ध्यान देते हुए हम माइक्रोचिपिंग और कुत्तों के रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे जान पाए कि कितने कुत्ते हैं। इस विश्व पशु दिवस का संदेश सार्वभौमिक है, उनकी नज़र से दुनिया को देखना सीखना, हमारे जीवन में उनके महत्व को समझना भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेन के कतालोनिया प्रांत में भारी बारिश के चलते भयानक बाढ़ उतर आई है। कई नदियां उफान पर हैं, 2 लोगों के मारे जाने की खबर है और कई अन्य लापता बताए गए हैं। बढ़ते हम अब मौसम संबंधी जानकारी की ओर रजनी बेकर के साथ।
7: दक्षिण पूर्व की ओर से जो बादल बढ़ गए हैं वे रह रहकर हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि रात में आमतौर पर आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी ऊंचाइयों पर। रात के दौरान और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे और कुछ बारिश भी हो सकती है, मुख्य रूप से देश के पूर्वी इलाके, दक्षिणी इलाके और सेंट्रल प्लेटों पर। ऊंचाइयों पर कोहरे छाए रहेंगे। दिन के दौरान मौसम अच्छा रहेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। वर्षा होती रहेगी। प्रवाल रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण में 2.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। फिर भी कल दिन के दौरान इसमें सुधार आने लगेगा। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 15 और 17 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 22 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 27 एवं 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 6:08 पर सूर्यास्त, सुबह 5:47 पर सूर्योदय।

0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। कंसल पर हमारे सहयोगी शिव हैं, उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu.
0: शुभ समाचार सुनिए। सुल्फिरिनु नंबर तीन वाकवा में 89 साल के श्री सत्यानंद दीपचंद जिन्हें माजो दालों के नाम से बहुत ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे किशन दीपचंद के घर सुल्फिरिनु नंबर तीन वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बालोंस नंबर 5 सुल्फिरिनो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुमोरो 10 AM कावली सौरो दुफ्रे में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री नीलाधर मंगल जिन्हें हरिदेव के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके घर दुफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए भूषों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुमोरो 9 AM अलीमांग पोस्ट दिफ्लाक में 57 साल की 57 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सविता जरी जिन्हें पिक पिक के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे उनकी माँ माहिनी जरी के घर पोस्ट दिफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचा की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमोरो 9 AM थ्रोजियम अली गड मेबर्ग में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती गोमती देवनारायण पैदाशम रामफल और जिन्हें मदम रामफल के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके घर मेबक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो लेन मेबक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुमोरो 11 AM एवेन्यू सियाकूफ कैट्रबोन में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड के श्री संदेश कुमार सिलोचन जिन्हें चिबाई के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे लाशापेला ओदोंत दे मुगा पुचित रविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति मारी गहरी संवेदना है।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
2: तो चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। समस्त श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम। तो चलिए श्रोताओं, रात के हम सफ़र हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत हम

करने जा रही है शुभ विचारों के साथ। वैसे अगर आपके पास श्रद्धा हो, आप समर्पण रखते हैं, भक्ति में विश्वास रखते हैं, तो ये कार्यक्रम जो है हमारे साथ आप जुड़ जाए। भजले प्रभु का नाम की शुरुआत हम भगवान गणेश जी का नाम लेकर करेंगे।

तो चलिए श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। वैसे आज है रविवार और रविवार का दिन आपको पता है कि समर्पित है भगवान सूर्य को, और भगवान सूर्य का उपासना करना जो है कितना महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में। सूर्यदेव जो है उनको हम

अर्पित करते हैं। श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है भगवान सूर्य देव, और सूर्य नमस्कार और सूर्य मंत्र का जाप भी अनेक लोग जो है अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या में शामिल करती है। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, ये अगला भक्ति गान आपके लिए।

तो चलिए श्रोताओ, भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे हम सूर्यदेव से ये भी सीखते हैं कि जीवन में हमेशा प्रकाश बांटते रहना चाहिए, जैसे सूर्य बिना किसी भेदभाव के सभी को रोशनी देता है, वैसे ही हमें भी अपने व्यवहार में प्रेम, दया

श्रोताओं, भजरी प्रभु का नाम आपकी सेवा में प्रसारित है। वैसे सूर्य का प्रतिदिन उदय होना हमें यह विश्वास दिलाता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। हिंदू परंपरा में प्रातःकाल सूर्य देव को जल अर्पित करना श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। तो श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी यही कामना है कि हम ईमानदारी से और निष्ठा के साथ, जी हाँ, ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का हम पालन करते रहे और हमारे साथ आप जुड़े

तो चलिए कार्यक्रम के अंत तक आप पहुँचे हैं। हम यही कहेंगे आपसे कि सूर्य की तरह बनिए जो स्वयं प्रकाशित होकर दूसरों के जीवन में भी उजाला भर डाल। जी हाँ, अंत में हम इस कार्यक्रम में यही कहेंगे सूर्य की तरह बनिए जो स्वयं प्रकाशित होकर दूसरों के जीवन में भी उजाला भरता है। तो आइए कार्यक्रम की अंतिम भेंट में ये बहुत ही प्यारा सा नज़राना आपके लिए, आपको हम कहेंगे शुभ रात्रि।

मज़ीद सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज की उर्दू नशियात महफिल शब में समीर आप तमाम सामीन का खैर मकदम खुलूस कल्ब से करता है। उम्मीद है कि आप तमाम सामीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से खैर वाफियत से हैं। सामीन मुख्तरम, आइए महफिल शब की इब्तिदा इस हमद से करते हैं।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 6 हुकूक हैं। जब उससे मिलो तो सलाम करो, जब वो दावत दे तो कबूल करो, जब वो तुमसे खैर ख्वाही तलब करे तो खैर ख्वाही करो, जब उसे छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसे दुआ दो, जब वो बीमार हो तो उसकी इयादत करो, और जब वो वफात पाए तो उसके जनाजे के साथ जाओ। इस हदीस में बीमार की इयादत को मुसलमान के बाहमी हुकूक में शुमार किया गया है, इसलिए बीमारी के वक्त किसी शख्स को तन्हा छोड़ देना मुनासिब नहीं, बल्कि हस्ब इस्तेआत उसकी मदद, दिलजुई और हौसला अफजाई करनी चाहिए। ख़ास तौर पर बीमार वालिदैन और रिश्तेदारों की खिदमत में मोहब्बत, सब्र और हुस्न अखलाक का मुजाहिरा करना चाहिए।

किसी बीमार की इयादत करता है, वो वापस आने तक जन्नत के फलों के बाग में रहता है। बीमार की इयादत सिर्फ एक माशरती रस्म नहीं, बल्कि इबादत और सवाब का काम है। जब हम बीमार के पास जाते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं और उसे ये एहसास दिलाते हैं कि वो अकेला नहीं है, तो इससे मोहब्बत और भाईचारा पैदा होता है। सामीन कराम, महफिल शब प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें आज की हदीसों पर अमल करने की तौफीक और ताकत अता करे। मौला करीम तमाम अहले ईमान को अच्छी सेहत अता करे और जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला वाजिला अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आइए महफिल शब के आखिर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजराना पेश करते हैं और इसी के साथ ये महफिल ख़त्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात फिर होगी। शब्बा खैर और खुदा हाफिज़।

रात के 9:10 हो गए बा सभी प्यारे श्रोतागण के हमार नमस्कार स्वीकार कर जा। आज हर रविवार के दिन और रात्रि में त ठंडा गिराता तो हर खातिर भोजपुरी तड़का और नंबर वा घुमावा का सौंदे का तो वह सैंक और मैसेजेस भेज सकब जा ऑन 5 2 5 7 0 0 5 और उषा कौर तो हर संगे रात के 11 बजे ले

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: 9:20 हो गए बा साथे लोगन, हमेशा प्रार्थना करेला कि ईश्वर हमनी के बहुत कुछ दे, पर तो लोग साथ साथ ये भी कामना करिया जा कि झूठ से बचाए के और सत्य के तरफ बढ़ाए के आशीर्वाद तोरा प्राप्त हो। तो चल अगला गीत कृषि के गावल गीत संगीता जी खातिर जन रहिला क्यूपिप और गाना मांगत अवन जा पति देव और बेटी आशी खातिर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: चल भोजपुरी तड़का तुहर संगे रात के 11 बजे ले। और आज रविवार 4 अक्टूबर रविवार की रात बा और यहाँ पर ही हमें सुन रही है ममता जी। हाँ क्यों पिप से और गाना मांगत अवंजा अपन पति के शव खातिर और बेटियाँ जो है खुशी और अरवी और पूरे सिगोपुर परिवार के लिए

stand up in me, son wall, basa tu ase kamparal baha, kaito ke bu.

0: बोलीला साके तोहरा पॉजिटिव चाहेला रहे के यानी सकारात्मक सोच चाहेला अपनाए के फिर भी बहुत कोई सब बात समझते हुए भी चिंता से अपन के कमजोर बना देवेलन जा ये जीवन में एकदम बोलीला जा कदम कदम पर मुश्किल आवेला पर हार मार कर बैठ जाइबत समझा हो जा तोहर जीवन निरर्थक बन जाए तो हिम्मत जुटा के मुसीबत के सामना कर जा तो चला अगला गीत सुना कुनल बाबूलाल के गावल गीत
1: भोजपुरी तड़का
0: रात के 10 बज गल बा और ये गाना देवरानी जी खातिर देवरानी सिबोरत जी खातिर जौन रहिला क्यू पेप और गाना मांगत वंजा अपन खातिर और पूरे सिबोरत परिवार खातिर

लोग चला सुना तवंजा भोजपुरी तर का कार्यक्रम और एम फ्री रेडियो और रेडियो मॉरिशस के लहरों पर और यहाँ पर ही हमने के सुना था विनोद जी और वो रही लाका ट्रबोन और गाना मांगा तवंजा अपन खातिर और सभी देवनाथ परिवार खातिर

चला देखते देखते 11 बजे के बाद पूरा कार्यक्रम में तो हर सुंदर साथ रहल खातिर हृदय से धन्यवाद। अपन ख्याल रखिया जा और हरदम खुशी से जिंदगी के स्वागत करिए। नमस्ते और शुभ रात्रि।

अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा, अरे गंदे पानी पीकर प्यास

अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
2: श्रोताओ, रात के 11 बजे हैं। रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल लेकर मैं आई हूँ पूनम। आप सभी को नमस्कार। और मैं तो आपसे यही जानना चाहूँगी, आपका रविवार पूरा दिन कैसा बीता? अब आराम से बैठिए, 60, 70 और 80 के दशक के गीतों के साथ एक ये प्यारा

श्रोताओ, रात के 11 बजे है रेडियो मॉरिशस पर सुनहरी पल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ पूनम। इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं पुराने गीतों के साथ, कुछ यादें बांटेंगे और थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आइए इस पहले गाने को सुनते हैं।

0: 18 kilowatts. This is Radio Mauritius.
1: पुरानी तस्वीर में अपना चेहरा देखकर कभी हंसी आती है, कैसे बाल बनाए थे, कैसे कपड़े पहने थे, फिर बाकी चेहरों पर नजर जाती है तो कितनी बातें याद आती हैं। तस्वीर छोटी होती है, उसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी होती है, और वही जो कहानी होती है वही तो सुनहरे पल होते हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: घर में किसी ने पूछा होगा, अभी तक सोए नहीं, और आपने कहा होगा, बस ये गीत सुन लो, रात की एक छोटी बातचीत में कितना अपनापन होता है। अच्छा लगता है कि हमारा कार्यक्रम भी आपके घर में एक घड़ी में शामिल हो जाता है, और जब शामिल होता है तो हम सबका एक अपना प्यार और साथ बन जाता है।

0: अगर कोई आपके पास बैठकर सुन रहा है तो कभी ऐसा भी होता है, गीत शुरू हुआ और दोनों ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, फिर बातें रुक जाती हैं, दोनों सुनते रहते हैं। साथ बिताने के लिए हमेशा बोलना जरूरी कहाँ होता है, वह सुनते रहिए AM 2 हमेशा आपके साथ।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

कुछ गीत पहले अपनी धुन के लिए पसंद थे, आज उनके बोल मन में रह जाते हैं। गीत वही है लेकिन हमारी जिंदगी में कितनी बातें जुड़ गई हैं, इसलिए बरसों बाद सुनकर भी उसमें कुछ नया मिल जाता है। और जब नया मिलता है तो एहसास होता है कि वो गाने, वो दिन, वो पल कितने खूबसूरत थे।

0: श्रोताओं, आज की मुलाकात यहीं पूरी होती है। उम्मीद है कोई गीत आपकी पसंद का रहा होगा, कोई याद अच्छी लगी होगी। अगले शनिवार रात 11 बजे फिर मिलेंगे। मैं थी आपके साथ पूनम, आपसे विदा लेती हूँ। आराम कीजिएगा। शुभ रात्रि।
1: On the hour, every hour, Radio Mauritius.

बंद कहाँ रहता है, दरिया का बहता पानी, चांद से मत

दिल जो किसी का चुराओ, दर्द को भी अपनाओ, अब

तो आपने फरमाया नहीं, मैंने खूब खाया, लेकिन ये जो दस्तखान पे गिरे हुए जर्रात खाने के मैं उठा के खा रहा हूं, इसका रीजन ये नहीं है कि अभी भूख बाकी है, भूख की वजह से नहीं। इसका रीजन एक हदीस जिसको सैयदना हम्माद बिन सलमा रजी अल्लाह तआला उन्होंने रिवायत की। आपने फरमाया कि हदीसे पाक में है कि जो शख्स दस्तखान पर गिरा हुआ खाना चुन चुन कर उठा उठा के खाएगा तो उसको कभी तंगदस्ती, गुर्बत कि खाना पीना ना हो इसका डर नहीं, वो इससे बेखौफ हो जाएगा। अल्लाह पाक इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा कि कभी वो तंगदस्ती का शिकार नहीं, कभी उसके हाथ तंग नहीं होंगे। जब ये हदीस खलीफा ने सुनी तो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और अपने गुलाम को इशारा किया। वो गुलाम गए और 1000 दीनार रुमाल में बांध कर लाए। खलीफा ने उस मुहद्दिस को, उस आलिम को वो नजराना पेश किया। जब नजराना पेश किया तो उस अजीब मुहद्दिस ने इस पे बड़े उम्दा कमेंट्स किए और फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पे अमल की बरकत हाथों हाथ। यानी ये बरकत हुई उन जर्रात को उठाने की और उठा के खाने की जो वो मुहद्दिस दस्तखान पे चुन चुन के उठा के खा रहे थे, क्योंकि उनका रीजन हदीस थी। अब यहां दो चीजें, एक हदीस पे अमल है, हदीस को देखना, और एक लोगों को देखना। लोग इसको अच्छा नहीं समझते, लोग इसको अच्छा नहीं समझते कि कोई गिरी हुई चीज दस्तखान पे गिरा हुआ खाना उठा के खा ले, और वो भी किसी आम इंसान के मेहमान नहीं थे, वो उस वक्त के अजीम खलीफा के मेहमान थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, ये नहीं देखा। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, आज हम और आप बहुत सारी अहादीस पर और सुन्नतों पर अमल से इसलिए महरूम है कि हम ये समझते हैं लोग क्या समझेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो लोगों को देखने की वजह से हम बहुत सारे बरकात से महरूम हैं।

ज़ारे के उस मुहद्दिस के आस पास कोई आम लोग नहीं थे, वो भी वक्त के उलमा, उमरा, वुज़रा, साहिबान दौलत, बड़े बड़े लोग थे। उन लोगों में इस हदीस पे अमल करना कोई आसान न था, लेकिन मोमिन वो है जो खुलाफा, उमरा, साहिबान दौलत व इख्तदार, अवाम किसी को न देखे। जब रसूलुल्लाह का फरमान आ गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान पर अपनी अक्ल और लॉजिक को कुर्बान कर दिया। आज अगर आप किसी को मसला बताते हैं, कुरान और हदीस सुनाते हैं, तो कहते हैं सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, पालाब होगा, गीबत होगी कि एक नई चीज आ गई। नहीं, वो नई नहीं है, हमने अमल न करके उसको नया बनाया। विलायत के तस्करे तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना कि मकसद विलायत क्या है? मकसद विलायत है इत्तिबाए रसूल, इत्तिबाए सुन्नत। द पर्पस ऑफ इल विलाया टू फॉलो द सुन्नत ऑफ रसूलुल्लाह एंड हिज शरिया, इट इज द पर्पस ऑफ विलायत। विलायत का मकसद यही है कि इंसान शरीयत और सुन्नत को फॉलो करे। ये मकसद है विलायत। कितने अजीम मुहद्दिस हुए, कितने अजीम उलमा हुए, फुकहा हुए, औलिया, अहलुल्लाह, उलमा हुए, जिन्होंने हर हार अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, हदीस को, तालीमात को और अफकार को देखा और उसे फॉलो किया। और अल्लाह पाक ने उसी वक्त उन पे रिज़्क के दरवाजे खोल दिए, उसी वक्त, और दुनिया को बताया कि रिज़्क के दरवाजे उस वक्त खुलेंगे जब आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करोगे। अल्लाह पाक इतनी बरकत देगा थोड़े से पैसों में कि जो आपके वहमो गुमान में भी वो बरकत न हो, न किसी और के वहमो गुमान में। हम महरूम इसलिए हो गए कि हमने सुन्नतों पे अमल छोड़ दिया। हम महरूम इसलिए हो गए कि हमने शरीयत को फॉलो करना छोड़ दिया। हम अपने मिजाज पे चलने लगे, अपनी ट्रेडिशंस, वो जो शरीयत और सुन्नत की अगेंस्ट से, उसे फॉलो करने। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। महबूब, प्लीज से, प्लीज डिक्लेयर, इफ यू लव अल्लाह देन फॉलो रसूलुल्लाह, फॉलो हिज सुन्नत एंड शरीयत। इफ यू फॉलो रसूलुल्लाह एंड हिज सुन्नत, अल्लाह विल लव यू and Allah will forgive your faults and sins. Allah is the most forgiving and merciful. Mahboob, inse keh do ki agar tum Allah se mohabbat ke muddai ho ki nahnu nuhibbullah, we love Allah, agar tumhara dawa yahi hai to phir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki shariat ko follow karo। इस मुहद्दिस को अल्लाह से इस मोहब्बत, इस मुहद्दिस

के दिल में हुजूर सलाम की मोहब्बत थी, इसलिए इन्होंने दरबार शाही में न किसी और को देखा न बादशाह कि ये क्या करें। उनके सामने दस्तखान पे गिरे हुए टुकड़े उठाए और वो उठाकर खाने लगे। आज तो एक आम आदमी जिसकी कोई हैसियत न हो वो भी शायद इसको गवारा ना करे, लेकिन ये वक्त के मुहद्दिस की उम्मत पे सवाल आया ही इसलिए है कि उम्मत ने सुन्नत और शरीयत को फॉलो करना छोड़ दिया। जवाल उम्मत में इसलिए उम्मत इन्हेदात कशिकार हो गई, दिन ब दिन जवाल पजीर हो गई। आज अगर मजमूई हैसियत से ये पूरी उम्र हुजूर सलाम की शरीयत और सुन्नत को फॉलो करने लगे तो वो जो पहले बहारें नसीब होती थी वो फिर से लौट आए, वो बहारें फिर से इन्हें नसीब हो जाए। शाहाने वक्त इनका नाम सुन के कपकपाने लगे और शाहाने वक्त भी इनका अदब, और अल्लाह पाक इन पे अपने रिज़्क के दरवाजे खोले। इसलिए अपनी दुआओं में ये दुआ जरूर शामिल है कि अल्लाह हमारी जिंदगी को सुन्नत और शरीयत के मुताबिक बना दे। जब आपको लगे कि इस वक्त दुआ कबूल होती है तो उस वक्त ये दुआ मांगो, जिसकी जिंदगी शरीयत और सुन्नत के सांचे में ढल गई उसकी दुनिया भी सवर गई और उसकी आखिरत भी सवर गई, उसकी आखिरत भी बनी और दुनिया भी बनी, वरना फिर खसरत दुनिया वाला आखिरा न इल्लल्लज़ी न उल्लल्लज़ी, ना इधर के रहे न उधर के। अब इस मुहद्दिस की अजीम शान देखे, क्योंकि जितने मुहद्दिसीन हुए वो औलिया हुए, वो सूफिया ज़ुहदा, वो अपने वक्त के बड़े बड़े साहिबान ज़ुहद व तक़वा हुए, और ये बहुत बड़ा एजाज है उसके लिए, उस मुहद्दिस के लिए। क्या ये एजाज कम है कि सदियों से इस रिवायत का तज़किरा हुआ और क़ियामत तक इसका बयान होगा। फकत एक अदाए मुस्तफा ने और हुजूर सलाम की हदीस पर अमल इस अदा उसे वो जिंदगी अता की, उसके तस्करे को बका अता कि सुबह क़ियामत तक उसके तस्करे से। इसलिए इकबाल ने कहा, इकबाल उनके इश्क का फैज़ आम है, इकबाल उनके इश्क का फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दबा। ये इश्क का फैज़ आम ही था, ये इश्क का रंग ही था कि बड़े मजमे में उन्होंने उमरा खुलफा सलातीन के सामने दस्तखान पे गिरे हुए टुकड़ों को उठा के खाए और उसको अपने लिए ऑनर समझा, अपने लिए इफ्तिखार समझा, अपने लिए इज्जत समझी। इसलिए कि इज्जत का मेयार वो नहीं है जो आवाम के नजदीक है, इज्जत का मेयार वो है जो अल्लाह रसूल ने अता किया। अल्लाह पाक ने फरमाया, फलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, फरमाया इज्जत अल्लाह की है, अल्लाह की रसूल की है और मुमिनीन की है। लेकिन फरमाया कि मुनाफिक नहीं समझते कि हकीकत इज्जत क्या, वो जिसे चाहे इज्जत करे और इज्जत हुजूर की शरीयत और सुन्नत को फॉलो करे। अल्लाह पाक हमें शरीयत और सुन्नत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद व माल।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: अच्छा गुनगुन, मुझे अपने पापा के बारे में कुछ बताओ।